0: समय आने पर कद्दू ने 1,000 और नेता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्दू के तो 1,000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तुमने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। उस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। ये घोड़ा अश्व रत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। असमस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदाचल को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वश्रेष्ठ देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनते श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह से मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च श्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष काम धेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च सवार ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इस समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देख कर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्र सहस्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कद्रू ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रू ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रू और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सवा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रू और अनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर अनीता उदास हो गई। कद्दू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे, अब वे भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्दू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। अब वनिता ने कद्दू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्दू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौट कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है। यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसे खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देख कर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ चढ़ा कर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया। काश

0: रोने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बाल के लिए ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बाल के लिए ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तब शुद्ध बाल के लिए ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बाल के लिए ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वटवृक्ष की शाखा छोड़ दिया। तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वे शाखा फेंक दिया। पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा बाल के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं। सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत न ले जाने पाए। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से करुण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहसों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया। चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त है। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बाजू चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षीराज मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उससे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वही उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भर कर स्नान करने गए, तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा, अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझकर अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु। अब बताइए, इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्तऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया, तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धर्मगिरि तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं, हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए, तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं, गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए, उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं, भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है, और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न पत्री।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो, मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं, तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है, या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे।
0: हाँ।
1: और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सबका यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए, जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से। तो फिर वो सब दिए वहां जाकर के और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधु जनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुर द्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे।
1: ये अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं? हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो कोई
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परीक्षदा तदेव श्रुणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़ ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हाँ। हिमालय तो है ही, हाँ। अब देवालय पर्वत है, हाँ। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं? मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है, मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नत। सुवेशालंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी? क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
1: जी।
0: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे,
1: पधारे।
0: जी,
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है, देवालय, मंदराचल, अस्ताचल, अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहां से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा सुगंधित हवा बहती है वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सजधज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहुशोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम। क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणि रत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्री भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर

0: जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहां पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहां अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त भक्ति करते हैं तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य रत्नों से अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
1: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हयन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान।
1: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
2: खुद के मन में क्या है
1: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
2: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
2: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
1: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
2: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
3: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया जी। कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
2: जी।
3: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
2: जी।
3: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
2: बिल्कुल।
3: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र।

0: आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनकी बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण हैं, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माने आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा
0: और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है। और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्रिय एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली, और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य, जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें, आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है, और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
3: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
4: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आज है सैटरडे का दिन, और सैटरडे वाले दिन आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ जाती हूँ, रेसिपीज लेकर के आती हूँ बहुत सारी। और आज भी मेरे पास रेसिपी है आपके लिए। और अगर आपका देखिए मन है ना कुछ अच्छा सा और चटपटा सा, लेकिन हेल्दी कुछ खाने का, और आप चाहते हैं कि उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊं, या फिर आप कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं, कोई यूनिक रेसिपी है जो आप सभी लिसनर्स तक, आप देखिए हमारा जो कार्यक्रम के थ्रू हमारे सबको बताना चाहते हैं वो रेसिपी, तो आप जरूर बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078

बस आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको अपनी रेसिपी लिख करके भेजनी है और उसके साथ साथ आपको लिख करके भेजना है कि वो बनती कैसे, इंग्रेडिएंट्स के साथ वो रेसिपी भी, और बस आपके संदेश का, आपके मैसेजेस का मैं कर रही हूँ इंतजार। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना और 7.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना सैटरडे का दिन है और आपके लिए कमाल की टेस्टी खास रेसिपी लेकर आरजे साक्षी आपके पास आ गई है भाई। और मैं आपको बता दूं, एक हेल्दी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले आपको जो है बड़े आसान से स्टेप्स करने हैं, अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. आज आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ चुकी हूँ. और देखिए, मैं ना ये चाहती हूँ कि जो दिन की आपकी शुरुआत हो ना बहुत हेल्दी हो और टेस्ट भी हो उसमें. अब देखिए क्या होता है ना, जब भी हम कुछ बनाते हैं हमें तो लगता है कि टेस्टी बनना चाहिए, लेकिन ना कहीं कहीं पर टेस्ट और हेल्थ कॉम्बिनेशन ना बैठ नहीं पाता. लेकिन आज जो साक्षी आ गई ना आपके पास, वो बताने वाली आपको कि ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी कौन सी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इतनी हेल्दी इतनी टेस्टी और वो भी ब्रेकफास्ट के लिए आपकी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको खा के लेगा क्या बात है साक्षी, मजा आ गया आज तो. तो आज हम बनाने वाले हैं अपनी इस प्यारी सी किचन में टेस्टी हेल्दी बहुत कमाल पोहा कटलेट. जी हाँ, आज पोहा कटलेट हम बनाने वाले हैं और बड़ी आसान सी है ये रेसिपी और बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है. तो आप ये पोहा रेसिपी कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, क्योंकि अभी ना मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ. तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँ, ये लिस्ट बताऊँ, आप अपनी डायरी और अपना जो पेन है बिल्कुल तैयार रखिए, नोटपैड तैयार रखिए, क्योंकि मैं बस यूं गई और यूं आई. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
1: हाँ गुरुदेव. ना

बनके हम सन्यासी काम है चलते रहे।

का जूट संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। आपके लिए आज टेस्टी कमाल की रेसिपी लेकर के आ गई हूं। बात करें आज पोहा कटलेट बनाने की, तो पोहा कटलेट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी एक लंबी लिस्ट जो कि आपको फटाफट से नोट डाउन कर लेनी है। तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो है, सबसे पहले 1 कप लेना है पोहा, उबले हुए आलू 2, बारीक कटी हुई सब्जियां आपको लेनी है 1/2 कप, जैसे गाजर, आप मटर ले ली और शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां लेनी है। साथ ही प्याज लेनी है आपको, 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज लेना है, इसको आप अच्छे से काट लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है आपको 1 चम्मच। और ध्यान रखिएगा, आजकल मार्केट में देखिए ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो मिलता है, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं आता है जो एक्चुअल अदरक लहसुन के पेस्ट में, जो आप अपने आप पील करके अपने आप बनाएंगे ना, वो एकदम से ना वो बिल्कुल बहुत ही टेस्ट में अलग होगा। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि उसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही फ्रेश होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप वो यूज कीजिएगा, खुद से आप उसको पीस के बनाइएगा जो पेस्ट है। साथ ही हरी मिर्च लेनी है आपको 1 से 2 बारीक कटी हुई, और धनिया पाउडर लेना है आपको 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर लेना है आपको 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लेना है आपको 1/2 चम्मच। ये वैसे स्वाद अनुसार है, आप डिपेंड करता है, अगर 1/2 चम्मच लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, नहीं तो डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले लीजिए, कम चाहिए तो कम भी ले सकते हैं। चाट मसाला लेना है आपको 1/2 चम्मच, नींबू का रस लेना है 1 चम्मच, धनिया की पत्तियां लेनी है आपको 2 चम्मच या बारीक कटी हुई आप ले लीजिए। वैसे तो अगर आप धनिया आप लवर है ना तो आप ढेर सारा डाले हुए, मुझे तो बड़ा पसंद है। नमक लेना है आपको स्वाद अनुसार, और तेल लेना है इसे तलने के लिए। और अब हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी रेसिपी, और बहुत ही कमाल हमारी रेसिपी होने वाली है पोहा कटलेट की। कैसे बनेगा पोहा कटलेट वो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. और आज आपके साथ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कैसे आप पोहा कटलेट घर पे बना सकते हैं. तो पोहा कटलेट को बनाने के लिए सबसे पहले पोहा को आपको एक छलनी में डालकर अच्छी तरह से धो लेना है. ध्यान रखना है कि इसके देखिए पानी में इसे आप भिगो कर ना रखें, क्योंकि जब आप इसे भिगो कर रखेंगे तो बिल्कुल ये घुल जाएगा. बस इसे धोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और बिल्कुल खिला खिला सा बने, तो बस ये अलग अलग हो जाएगा. अब क्या करना है आपको, एक बड़े कटोरे में आपको उबले और मैश किए हुए आलू लेने हैं. अब इनमें नरम पोहा जो है और बारीक कटी हुई सारी सब्जियां जैसे कि गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज और साथ ही हरी मिर्च आपको डाल देनी है. जिस तरह से हम आलू की पिट्ठी तैयार करते हैं ना, उसी तरह से हम इसका जो मिक्सचर है, इसकी जो स्टफिंग है ना, वो बिल्कुल तैयार करेंगे और इसी स्टफिंग से बनेंगे हमारे कटलेट. अब इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही आसान सी आपको एक चीज बताती हूँ. ये जो सारा आपने मिश्रण लिया है ना, इसको आपको क्या करना है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और नींबू का रस आपको इसमें आप डाल देना है. इसके बाद इन सभी चीजों को अच्छी तरह से आपको मिलाना है और एक मुलायम आटे की तरह आपको इसे गूंद लेना है, जैसे एक मुलायम हो जाता बिल्कुल वैसे ही. अब इस मिश्रण में आपको छोटे छोटे कटलेट या टिक्की के आकार के आपको निकाल लेने हैं. आप चाहे कोई भी शेप इसे दे सकते हैं. आजकल कई सारे जैसे शेपर्स आ जाते हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, आप उनके भी उनकी मदद ले सकते हैं. गोल आकार आता है, स्टार आता है, हार्ट शेप आती है और साथ ही एक फ्लावर शेप भी आती है. तो जैसा आपको पसंद है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, शेपर की मदद से कर सकते हैं. खुद बनाना चाहें तो खुद भी गोलाकार की टिक्कियां आप बना सकते हैं, नहीं तो आप सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं. जैसा आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हैं, फिर चपटा भी रख सकते हैं. अब सभी सब्जियों को आपने देखिए इसमें डाल दिया है अच्छे से, देखिए ये अच्छी बिल्कुल अंदर नरम हो गई है. अब सभी चीजों को अच्छी तरह से आपको मिलाने के बाद मुलायम आटा जब आप गूंद लेंगे उसकी शेप्स बन जाएंगी. अब एक पैन में तेल गरम करना है और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें सारे कटलेट आपको डाल देने हैं और धीमी आंच पर सुनहरा होने तक आपको इसे अपना जो है डीप फ्राई करते रहना है. दोनों तरफ से अच्छी तरह से आप इसे तल लीजिए. जब ये कुरकुरा हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए. बस ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आंच आपकी तेज रहेगी ना, जो गैस की अगर आप आंच तेज रखेंगे उसे, तो जो कटलेट है ऊपर से तो ये बन जाएंगे, अंदर से जो है वो नहीं बन पाएंगे, जिससे उसका स्वाद नहीं आ पाएगा. और ऊपर से फिर अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं थोड़ा सा और हम इसे बनाते हैं, अंदर से ये पक जाए तो वो ऊपर से जल जाएंगे. सुनहरे होने की जगह वो ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के हो जाएंगे, जो कि जला हुआ आपको टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आप कहेंगे साक्षी ये क्या बनवा दिया. तो इसीलिए आंच को बिल्कुल धीरे रख के धीरे धीरे आपको इसको आंच पर जो है फ्राई करना है ताकि ये सुनहरे हो जाए और ये कुरकुरे हो जाए बाहर से, क्योंकि हमने पोहा इसमें डाला है, राइस है, तो वो एकदम कुरकुरा हो जाता है. अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे खाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी. हाँ बस ये ध्यान में रखिएगा कि इसे हरी चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ या टमेटो केचप के साथ आप खा सकते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा. चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

मशहूर हो जाए। वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेके आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग, और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के साथ हो दिन, बहुत सारी होती है बातें। मैं ना आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आती हूँ सैटरडे वाले दिन। और आज आपको मैंने बताया है बड़ी टेस्टी हेल्दी, आपको मैंने पोहा कटलेट के बारे में बताया। पोहे की बात हो ही रही है तो देखिए पोहे इतने टेस्टी होते हैं। अच्छा बच्चों को ना ये कटलेट्स, मुझे एक मैसेज आया है कि बच्चों को ना कटलेट्स इतने पसंद नहीं आते जितना उन्हें नगेट्स पसंद आते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम इसके नगेट्स बना दें। अब आप कहेंगे साक्षी कैसे हो सकता है कि ये पोहा नगेट्स हम कैसे बना सकते हैं, साक्षी है ना आपको सब बताएगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लव।

वेलकम बैक रेडियो मैरिव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपी जो है वो लेकर के आई हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं पोहा नगेट्स के बारे में। मैं बता रही हूँ आपको, पहले अभी रेसिपी जो है वो मैंने आपको बताई है पोहा कटलेट के बारे में। पोहा नगेट्स कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों को ना बड़ी पसंद आती है पोहा नगेट्स की अगर बात करें। अच्छा, नॉर्मली नगेट्स भी ना बड़े टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हम जब भी बाहर से कुछ भी मंगाना हो ना, मतलब जब भी आप देखिए कि आजकल तो फूड डिलीवरी एप्स इतने सारे आ गए हैं, या फिर घर पर झट से चीजें जो है मौजूद हो जाती है, इतने सारे एप्स आ गए हैं। उन एप्स के थ्रू ना, मतलब ये होता है कि अब कुछ भी हमें बाहर का खाना होता है ना, तो अब तो बहुत ही जल्दी आपके पास वो आ जाता है कि आपको बस सोचना पड़े इतने में तो वो आ भी जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आपके हेल्थ के लिए तो सही नहीं होंगी। तो हेल्थ के लिए क्या सही है, जब आप उसे बनाएंगे घर पर और सही इंग्रेडिएंट्स के साथ। बाहर आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, उसमें मैदा है या उसमें प्रोसेस इतनी सारी चीजें हैं, केमिकल्स हैं। और घर पर जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल फ्रेश है और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और आप अपने हाथों से बना रहे हैं, प्यार भी तो बहुत सारा है भाई। तो मैं आपको नगेट्स बताती हूँ कैसे आप बनाएंगे। तो पोहा नगेट्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए पोहा, और ये जो पोहा है आप मोटे वाले पोहा जो है वो लीजिएगा। एक पतला वाला होता है जो कि अब बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है जब आप नॉर्मली पोहा बनाते हैं। उसके लिए एक मोटा वाला जो है वो भी आता है, वो लीजिएगा, एक कप लेना है। इसके साथ साथ उबले हुए आलू लेने हैं 2 मीडियम साइज के, और एक बारीक कटा हुआ बड़ा प्याज लेना है आपको। हरी मिर्च लेनी है आपको एक बारीक कटी हुई, अगर बच्चे खाते हैं तो आप इसे लीजिएगा, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप जिस तरह से बच्चों को जितना पसंद है मिर्च उतनी लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, फ्रेश फ्रेश एकदम लेना है, एक छोटा चम्मच। साथ ही धनिया की पत्तियां लेनी है आपको, और 2 चम्मच धनिया की बारीक कटी हुई पत्तियां लेनी है। बेसन

लेना है आपको 2 चम्मच, चावल का आटा लेना है आपको 2 चम्मच, और ये जो है ऊपर से और ज्यादा से कुरकुरा बना देगा नगेट्स को, क्योंकि नगेट्स बहुत ही कुरकुरे होते हैं, अंदर से एकदम कुछ सॉफ्ट होते हैं। इसके साथ नमक लेना है स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर लेना है 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लेना है आपको 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला लेना है 1/4 छोटा चम्मच, और तेल लेना है तलने के लिए, और वो भी कम लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे। इसके साथ साथ ये रेसिपी बनेगी कैसे, यानी कि इसके स्टेप बाय स्टेप इसकी जो रेसिपी है इसके स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बात है, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई हूं, और आज की हमारी रेसिपी है पोहा नगेट्स की। पहले आपको पोहा कटलेट्स बता चुकी हूं, पोहा नगेट्स कैसे बनेंगे वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको पोहा जो है वो लेना है, पोहे को आपको 2 मिनट के लिए आपको पानी में भिगोना है, और उसके बाद इसे छलनी से निकाल कर सारा पानी इसका निचोड़ लेना है। इसके बाद पोहे को हल्के हाथ से आपको मैश करना है। अब एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू और पोहा आपको इसमें डालना है, और इसमें आपको बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब आपको मिला देना है। अब इसके बाद इसमें आपको बेसन और चावल का आटा डालकर सभी सामग्री को, सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, और एक गाढ़ा मिक्सचर जो है वो बन जाएगा, जैसे एक पिट्ठी बनती है उस तरीके से ये बन जाएगा। अब अपने हाथों पर आपको थोड़ा सा तेल लगाना है, और इस मिश्रण को छोटे छोटे आपको नगेट्स आपको बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, और टिक्की के आकार थोड़ा सा ऐसे देने, यानी कि हल्का सा चपटा कर देना है। अब एक पैन में आपको तेल गरम करना है, और जब यह तेल अच्छे से गरम हो जाए आंच को आपको मीडियम करनी है, और नगेट्स को आपको सुनहरा होने तक अच्छे से दोनों तरफ से आपको इसे फ्राई कर लेना है, तल लेना है। जब नगेट्स कुरकुरे और सुनहरे हो जाए तो इसे आप जो किचन पेपर होता है उस पर निकाल दीजिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए और आपके नगेट्स बिल्कुल तैयार हो जाए। बस ये नगेट्स बिल्कुल तैयार हैं, आप गर्मा गर्म पोहा नगेट्स आप खाइए टोमेटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, जैसा मन करे आप खाइए, नहीं तो आप मेयोनीज या फिर कोई भी ऐसी चीज जो भी बच्चों को पसंद आती है आप उसके साथ खा सकते हैं। और यकीन मानिए बच्चे ना, मतलब मन उनका जो है ना वो खुश हो जाएगा जब वो ये रेसिपी खाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे कि ये पोहे से बने और इतने हेल्दी है, इतने कमाल है। तो आप बच्चों की फरमाइश पे, नगेट्स की फरमाइश पे पोहा नगेट्स उन्हें बना के दे सकते हैं, और आपके मन में भी ये सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। चलो बाहर से नहीं खा रहे बच्चे, अच्छा घर का खाना खा रहे हैं और वो भी हेल्दी खा रहे हैं, तो आप ये बना के जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक की इजाजत लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती है बातें. एक संदेश, एक मैसेज हमारे पास आया है और इसमें जो है वो लिखा है कि आपने चटनी की दो बार बात कर ली साक्षी, ये चटनी बनेगी कैसे हरी वाली. तो देखिए, एक तो होती है वो जो दही वाली चटनी होती है ना, जो आपको नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं तब मिलती है, मिंट वाली जो चटनी होती है उसमें दही पड़ता है. एक तो चटनी हो गई वो, और एक होती है धनिया की चटनी जो कि मुझे तो बहुत पसंद है. और ये जो कटलेट है इन सब के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है. और नॉर्मली जब आप खाने के साथ भी खाएंगे ना तो चटनी का स्वाद जो है ना वो मजेदार रहता है. तो ये जो हरी चटनी है ना, ये बनेगी कैसे वो आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको धनिया लेना है, इसे अच्छे से साफ कर लीजिए. और इसकी जो जो नीचे की डंडियाँ होती हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, थोड़ी सी आपको रखनी है. अब इसे अच्छे से वॉश करके आपको मिक्सर ग्राइंडर में से रखना है. अभी सिर्फ मैं रखने की बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको रखना है. इसके बाद एक टमाटर ले लीजिए और एक से दो ले लीजिए और उसको भी अच्छे से आपको कट करके आपको उसमें डाल देने हैं. इसमें आपको इसके बाद क्या करना है, आपने धनिया डाल दिया, आपने इसमें टमाटर डाल दिया, अब इसमें एक आधा चम्मच आपको इसमें जीरा जो है वो डाल देना है. जो सूखा जीरा होता है नॉर्मली वैसा आप डाल दीजिए. इसके बाद नमक भी इसमें डाल देना है और इसके बाद हल्का सा आपको धनिया डालना है, थोड़ी सी आपको इसमें लाल मिर्च डालनी है और थोड़ी सी डालिएगा लाल मिर्च, ये सिर्फ थोड़ा सा बस कलर के लिए है. और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें आपको हरी मिर्च जितना भी आपको स्वाद अनुसार पसंद हो उतनी आप डाल दीजिए और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर दीजिए. अच्छे से जब आप मिक्स करेंगे देखेंगे ये जो चटनी है बिल्कुल बनकर तैयार है. और इसे नगेट्स के साथ खाइए. हाँ, ये जरूर याद रखिएगा इस चटनी में थोड़ी हींग जरूर डाल लीजिएगा जो कि बहुत कमाल लगती है. तो बस आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये चटनी, आपको ये रेसिपीज और आज की इतनी टेस्टी हेल्दी रेसिपी, सैटरडे का दिन है और सुबह सुबह अगर ये रेसिपीज हमें पता चल जाए ना तो बस आप फटाफट से ना आप इसे बना लीजिए. आप देरी मत कीजिए, सैटरडे का दिन है भाई और सैटरडे है, संडे है, आराम से इसे खाइए. बना के बॉल्स कटलेट्स को रख दीजिए, नगेट्स को रख दीजिए और अगले दिन फिर से इसे फ्राई करके आप खा सकते हैं. तो बस आप इसे बनाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज आज कैसी लगी. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना और 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, यानी कि अब साक्षी ना आपको कहने वाली अलविदा. और लेकिन अभी कुछ दिन फिर से लौट के आऊंगी आपके पास प्रोग्राम सफर जो लेकर के आऊंगी. और आज कहीं घूमने के लिए जाएंगे ना, तो बस कहाँ जाने वाले हैं और भाई क्या मजेदार रहने वाला है इस प्रोग्राम में, ये सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले फिलहाल अब वक्त हो गया इजाजत का, तो आपसे मिलती हूँ सुबह 11 बजे आपके पास आती हूँ और 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम सफरनामा ही रहता है जिसमें अलग अलग जगहों पर हम घूमने के लिए जाते हैं. चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और समय है आप ही के पर्यावरण के बारे में, आप ही की धरती के बारे में बातचीत करने का। यानी यह समय है कार्यक्रम ग्रीन ग्रह का, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन की, पानी को बचाने के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने के बारे में बात करते हैं, इस धरती के बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर हम सिर्फ बात करते हैं लेकिन कार्य नहीं कर पाते हैं, कोई ठोस काम नहीं करते। लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी हस्तियों से, कुछ ऐसे लोगों से जो कि पर्यावरण, इस धरती, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते प्रदूषण के बारे में। ये प्रदूषण चाहे जल का हो, चाहे थल का हो, चाहे वायु का हो, यानी एयर, वाटर, लैंड, हर प्रकार से ये पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रहा है, पूरी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके जिम्मेवार ना चाहते हुए भी आप और हम मिलकर हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया था कि धरती पर बह रही ये नदियां, जिनमें खास तौर पर से यमुना नदी है जो हमारी भारतीय संस्कृति को भी दर्शाती हैं, ये भारत में बह तो रही है लेकिन दिल्ली NCR में आते ही 27% ज्यादा मैली हो जाती है। यानी इसका प्रदूषण बाकी जगहों से ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि धरती के लिए, खेती के लिए और हर रूप से इंसानों के लिए बहुत डेंजरस है। अब ये तो रहे कुछ वैसे ही आंकड़े, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय खास तौर पर से हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, और वो है प्रदूषण। अक्टूबर नवंबर का महीना आते ही AQI लेवल पहुंच जाता है 500, जहां पर हम सब होते हैं परेशान। लेकिन इस प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर जल में होता प्रदूषण रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कुछ बातें करने के लिए हमारे साथ आज फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे प्रोफेसर दीपांकर साहा, चेयर सेंटर फॉर एडवांस वाटर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद, साथ ही फॉर्मर मेंबर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन फील्ड में, यानी प्रदूषण को रोकने, पानी को साफ रखने या ग्राउंड वाटर की तह तक जाने और इसके कम होने के बहुत सारे कारणों पर रिसर्च तक की है। आज के इस एपिसोड में हम इनसे फोन लाइन से जुड़ेंगे, क्योंकि ये फरीदाबाद शहर में नहीं थे तो इन्होंने अपने एक खास कार्यक्रम के दौरान समय निकालकर हमसे बातचीत की है। कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में आपको आज हम मिलवाने वाले हैं डॉक्टर दीपांकर साहा से। देवी और सज्जनी, ये कार्यक्रम आपके बीच लेकर आता है डॉक्टर OP भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब व PTC फाइनेंस लिमिटेड। बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर दीपांकर साहा से।
1: दीपांकर सर, आपसे जानना चाहूंगी, पोल्यूशन आजकल सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये हमारी लाइफ में और हमारे फ्यूचर के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, आप इस बात को कैसे समझाना चाहेंगे?
2: आप सही बोला, पोल्यूशन अभी पर्यावरण के लिए ही खाली खतरा नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल में आ गए। आप देखिए जो हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, इतनी ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहा है, फेस वॉश बोलिए, बॉडी वॉश बोलिए, सोप्स बोलिए, एज पर स्टडी अबाउट 250,000 नया केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल डेवलप हो रहा है रिलेटेड टू डिफरेंट यूज ऑफ ओनली ह्यूमन बींग। उसमें से 50,000 करीब पेटेंट के स्तर में पहुंचते हैं और वो डिफरेंट प्रोडक्ट का रूप में मार्केट में आ रहा है। और इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, से यू आर यूजिंग फेस वॉश, टू गिव अ सिंपल एग्जांपल, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड टाइप्स ऑफ फेस वॉश, और उसकी जो एक्सेस जो यूज होते हैं या जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट गोज अप टू फ्रॉम योर बेसिन, जॉइंस द स्वेट सिस्टम एंड अल्टीमेटली कम्स इनटू द स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट। एंड टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट के, उनका कोई आइडिया ही नहीं है हाउ टू ट्रीट दिस केमिकल, क्योंकि उस हिसाब से उनको बनाया नहीं गया। तो ऐसा जो नया केमिकल आ रहा है, यू गो फॉर इंसेक्टिसाइड, यू गो फॉर पेस्टिसाइड, यू गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एनहेंसमेंट फर्टिलाइजर, ये सब कुछ जो नया केमिकल डेवलप हो रहा है, नया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग डेवलप कर रहा है, और ये हमारा शरीर के अंदर जा रहा है, आपकी डिफरेंट टाइप का डिजीज क्रिएट कर रहा है। जस्ट यू सी द इंसिडेंस ऑफ कैंसर, कितने ज्यादा कैंसर हो रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एज पर वन स्टडी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80% ऑफ द कैंसर दैट आर रिपोर्टेड बिलो 50 इयर्स एज, 50 साल के नीचे, वो इंडिया से हो रहा है। ये बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को, जैसी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट, उनका जो वेस्ट होता है जब हम फेस वॉश करते हैं, तो वो सारा सीवेज सारा जो है वो नदियों में जा रहा है, पानी में जा रहा है, और उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है।
2: नहीं, उसको ट्रीट किया जाना इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना उसके ज़्यादा कॉस्ट है, जो किया नहीं जा सकता है इन ए स्केल। तो अल्टीमेटली दैट इंटर्स इनटू आवर सिस्टम अगेन, वो ड्रिंकिंग वाटर का थ्रू, फूड प्रोडक्ट का थ्रू, क्योंकि उनका फिक्सेशन होता है तो और हमारे शरीर में आ जाते हैं। एंड इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च भी अवेलेबल नहीं है जो कैसे ये प्रोडक्ट हमारा शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ उसे
1: प्रॉब्लम्स कर रहा है,
2: ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है।
1: सर ये तो बात हो गई पानी की, अब बात करते हैं हवा की। AQI सर 400-500 बढ़ भी रहा है, 600-700 पर भी पहुंचता है, ये एक्चुअली में किस तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है ये जो एयर पोल्यूशन है?
2: एयर पोल्यूशन तो क्या बता, एयर पोल्यूशन तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली NCR रीजन का जो हाल है एयर पोल्यूशन की, ये तो कहने लायक नहीं है। और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सब इतना ज्यादा ये अर्बन सेंटर में आ गए, जितनी अर्बन सेंटर है इंडिया में इतनी ज्यादा इनसे अनकंट्रोलेबल वे में इसके एटमोसफियर में ज्वाइन कर रहा है। और देर आर मेनी कंट्रीज, जैसा आप चाइना देखिए, चाइना हमसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वहाँ हमसे ज्यादा फैक्ट्रीज है, हमसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लेकिन कंट्रोल तो किया है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए पब्लिक का जागरूकता तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो पॉल्यूशन क्रिएटिंग जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, और वो एयर को प्रॉपरली ट्रीट करे, टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। और ये बहुत ज्यादा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, पर्टिकुलरली लंग्स के ऊपर
1: जी
2: बहुत बहुत ज्यादा। उसके कारण आपका मेंटल प्रॉब्लम भी हो रहा है, आपका रिसर्च है जो इसका लिंक कर रहा है डिमेंशिया के साथ, अल्जाइमर के साथ, इसका प्रोसेस एनहेंसमेंट होता है एयर पॉल्यूशन से। सो इट्स रियली अ थ्रेट फॉर ऑल मेगा सिटीज इन इंडिया पर्टिकुलरली
1: जी,
2: और सबके किंग है आपका दिल्ली NCR रीजन
1: जी। सर ये भी जानना चाहूंगी एयर पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो किस चीज से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हवा में हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, CNG पे भी आ रही हैं, ई व्हीकल्स भी आ रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ेंगे भी, बट अभी फिलहाल सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किस चीज से हो रहा है?
2: सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखिए ये डिपेंड कर रहा है किस जगह में आप है, अगर आप रानीगंज झरिया धानबाद एरिया में है तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है आपका कोल माइनिंग और एक्टिविटीज से। अगर आप ऐसे जगह में रहे जहाँ असेंबलेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर सेक्टर से आपका जो पावर जनरेटिंग सेक्टर है उससे हो रहा है। अर्बन सेंटर में आइएगा तो अर्बन सेंटर में डेफिनेटली जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स आपका पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन व्हीकल को खाली उसी को ही एक्यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनअकाउंटेड अनरजिस्टर्ड छोटा छोटा इंडस्ट्री भी चलता है अर्बन सेंटर में, जिसके कारण भी ये एयर पोल्यूशन हो रहा है। दूसरी और इंटरेस्टिंग बात, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम ए रीजन जो आपको इमीडिएटली कोरिलेट करना मुश्किल होगा। जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग की एक रिसर्च अभी पब्लिकेशन भी हुआ है हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में, जैसे ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है पंजाब और हरियाणा में, तो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन के कारण वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वाटर क्वालिटी खराब हो रहा है, तो हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ओवर एक्सट्रैक्शन को रोकने के लिए एक रूल लाया जो उसको कहते हैं हरियाणा सबसॉइल वाटर एक्ट और पंजाब सबसॉइल वाटर एक्ट। मतलब रूल का ये मोटिव है जो आपका जो पैडी कल्टीवेशन होता है मनसून सीजन में उसको थोड़ा डेफर कर दो, सो द मैक्सिमम पीरियड जो पैडी कल्टीवेशन हो मनसून का साथ कोइंसाइड करे। मतलब पैडी के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए
1: जी,
2: और
1: जी,
2: वो पानी मनसून से आए रदर देन पंपिंग फ्रॉम ग्राउंड। इसको रोकने के लिए आप पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ये एक्ट लाया, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, उसका जो कोलैटरल डैमेज जो बाद में समझ आया, उसके कारण आपकी जो पराली जलाना और स्टबल बर्निंग इतने ज्यादा बढ़ गए। हम उसके डिटेल में जा रहा हूँ तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उनके लिए समय चाहिए, लेकिन ये एक्ट के कारण पानी का एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन तो कम हुआ लेकिन स्टबल बर्निंग बढ़ गए। और ये स्टबल बर्निंग इज कंट्रीब्यूटिंग जो दिल्ली एनसीआर रीजन में जो ह्यूज एयर पोल्यूशन है विंटर में, विच स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, ये आपकी बहुत ज्यादा उसमें एड कर रहा है वो एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो देखिए कहां दूसरी जगह ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम करने के लिए कोई स्टेप लिया जा रहा है और उसके साथ अपेरेंटली कोई लिंकेज ही नहीं है, दिल्ली एनसीआर की
1: हवा को खराब कर दिया।
2: हवा को खराब कर दिया, तो कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन और एक दूसरे के साथ जुड़ा
1: कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, यानी ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक करने के लिए जो सोल्यूशन लाए उससे एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया और अभी हम 400-500 का AQI झेलते हैं नवंबर में।
2: हाँ, नहीं ये वन ऑफ द रीजन, उसके साथ साथ व्हीकल, छोटा छोटा इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन जो अर्बन एरिया में चलता ही रहते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होता है, तो सबका
1: सब कुछ मिला के
2: सब कुछ मिला के
1: जी जी जी। सर ग्राउंड वाटर लेवल की बात करते हैं क्योंकि आपने ये बात करी है कि ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक करने के लिए जो प्लान्स बनाए गए उस प्लान का एक ये नेगेटिव असर हुआ, लेकिन सर ग्राउंड वाटर लेवल तो नीचे जाता जा रहा है और अगर ज़मीन के नीचे का पानी खत्म होने लगे तो हमारी ज़िंदगी और खेती पर क्या असर पड़ेगा?
2: देखिए ग्राउंड वाटर जो इंडिया एज ए कंट्री दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर हम उठाते हैं, अगर आप कल्पना करिएगा किलोमीटर क्यूब, मतलब 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर आप कल्पना करिएगा कितना इमेंस वॉल्यूम है, ऐसा करीब करीब 240 किलोमीटर क्यूब ग्राउंड वाटर हर साल हम उठाते हैं भारतवर्ष में, और ये इतना ज्यादा है ये कल्पना की भी हम कल्पना नहीं कर सकते, मतलब चाइना, पूरा यूरोप, अमेरिका, ये सबको मिला दीजिएगा उससे भी ज्यादा ग्राउंड वाटर हम उठाते हैं। इसका एक मेजर कारण है हमारा जो इरिगेशन है, करीब करीब 75% पानी सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर मिला के वो इरिगेशन में जाते हैं, लेकिन इरिगेशन मैक्सिमम डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के ऊपर, तो इसके कारण इंडिया में ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा उठाया जाता है। उसके अलावा भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आप देखिएगा, अर्बन जो जितना सेंटर है, इंडिया रैपिडली अर्बनाइज हो रहा है, अर्बनाइज होने के कारण लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, पहले मान लीजिए 40 लीटर पर हेड पानी से एक दिन चल जाता था, अभी जैसा अर्बनाइजेशन हो रहा है तो कह रहा है 150 लीटर पानी दो पर हेड, क्योंकि हमको फ्लास्क चाहिए, हमको बाथटब चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है।
1: बिल्कुल,
2: तो अर्बनाइजेशन कारण की अर्बनाइजेशन का कारण भी ग्राउंड वाटर वाटर के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है और हमारा जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है अर्बन एरिया की वो कोप अप नहीं कर रहा है क्योंकि रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ रहा है। प्लस आप मान लो करीब करीब 85-90% ऑफ द रूरल वाटर सप्लाई इन इंडिया वो ग्राउंड वाटर से आ रहा है, तो इसके कारण ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये प्रेशर खाली ये मत सोचिए जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसके कारण वाटर क्वालिटी भी खराब हो रहा है।
1: बिल्कुल,
2: मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसा बहुत जगह है जैसा वाटर लेवल नीचे जाते जाते जाते जाते क्या होता है, वाटर का सैलिनिटी बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर का सैलिनिटी बढ़ जाता है,

0: लेकिन
1: अच्छा
0: जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है ये ट्रिगर कर रहा है यूरेनियम रिलीज, रॉक से जो ग्राउंड वाटर में जा रहा है इसको ट्रिगर कर रहा है वाटर लेवल डिक्लाइन। अब वही यूरेनियम हम पी रहे हैं पानी के साथ तो
1: खाना भी उसी में बन रहा है, कितना भी
0: खाना भी उसी में बन रहा है और ये जा रहा है, तो वाटर लेवल डिक्लाइन और ग्राउंड वाटर क्वालिटी हम तो कहेंगे ये दोनों ही आपके कार्ड्स है। और वाटर लेवल डिक्लाइन तो आपको क्या बताए, मेरे को मेरा सुपर एनिमेशन के बाद मैं गुजरात गवर्नमेंट को एक साल करीब एडवाइस किया तो मेरे को कच्छ एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। आप सोच नहीं सकते 1200 1300 1400 1500 फीट नीचे वाटर लेवल चले गए,
1: इतना ज्यादा
0: 1400 फीट। और जब उसमें से आप एक ड्यूब ट्यूबवेल बनाए जिसमें 1400 फीट नीचे पानी, उसमें आप जब मोटर लगाइएगा वो पानी उठाने के लिए, वो 1800 फीट में लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप पानी सक करिएगा किसी वेल से
1: जी।
0: तो एक ड्रॉडाउन होता है तो वाटर लेवल और नीचे चले जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो आप मान लो करीब 1600 1700 1800 फुट नीचे से पानी आ रहा है, आपका बहुत ही जगह है जैसा पर्टिकुलरली हार्ड रॉक एरिया में कर्नाटक तेलंगाना ये सब एरिया में जहाँ 500 600 700 फीट नीचे ग्राउंड वाटर लेवल आम बात हो गए। अब ये इसको रिकवर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके कारण गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और उसके रिसेंट कुछ स्टडीज आया जिसमें ग्रेस सैटेलाइट बेस्ड स्टडी जिसमें माइक्रो ग्रेविटी मेजरमेंट का द्वारा वाटर रिसोर्स ग्राउंड वाटर रिसोर्स का वेरिएशन असेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उसमें यह दिखा गया जो बहुत जगह है बहुत एरिया है जहाँ ग्राउंड वाटर सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है,
1: बेटर हो रही है,
0: बेटर हो रही है। उसका कई कारण है तो हो रहा है कुछ कुछ एरिया में,
1: कुछ कुछ हो रहा है बट बाकी जगहों पर होने में टाइम लगेगा,
0: बाकी जगह में होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। देखिए वाटर लेवल को अगर हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो खाली रिचार्ज करने से नहीं होगा, रिचार्ज का साथ साथ आपको क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आप हरियाणा में जाइए, हरियाणा में बासमती ग्रो करते हैं, उनको मिलेट करना चाहिए, उनको ऐसा क्रॉप करना चाहिए जो पैडी से या चावल से कम पानी में वो खेती आप कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन लेकिन जो फार्मर है उनका एक कंफर्ट जोन में वो रहते हैं जो ठीक है ये फसल मैं कर रहा हूँ इससे हमारा ये इनकम है उस हिसाब से वो चलते हैं। और जब वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करेगा दूसरे क्रॉप में जाएंगे तो ही एंटर्स इनटू एन अनसर्टेन जोन, वो सोचते हैं क्या होगा, हम बेच पाएंगे क्या सामान को, क्या प्राइस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो उसके कारण ये एडॉप्ट तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आउटरीच प्रोग्राम करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा फार्मर को, तो तभी वो आपकी इसको हम डिमांड साइड इंटरवेंशन करते हैं कहते हैं, मतलब पानी का यूज कम कर दो, सेम इनकम रहे लेकिन पानी का यूज कम कर दो। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उसमें एक है अब ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करो, लैंड को लेवल कर लो, तो ये सब में भी पानी कम लगता है।
1: जी जी सर, ये तो बात हो गई पानी की, हमने एयर की भी बात कर ली, अभी लैंड के बारे में बात करते हैं और प्लास्टिक और गार्बेज की बात करते हैं, जो कचरा हम घर से जनरेट करते हैं हमारी जमीन में जा रहा है, मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, आगे आने वाले टाइम में कितनी प्रॉब्लम्स होगी और इसका सलूशन क्या है?
0: इसके प्लास्टिक तो आपको क्या बताए, अभी गूगल में सर्च करके देखिए, कहीं भी सर्च करके देखिए, जो माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर जो रिसर्च हो रहा है कहाँ तक पहुंच गए, मदर्स उम्ब में भी माइक्रो प्लास्टिक पहुंच गए।
1: जी जी जी।
0: ये प्लास्टिक जब पानी में रहते हैं उससे माइक्रो साइज्ड प्लास्टिक निकल के वो प्लास्टिक बॉडी से निकल के पानी के साथ मिक्स हो जाती है और वो पानी के साथ वो सॉइल में जाती है। अभी माइक्रो प्लास्टिक जो प्लांट में या आपका पैडी राइस हो व्हीट हो उसमें फिक्सेशन के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन आपका जो पानी आप पी रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक इज एवरीवेयर, समुन्द्र के पानी में माइक्रो प्लास्टिक।

0: नदी के पानी में है, आप जो पी रहा है डैम के पानी में है, ग्राउंड वाटर में आ गए, इतना ज्यादा प्लास्टिक हम यूज कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी एक समस्या है। और इनकी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जो बॉडी में है, मतलब क्या क्या ये बीमारी क्रिएट कर सकते हैं, वो उसके ऊपर अभी और रिसर्च होना चाहिए। माइक्रोप्लास्टिक तो है पानी में, सॉइल में, ये तो पता लग गया किस अमाउंट में है, ये भी पता लग गया, काफी रिसर्च हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट तो डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक है, तभी बीमारी तो लाएगा ही, लेकिन इसके ऊपर और रिसर्च होना जरूरी है। लेकिन देखिए कुछ कुछ स्टेप हम लोग इमीडिएटली कर सकते हैं, वो है प्लास्टिक को जितना संभव अवॉइड करें, प्लास्टिक पानी पीने के लिए तो प्लास्टिक बोतल को अवॉइड करें, कांच की बोतल में पानी पिए, मेटल की जार में पानी पिए, सेमिनार सिंपोजियम में जो प्लास्टिक बोतल में पानी देना बंद करें, और प्लास्टिक कहीं भी फेंक देना, कहीं भी ये करना उसको, और उसको बंद करे और उसका रिसाइकलिंग शुरू करे। रिसाइकिल करके बार बार रिसाइकिल करो तो एनवायरमेंट में वापस आते हैं, लेकिन हमारा शरीर का अंदर जाने का जो पाथवे है, जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर एक हुई, फूड एक हुई, मिल्क हुई, है ना, डेयरी प्रोडक्ट हुई, इसमें ना जा पाए। बाहर ठीक है एनवायरमेंट में रहे, तो अवॉइड द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, वो सबसे ज्यादा हमको लग रहा है जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल, यानी प्लास्टिक का जितना कम यूज करेंगे उतना सेफ रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली
1: जी सर, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हमें कुछ ही समय में काफी इन्फॉर्मेशन दे दी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
0: थैंक यू।
2: तो बहुत सी बातें हम कर चुके हैं आज डॉक्टर दीपांकर साहा से, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने वाकई रिसर्च करी है। समय के अभाव के कारण हम इनसे बहुत सारी चर्चा तो नहीं कर पाए, लेकिन साफ तौर पर ये जान लिया हमने कि किस तरीके से हमारी डेली की एक्टिविटीज़ और एसटीपी का ना होना या ज़्यादा पानी का बर्बाद होना या फिर धरती पर गलत प्रकार से प्लास्टिक का धरती पर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होना हमारी नासमझी की वजह से हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। यह अलार्मिंग है क्योंकि हर बार गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, बरसातों में बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर फ्लैश फ्लड्स आते हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब कहीं ना कहीं हमारे ही नेग्लिजेंस का, चाहे हम एक आम आदमी के तौर पर बात करें या फिर बड़ी अथॉरिटीज के तौर पर, कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही होता है और इसका नुकसान भी हमें ही उठाना पड़ेगा। हाल ही में आई नेपाल में फ्लैश फ्लड जिसमें हजारों लोग पलक झपकते बह गए, आंकड़ा अभी तक क्लियर भी नहीं हो पाया है या आखिर किसकी वजह से हुआ। बहुत से लोग कहेंगे नेचुरल कैलामिटी थी, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि ये मानवीय कारणों से भी हुआ है, जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन, गर्मी का बढ़ना, ग्लेशियर का टूटना, इन्हीं सब की वजह से तो ये सब होता है। कुछ साल पहले केदारनाथ में आई बाढ़ भी कुछ ऐसा ही संकेत देती है। पेड़ों का कटना, जंगलों का एक के बाद एक छोटे होते जाना, पहाड़ों पर बड़ी इमारतों का बनना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट तो दर्शाते हैं लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं, क्या ये डेवलपमेंट हमारा फ्यूचर और हमारे आगे आने वाली जनरेशंस का फ्यूचर बचा पाएगी? ऐसे कुछ सवालों के साथ आज आपको छोड़ के जा रही हूँ कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में। अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा और किसी और के साथ आप शेयर करना चाहें तो हमारी ऐप यानी इंटरनेट रेडियो मानव रचना को डाउनलोड जरूर कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर ग्रीन ग्रह कार्यक्रम में आप डॉक्टर दीपांकर साहा के साथ हुई ये सारी बातचीत सुन सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं दुनिया में कभी भी कहीं भी, और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: पर हम।
1: अरे कहां पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं ऑर्गन इंडिया की CEO सुनैना सिंह। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
2: हमारे श्रोताओं को बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा नाम सुनैना सिंह है और मैं ऑर्गन इंडिया की CEO हूँ। हम अपने रेडियो शो में ज्यादातर अंगों की बीमारियों के विषय पर बातें करते हैं, लेकिन आज हम शरीर के सबसे अहम हिस्से के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा दिमाग। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप वैश, जो फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। नमस्कार डॉक्टर वैश, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर वैश, सबसे पहले ये बताएं कि आप रोज़ाना किस प्रकार की हेड इंजरीज या सर की चोटें देखते हैं?
3: सर की चोटें कई किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण, झगड़ों के कारण हो जाती है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, कई बार ब्लंट ऑब्जेक्ट से जैसे कि डंडे से या पत्थर से। वॉर इंजरीज होती हैं जिसमें गोली लग जाती है, बॉम्ब के पीसेस लग जाते हैं, तो वो भी हमारे पास काफ़ी विदेश से पेशेंट आते हैं, तो उनकी उस तरह की चोटें भी देखते हैं।
4: तो हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कोई घर में बैठा होता है या कोई बच्चा खेल रहा होता है, वो भी घर में ही उनको चोट लग जाती है और बहुत भयंकर चोट लग जाती है घर बैठे बैठे, तो उससे कैसे बच सकते?
3: घर में बच्चों की चोटें हमने दो किस्म की सबसे ज्यादा देखी है। एक तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो पलंग से गिर जाते हैं, यूजुअली एक साल या उससे कम के बच्चे होते हैं, सोते सोते वो थोड़ा सा मूव करते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो उनको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि या तो ऐसे नीचे पलंग पर सोएं कि बच्चे के गिरने का खतरा ना रहे, या फिर उसको संभाल के रखें जिससे कि उसके गिरने का खतरा ना पैदा हो। दूसरा, बच्चे खेलते वक्त सीढ़ियों से गिर जाते हैं या छत से गिर जाते हैं, खासतौर से पतंग के सीजन में पतंग उड़ाते वक्त नीचे गिर जाते हैं, चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि सावधानी से खेलें।
4: और बाकी जैसे जो लोग होते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आप देखते हैं कि वो उनको चोट लग जाती है, उसका प्रिवेंशन क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं?
3: रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कई कई कारण हैं। एक तो सबसे सिंपल बचाव है कि जैसे टू व्हीलर्स वाले हैं वो हमेशा हेलमेट लगा के चलाएं। हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं होता, लोग ये समझते हैं कि वो पुलिस से बचने के लिए पहन रहे हैं, लेकिन हेलमेट पहनना आपके खुद के सिर की चोट को बचाने के लिए होता है। जो हमने देखा है कि जो लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं और उनको चोट लगती है, अगर उनसे कंपेयर करें जो उनको बिना हेलमेट के चोट लगती है, तो वो चोट कहीं कम गंभीर होती है। जो बिना हेलमेट के चोटें लगती हैं उसके अंदर मौत होने की संभावना या मेजर इंजरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि घर के बगल में ही जा रहे थे इसलिए नहीं लगाया था, लेकिन एक्सीडेंट कह के नहीं आता है, आप थोड़ी सी दूर भी जा रहे हैं तो भी हमेशा लगाना चाहिए। दूसरा, फोर व्हीलर में हमेशा आपको सीट बेल्ट लगा के बैठना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट अगर लगाएंगे तो उससे आपकी सर की और चेस्ट की इंजरीज को बचाने में मदद मिलेगी।
4: और हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग साइकिल चलाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं पहनते, टू व्हीलर तो अगर मोटरसाइकिल हो वो तो फिर भी हेलमेट पहन सकते हैं, लेकिन साइकिल पे जो जा रहा होता है आदमी वो बिल्कुल हेलमेट नहीं पहनता, तो आप डू यू फील दैट दे शुड बी वेयरिंग?
3: साइकिल पे भी अगर आप देखें, विदेशों के वीडियोस देखें, तो सब लोग साइकिल भी चलाते वक्त हेलमेट हमेशा पहन के चलाते हैं। अगर आप साइकिल रेस के वीडियोस भी देखें तो सब लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर साइकिल वाले भी हेलमेट पहन के चलाएं।
4: क्या ये चोटें जान के लिए खतरा पैदा कर सकती
3: हैं? कुछ चोटें जरूर कर सकती हैं, पैदा जरूरी नहीं है कि चोट इतनी गंभीर हो कि जान के लिए खतरा हो। कुछ चोटें माइनर होती हैं, कुछ लोग जो हेलमेट पहन के चला रहे होते हैं उनको चोट लगती है तो काफी बचाव हो जाता है उनका, लेकिन कुछ चोटें काफी गंभीर गंभीर भी हो सकती हैं जो कि जान ले सकती हैं।
4: तो चोट लगने के बाद मरीजों को किस स्थिति में फौरन अस्पताल जाना चाहिए? क्योंकि कई लोग जब चोट लगती है या तो घर चले जाते हैं या फिर बोलते हैं अच्छा बाद में देखा जाएगा, दवाई ले लेते हैं। ऐसी स्थिति कौन सी होती है जब उनको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए?
3: सी, अगर चोट गंभीर है तो जाहिर है कि मरीज बेहोश होगा, तो उस स्थिति में तो अस्पताल जाना ही चाहिए। पर अगर मान लो बेहोश नहीं भी हुआ है तो कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे लगता है कि चोट आगे जाके दिक्कत दे सकती है। जैसे कि अगर मरीज को बेहोशी रही हो कुछ देर के लिए, या फिर दौरा पड़ा हो, या कोई एक हाथ या पैर में कमजोरी हो, या फिर उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो और सर में दर्द हो रहा हो और उल्टियां हो रही हो, तो उस स्थिति में उनको एक बार अस्पताल जाके चेकअप करवा लेना चाहिए।
2: तो डॉक्टर वैश, हम बात कर रहे थे ब्रेन इंजरीज के बारे में और इनका उपचार कैसे कर सकते हैं।
3: जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि एक तो सबको हेलमेट लगा के चलना चाहिए टू व्हीलर पर, और फोर व्हीलर जो भी चला रहे हैं भले पीछे की सीट पर भी बैठे हों तो बेहतर है कि वो सीट बेल्ट लगा कर बैठे। फिर जो सबसे बड़ा दूसरा कारण है एक्सीडेंट्स होने का कि लोग शराब पीकर चलाते हैं या ड्रग्स लेके चलाते हैं। कई बार कई लोग बहुत ज्यादा थके हुए, रात भर ड्यूटी करी है उसके बाद थके हुए भी चला रहे हैं और नींद आ रही है, तो उसमें भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि बसों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि ड्राइवर को नींद लग गई थी। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हों तो भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और शराब पी के तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है कि कई लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, आड़ी तिरछी चलाते हैं, तो वो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते। जो और देखने को मिलता है कि बहुत से लोग रॉन्ग साइड चलाते हैं, जो सीधी साइड से आ रहा है उसको नहीं पता होगा कि कोई सडनली सामने से रॉन्ग साइड आ जाएगा और उसमें फिर एक्सीडेंट हो सकता है। इन चीजों का सबको ध्यान रखना चाहिए।
2: तो डॉक्टर वैश, हम बात कर रहे थे ब्रेन इंजरीज के बारे में और इनका उपचार कैसे कर सकते हैं।
3: अभी जैसा मैंने आपको बताया था किन किन स्थितियों में सर की चोट के बाद में अस्पताल जाना चाहिए, उनमें से जिनका भी मान लो किसी का सीटी स्कैन हुआ है, अगर उसमें कुछ खराबी निकलती है तो उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, और कई लोगों को तो एक दिन ऑब्जर्व करने के बाद में फिर वापस घर भेज देते हैं। कई लोगों को साथ में चोटें लगी होती हैं, टाके लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो छोटे से मामूली उपचार के बाद में घर जा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को गहरी चोट होती है, दिमाग में ब्लीडिंग हो सकता है, कई बार बड़े ब्लड क्लॉट होते हैं, कुछ लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कई लोग इनमें जिसमें गहरी चोट है उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, और फिर सुधार होने तक उसका ध्यान रखना पड़ता है।
4: तो कुछ मरीजों की चोट बहुत गंभीर भी हो सकती है, तो उनका कैसे उपचार होता है और उनको आगे जाकर उनका आगे जाकर क्या भविष्य होता है, क्या जान भी जा सकती है?
3: जो बहुत ख़राब चोटें होती हैं उनमें कई लोगों की जान तो एक्सीडेंट के वक्त वहीं पर मौके पर ही हो जाती है, कुछ लोगों की अस्पताल में जाकर हो जाती है। इनमें से काफ़ी लोगों को बचाया भी जा सकता है, कुछ लोग उपचार में देरी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सबसे ज़रूरी है किसी भी चोट के बाद में कि उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए और उसकी तुरंत उपचार चालू किया जाए। कई लोगों को उपचार के बावजूद भी हम नहीं बचा पाते, या कई लोग उपचार के बावजूद बच तो जाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। कई बार वो हमेशा बेहोश ही रहते हैं, या जिसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, जिसमें कि वो अपने आप कुछ खा पी नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, उनको नली के द्वारा खाना देना पड़ता है। कई लोग उस हालत में भी रह सकते हैं।
4: तो डॉक्टर वैश, कुछ लोग बहुत गंभीर चोट लगती है उनको, उसके बावजूद भी वो ठीक हो सकते हैं? क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि हैंड इंजरीज में किसी कोई कोमा में चले गया या कोई बेहोश है बहुत दिनों के लिए, तो लोग समझते हैं कि उस टाइम कुछ नहीं हो सकता।
3: नहीं, ऐसा नहीं है। काफी लोग काफी खराब चोट के बावजूद भी बच जाते हैं और उनकी काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हो सकती है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो कि बहुत ख़राब से ख़राब चोट के बावजूद अपने जॉब पर भी वापस चले गए, बट उसके लिए ज़रूरी है कि उनका सही उपचार सही वक्त पर किया जाए और सही उपचार किया जाए।
4: तो जो आदमी या औरत कोई कोमा में चले गया हो वो कोमा से भी बाहर निकल के वापस आ सकता है?
3: हाँ, बिल्कुल। कोमा मतलब बेहोशी है, लेकिन उस वक्त मरीज का दिमाग काम कर रहा होता है, उस स्थिति से वापस आ सकते हैं। बट एक कंडीशन होती है ब्रेन डेड, जबकि दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस स्थिति से बाहर आना मुश्किल होता है।
2: हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप वैश से, जो अब हमें बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति को सर पर बुरी तरह चोट लगती है तो उसके आगे उनके पास क्या विकल्प होते हैं। डॉक्टर वैश, आप बात कर रहे थे कोमा और ब्रेन डेथ के बारे में, थोड़ा और बताएंगे प्लीज।
3: कोमा और ब्रेन डेड दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कोमा में जब आदमी होता है तब भले ही बेहोश है लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा है, भले ही वो समझ नहीं पा रहा है बात को, हाथ पैर नहीं चला पा रहा है, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, वो अपने आप सांस ले सकता है। कुछ लोग भले वेंटिलेटर पर भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी उनका सांस लेने का, ब्लड प्रेशर मेंटेन होने का, ये सब काम हो सकता है। लेकिन जो ब्रेन डेड होते हैं उसका मतलब है कि ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो अपने आप सांस नहीं ले सकते, उनका दिमाग के जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कि आँख की पुतली का रिफ्लेक्स देखते हैं या हाथ पैर के हिलने का, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। तो जो लोग ब्रेन डेड होते हैं उस कंडीशन से वो कभी वापस नहीं आ सकते।
4: तो ऐसे कैसे पता चलता है कि कोई कोमा में है और निकल सकता है शायद और कोई ब्रेन डेड है?
3: एक सीरीज ऑफ टेस्ट करके देखते हैं, एक पूरी टीम होती है जो कि जांच करती है। जब वो सारे पैरामीटर्स पर पेशेंट वो सब फेल कर जाता है, कोई भी चीज उसके अंदर हमें जांच पे नहीं मिलती है, तब हम उसको ब्रेन डेड कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम सिर्फ एक बार जांच नहीं करते हैं, कम से कम 6 घंटे के बाद उसकी वही सारी जांचें दोबारा होती हैं, और फिर भी अगर कुछ नहीं मिलता है तब हम उसको ब्रेन डेड कहते हैं।
4: तो ब्रेन डेड जब आप कह देते हो कि ये आदमी या ये औरत ब्रेन डेड हो चुका है, तो उसका कोई डिक्लेरेशन होता है, फैमिली को बताते हो कि ये ब्रेन डेड हो चुका है, और उसके बाद क्या होता है?
3: सी, जब हम दो बार टेस्ट कर चुके होते हैं और हमें पता चल जाता है कि पेशेंट ब्रेन डेड है, तब हमें पता है कि उस स्थिति से कोई भी मरीज वापस नहीं आ सकता। उस स्थिति में हम फैमिली को बताते हैं कि अब ये बंदा ब्रेन डेड है और हम कुछ कर नहीं सकते या दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब उस स्थिति में उनके पास दो ही विकल्प है, या तो जो चल रहा है वही चलने दें और अंत में कुछ समय की बात होती है, अल्टीमेटली हार्ट भी बंद हो जाता है। दूसरी चीज, हम उन लोगों को सबको काउंसिल करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है तो अगर वो चाहें तो उसका अंगदान कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे कुछ लोगों की जान बच सकती है।
4: तो डॉक्टर वैश, जब एक मरीज बहुत गंभीर, उसको बहुत गंभीर चोट लगी होती है सिर पर और वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, तो फैमिली को हमेशा लगता है कि शायद कुछ हो जाए, तो उस वक्त आप क्या बोलते हैं उनको?
3: अगर पेशेंट, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं और पेशेंट ब्रेन डेड है, हमें पता है कि पेशेंट ब्रेन डेड है, तो हम फैमिली को साफ साफ बता देते हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो सांस चल रही है वो कृत्रिम है, वो वेंटिलेटर के ऊपर है, वेंटिलेटर जैसे ही बंद करेंगे सांस तुरंत बंद हो जाएगी,
4: तो वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट।
3: हाँ, और उस टाइम सांस तो वेंटिलेटर के द्वारा चल रही है, हार्ट भी कुछ समय तक चलता रहता है, अपने आप फिर एक दो दिन के अंदर हार्ट भी चलना बंद कर देता है। हमारे पास उतना ही समय होता है अंगदान करने के लिए, इसीलिए हम उनको उसी टाइम काउंसिल कर देते हैं कि अगर आपको करना है तो जल्दी डिसीजन लेना होगा।
4: आपने बहुत सारे मरीज देखे हैं जिन्होंने अंगदान किया है ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद?
3: हाँ, काफी मरीजों ने किया है। सबसे ज्यादा इसमें हमें समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के मन में इसके बारे में बहुत सी मिथ्या है, बहुत से संदेह है। नॉट ओनली लोगों के, मैंने कई बार देखा है कि डॉक्टर्स फैमिली में भी उन लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आती है। एक बार जो ब्रेन डेड हो गया उसको दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं लेके आ सकती, और उसके बाद मृत्यु ही निश्चित है। अगर ऐसे में वो अंगदान करके दूसरे और लोगों की जीवन को बचा सके तो ये उनके लिए ही नहीं सबके लिए फायदेमंद होगा।
4: डॉक्टर वैश, आपका ऐसा कोई एक केस है जो आपको याद हुआ हो जहाँ पे पेशेंट ने अंगदान के लिए हाँ कर दी?
3: मुझे याद है जब मैंने पहले पेशेंट को मोटिवेट किया था अंगदान करने के लिए, 1994 की बात है, उनकी वाइफ को ब्रेन हेमरेज हुआ था, फिर उसके बाद में वो ब्रेन डेड हो गई थी। तब तक इंडिया में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। फैमिली से मैंने बात किया, हमें पूरा रात लग गई थी समझाने में उनको, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने हाँ कर दी थी और इस प्रकार से इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था।
4: और इनका और भी अंग डोनेट हुए थे?
3: नहीं, उस वक्त सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट,
4: सिर्फ हार्ट डोनेट। तो मुश्किल था फैमिली को समझाने का कि ये अब जा चुके हैं और इनका और कुछ नहीं हो सकता और अब अंगदान, इनके अंगों को दान कर सकते हो?
3: थोड़ा तो मुश्किल था क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था
4: और डोनेशन भी नहीं होगी,
3: एक भी डोनेशन नहीं हुआ था, तो लोगों को इसके बारे में बड़ा संशय था कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था।
2: डॉक्टर वैश, इतनी सब जानकारी के लिए शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम सबको दिमाग की चोटों से बचने के लिए पूरा ख्याल रखना चाहिए और हर वक्त हेलमेट, सीट बेल्ट पहननी चाहिए और सावधान रहना चाहिए जब कोई सर पर चोट लग जाए। आज के लिए इतना ही, बैक टू यू पायल।
1: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
5: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई, ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ को बदला है बल्कि दूसरों के लाइफ के लिए भी मिसाल बन गए हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और आज का प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी की कहानी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले एक वर्ड याद आता है और वो वर्ड है टीचर। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ टीचर की ही बात नहीं करने वाले हैं बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो टीचर भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं और स्कॉलर भी रहे हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टीचर की जर्नी प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंच गई और उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों इसी जर्नी को हम आज के सक्सेस मंत्रा में थोड़ा और ज्यादा क्लोजली समझने वाले हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5th ऑफ सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था लेकिन उनके अंदर नॉलेज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। पढ़ाई के प्रति उनकी डेडिकेशन ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिलोसफी को अपना स्पेशल एरिया बनाया और टीचिंग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो एजुकेशन को सिर्फ बुक्स और एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं समझा करते थे बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि इंसान की सोच को डेवलप करना, उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना और लाइफ को समझने के लिए रेडी करना। और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी आज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना या फिर किसी के लिए अपने पैशन को फॉलो करना। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि सक्सेस के साथ नॉलेज और कैरेक्टर भी जरूरी होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम उनकी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी हमें क्या क्या सिखाती है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या क्या सीख मिल पाती है उनकी जर्नी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम है जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी। तो सुनेंगे बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की हमारे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा में, जिनकी पूरी लाइफ ही नॉलेज और लर्निंग को जाना कि एक सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाले राधा कृष्ण जी कैसे अपनी पढ़ाई और नॉलेज के थ्रू एक अलग आइडेंटिटी बना पाए। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने या फिर एग्जाम पास करने का मीडियम नहीं था, बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करना और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना। सोचिए, आज जब हम एजुकेशन को अक्सर मार्क्स, डिग्री, जॉब या फिर करियर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये भी जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका कोई मीनिंग समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम एजुकेशन का रियल पर्पस मिस कर रहे हैं। राधा कृष्णन जी ने फिलॉसफी को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। फिलॉसफी सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। और इसी सब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि थिंकिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। उन्होंने टीचिंग को भी बहुत सीरियसली लिया। उनका मानना था कि एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम में लेसन एक्सप्लेन करने का ही नहीं होता है, बल्कि एक टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, उन्हें क्वेश्चंस को पूछना सिखाता है और उनके अंदर सोचने की एबिलिटी को डेवलप करता है। और दोस्तों, यही लेसन हमें आज अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और हम इसे कर सकते हैं। आज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पर एक क्लिक में थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स हमें मिल जाते हैं तुरंत में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं और उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। राधा कृष्णन जी हमें लाइफ में ये सिखाते हैं कि लर्निंग एक फिक्स्ड एज तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ या फिर जॉब मिल गई, इसका मतलब लर्निंग खत्म हो गई है ये नहीं होता है। एक्चुअली रियल लर्निंग तो उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सिंपल मंत्रा याद रखिएगा कि मार्क्स आपको एक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, नई स्किल को सीखिए, क्वेश्चंस पूछिए और अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी थिंकिंग को ओपन रखिए। क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सक्सेस ये भी है कि आप जो जानते हैं उससे अपनी और दूसरों की लाइफ को कितना बेटर बना पाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की एजुकेशन जर्नी से हमें आज का सक्सेस मंत्रा, पहला सक्सेस मंत्रा मिलता है कि लर्निंग को डेस्टिनेशन मत समझिए, उसे अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी बना लीजिए। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी सक्सेस फिलॉसफी की, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल करा है, साथ ही वो अपनी जर्नी से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और लर्निंग के बारे में जाना है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर उनकी सक्सेस का मंत्र क्या था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर हम उनकी अचीवमेंट्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, कितने अवार्ड्स मिले, कौन सी पोजीशन मिली, कितना नाम कमाया। लेकिन असली सक्सेस को समझने के लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि उस इंसान की सोच क्या थी और उसने अपनी जर्नी को कैसे बिल्ड किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक थी कंटिन्यूस लर्निंग। वो नॉलेज को भी एक फिक्स्ड चीज़ नहीं मानते थे, उनकी थिंकिंग हमेशा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रही है। ये क्वालिटी आज के टाइम में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज की जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है तो और कंपटीशन भी है उसी के साथ। हर फील्ड में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं और स्किल्स भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम ये सोच लें कि मुझे सब आता है तो शायद हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें मैं और सीख सकता हूँ तो हमारी ग्रोथ का चांस हमेशा बना रहेगा। लेकिन उनकी लाइफ हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस भी समझाती है। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपके पास कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं करते तो पोटेंशियल का रिजल्ट नहीं मिलता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी सिंप्लिसिटी। इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने के बाद भी उनकी पर्सनैलिटी में सिंप्लिसिटी और डिग्निटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये हमें रिमाइंड देता है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कि नॉलेज के साथ कैरेक्टर। जी हाँ, सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होता है, आप कितने नॉलेजेबल हैं उसके साथ ये भी मैटर करता है कि आप अपनी नॉलेज और पोजीशन का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर सक्सेस को मोस्टली ग्लैमरस वे में देखते हैं, जैसे कि बड़ी सैलरी होना, लग्जरी लाइफस्टाइल होना, अचीवमेंट्स होना, सब कुछ इंस्टेंटली विजिबल है। लेकिन किसी भी रियल सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी भी हमें ये बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, सक्सेस एक प्रोसेस है, लर्निंग का, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और कंटिन्यूसली बेटर बनने का। तो आज का सक्सेस मंत्र बहुत ही सिंपल है कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लर्निंग, डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज इस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जर्नी ये प्रूव करती है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि एक यंग स्टूडेंट जो नॉलेज और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता है और पढ़ाई भी करता है, फिर टीचिंग को अपना करियर चूज करता है और धीरे धीरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचता है कि एक दिन वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जर्नी किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रियल लाइफ जर्नी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से और फिलॉसफी के फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाकर की थी। उन्होंने डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में फिलॉसफी की पढ़ाई की और अपनी नॉलेज के थ्रू स्टूडेंट के बीच एक अलग रिस्पेक्ट अर्न किया। उनकी टीचिंग स्टाइल का फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर ही नहीं था बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए एनकरेज करना भी था। उनकी एकेडमिक रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हुई कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजियस और एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन स्कॉलर का ऑक्सफोर्ड में जाकर इंडियन फिलॉसफी और थॉट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उनकी जर्नी यही नहीं रुकी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने

आपकी लर्निंग कल की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं तो डेडिकेशन और नॉलेज के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी का एक और ब्यूटीफुल लेसन है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक डेस्टिनेशन से डिफाइन नहीं होने दिया, बल्कि वो पहले टीचर थे, फिर फिलोसोफर थे, फिर उसके बाद स्कॉलर रहे, फिर डिप्लोमेट रहे और फिर प्रेसिडेंट बने। लेकिन हर स्टेज पर उनकी को स्ट्रेंथ नॉलेज और लर्निंग ही रही है। दोस्तों, हम भी लाइफ में कई बार अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टार्टिंग स्ट्रांग नहीं है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। लेकिन राधाकृष्णन जी की जर्नी हमें एक रिमाइंडर देती है कि स्टार्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन और डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक और सक्सेस मंत्रा कि अपनी करंट पोजीशन को अपनी फाइनल आइडेंटिटी मत समझिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी पॉसिबिलिटीज पर बिलीव रखिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM और मैं हूं आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी पर हम चल रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ, उनकी लाइफ और उनकी इंस्पायरिंग थिंकिंग के साथ। अब तक हमने उनकी एजुकेशन, सक्सेस फिलोसफी और टीचर से प्रेसिडेंट तक की जर्नी के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों राधाकृष्णन जी को सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से ही याद करना उनकी पर्सनैलिटी को बहुत छोटा कर देना होगा। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक थी फिलोसोफर की। अब फिलोसोफर वर्ड सुनते ही आपको शायद लगता होगा कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस या फिर डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे ना तो फिलोसफी का मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और सोसाइटी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचना, जैसे कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की थिंकिंग में एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उनके लिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सक्सेसफुल करियर बनाना नहीं था, बल्कि एजुकेशन का रोल एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना था। और दोस्तों अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये थॉट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी ने नॉलेज तक पहुंचना बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम एक ही चीज नहीं होती। आपके फोन में थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को समझना, उनका सही यूज करना और राइट डिसीजन लेना, ये विजडम का पार्ट होता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हर वायरल पोस्ट को सच मान लेना और हर ओपिनियन को फॉलो कर लेना या फिर सिर्फ किसी ट्रेंड का पार्ट बन जाना क्योंकि सब कर रहे हैं, ये हेल्दी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। राधा कृष्णन जी के फिलोसफिकल अप्रोच हमें एनकरेज करती है कि हम क्वेश्चंस को पूछें, समझें और अपनी थिंकिंग को डेवलप करें। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, वो है कैरेक्टर। आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, स्किल्स है, लेकिन अगर वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस इनकम्प्लीट रह जाती है। और अगर आज हम करियर गोल को सेट करते हैं, अच्छी जॉब मिलना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, बिजनेस, पॉपुलैरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पूछना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन शायद हमारी जर्नी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। तो दोस्तों राधा कृष्णन जी की थिंकिंग का एक और सक्सेस मंत्रा कि नॉलेज आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, लेकिन राइट थिंकिंग और वैल्यूज आपको वाइज बना सकती है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और फिलोसफी, सक्सेस जर्नी और उनके थॉट को बहुत अच्छे से समझा, जान चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अब आते हैं उनकी लाइफ से जुड़े एक ऐसे दिन पर जिसे हम हर साल बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5th of September यानी कि टीचर्स डे की। दोस्तों, हम सबने स्कूल या फिर कॉलेजेस में टीचर्स डे जरूर सेलिब्रेट किया होगा। कहीं स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए कार्ड बनाते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस भी होती है, तो कहीं टीचर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में 5th of September को ही ये टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका कनेक्शन है डायरेक्टली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से ही। जी हाँ, उनका जन्म 5th of September 1888 को ही हुआ था। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अपनी विश को एक्सप्रेस किया, लेकिन राधाकृष्णन जी ने अपने बर्थडे को पर्सनली सेलिब्रेट करने के बजाय सजेस्ट किया कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों, ये ही बात उनकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। जिस दिन को कोई भी इंसान अपने नाम और बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन राधाकृष्णन जी ने उस दिन को टीचर्स डे के ऑनर से सेलिब्रेट करने के लिए कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक ब्यूटीफुल थॉट भी है कि एजुकेशन और टीचर्स की इम्पोर्टेंस को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। टीचर्स हमारी लाइफ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी एक टीचर का एक सिंपल सा सेंटेंस, एक एडवाइस या फिर एक छोटा सा एनकरेजमेंट हमारी पूरी डेडिकेशन को चेंज कर सकता है। स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो टीचर ही हमें पेशेंटली उसे समझाता है। जब मार्क्स कम आते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तब एक अच्छा टीचर हमें ये याद दिलाता है कि रिजल्ट आपकी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आज के टाइम में भी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और AI ने लर्निंग को ईजी जरूर बना दिया है, लेकिन एक टीचर को स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ कर उसे गाइड करता है। उस ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू ही अलग होती है। आज स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स डे एक रिमाइंडर है कि अपने टीचर को सिर्फ एक दिन विश करना इनफ नहीं है, उनकी मेहनत को, उनकी गाइडेंस को और उनके टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टीचर रहा है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया हो और आपको बेटर बनने में हेल्प की हो, तो उन्हें एक बार जरूर याद कीजिएगा और उन्हें एक बार जरूर विश कीजिएगा और उन्हें एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। और आज का एक और सक्सेस मंत्र कि एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि वो किसी की लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में और अब वक्त है आज के एपिसोड को एक इंस्पायरिंग नोट के साथ रैप अप करने का। और आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जर्नी को बहुत अच्छे से जाना, एक टीचर को, एक फिलोसोफर को और एक स्कॉलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक के सफर को जाना। लेकिन दोस्तों, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उनकी पोजिशन ही नहीं थी बल्कि उनकी सोच, उनके वैल्यूज और उनकी लर्निंग के प्रति डेडिकेशन थी। तो चलिए, उनके पांच कुछ ऐसे सिंपल से सक्सेस मंत्र है जिन्हें मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया है, एक बार हम दोबारा से उसे जान लेते हैं। सबसे पहला था कीप लर्निंग। लर्निंग कभी आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी लाइफ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो इसलिए क्यूरियस रहिए और नए स्किल को सीखते रहिए। दूसरा है थिंक इंडिपेंडेंटली। हर चीज को सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछिए, इन्फॉर्मेशन को समझिए और अपने ओपिनियन को खुद बनाइए। तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता लेकिन डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने में हेल्प करता है। छोटी छोटी हैबिट्स हमें फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और चौथा है कैरेक्टर और अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है जितना कि नॉलेज के साथ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। पांचवा है नेवर लिमिट योरसेल्फ। राधा कृष्णन जी की जर्नी हमें सिखाती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और लर्निंग आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे कि आपकी लाइफ का वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंट लेसन दिया हो? अगर वो आज आपके सामने होते तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें जरूर मैसेज करिएगा और उन्हें कॉल करके याद जरूर दिलाइएगा कि आपका ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो इसी थॉट के साथ आज के सक्सेस मंत्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा थॉट कि सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है बल्कि जर्नी में सीखते हुए एक बेटर इंसान बनना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और मैं ले रही हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इंस्पायर्ड और मुझे दीजिए इजाजत। और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक रहती हूँ आपके साथ। और आज बहुत सारी बातें लेकर के आई हूँ। आज है सैटरडे का दिन और आपको कहीं घूमने लेकर के जाती हूँ। और आज ना हवाओं में जहाँ तानसेन की तान घुली हो और ऐसी कुछ बात मैं करने वाली हूँ, ऐसी जगह की मैं बात करने वाली हूँ जहाँ पहाड़ पर खड़ा किला, जहाँ इतिहास सुनाए वहीं तो है एक सुंदर शहर। और आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो कि खुद में ही बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बड़ी प्यारी जगह है। और आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत ही ऐतिहासिक, रॉयल और बहुत ही खूबसूरत शहर में। द सिटी ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है। कौन सी है ये जगह, जरा आप मुझे मैसेज करके बताइए। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे.

मेरी तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपके पास मैं एक ऐसी जगह के बारे में देखिए आपको बताने वाली हूँ, लेकर के आई हूँ एक ऐसी जगह जो खुद में ही बहुत खूबसूरत है। द सिटी ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है। बड़े सारे जवाब भी आपके आ रहे हैं। ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है। आज हमारा रास्ता हमें ले चला है ग्वालियर की ओर। इमेजिन कीजिए एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा विशाल नीले और पीले रंगों से चमकता किला, जिसे मुगल बादशाह बाबर ने द पर्ल अमंग फोर्ट्स इन इंडिया इसे कहा था। इनफैक्ट देखिए ये जो शहर है ना, ये इतना खूबसूरत है और ये शहर जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महलों का शहर है, राजाओं का शहर है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये संगीत सम्राट तानसेन की जन्मभूमि है। यूनेस्को ने इसे ऑफिशियल सिटी ऑफ म्यूजिक का स्टेटस दिया था और आज भी है। और आज के इस प्रोग्राम में ना मैं आपको ग्वालियर फोर्ट की ऊंची दीवारों पर ले जाऊंगी। आपको मैं स्काई इंडिया परिवार के ग्रैंड जय विलास जो पैलेस है इसका जादू आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ के जो बड़ी बड़ी जो देखिए जलेबी होती है उसका जायका चखाने वाली हूँ। तो बस आपको कहीं नहीं जाना, आपको सफर ये जो है मेरे साथ आपका होने वाला है बड़ा ही खूबसूरत। और आपका कुछ अगर कहना हो इस पर तो जरूर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक रहती हूँ आपके साथ और बहुत सारी होती हैं बातें. और साथ ही आपको बताती हूँ, देखिए पहाड़ के सीने पर खड़ा ये किला बताता है कि कितने दौर आए और गए, पर इसकी शान हमेशा बरकरार रही. ग्वालियर आके सबसे पहले जिस चीज पर आपकी नजर रुकेगी, जो टिक जाएगी, वो है शहर के बीचों बीच लगभग 300 फुट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा ग्वालियर फोर्ट. ये किला 8th सेंचुरी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था और इस किले की दीवार पर जो है, जिसकी जो दीवारें हैं, इनकी दीवारों पर लगी जो टर्कुइश ब्लू यानी कि नीले और पीले रंग की सेरेमिक टाइल्स जो है, वो धूप में ऐसे चमकती है जैसे मानो किसी ने पत्थर पर हीरे जड़ दिए हों. और इस किले ने तोमर जो मुगल या मराठा और ब्रिटिशर्स का दौर देखा है. किले के हाथीपोल गेट से अंदर जाते वक्त आपको महसूस होता है कि हमारे पुरखों का जो आर्किटेक्चर कितना ग्रैंड था. किले के ऊपर से पूरा ग्वालियर शहर एक जो नन्हे से शीशे जैसा जो है वो दिखता है. और शाम के वक्त यहाँ का जो साउंड एंड लाइट शो है वो तो देखने लायक है, बिल्कुल देखना चाहिए यहाँ के. जहाँ अमिताभ बच्चन जी की भारी आवाज ने इस किले का सदियों पुराना इतिहास जिंदा होड़ता है. चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड

एक बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज सैटरडे का दिन है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसी खूबसूरत सी जगह जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं। रंग और पत्थर का ऐसा मेल, जैसे कि देखिए किसी आप शायर की अगर हम बात करें तो शायर ने अपनी कल्पना को दीवारों पर उतार दिया हो। ग्वालियर फोर्ट कैंपस जो है इसके अंदर की जो स्थित है और इसके अंदर का ही से और सबसे खूबसूरत महल है मन मंदिर। और मन मंदिर पैलेस जो है जिसे राजा मान सिंह तोमर ने 15th century में बनवाया था। इस महल के बाहर की दीवारों पर डक, एलिफेंट, पीकॉक और क्रोकोडाइल के कलरफुल डिजाइन बने हुए हैं जो आज भी 500 साल बाद एकदम फ्रेश लगते हैं। इस महल के अंदर दो अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं जहां पुराने जमाने में रानियां गर्मियों में ठंडक के लिए रहती थी, लेकिन मुगल दौर में औरंगजेब ने इसे अंडरग्राउंड फ्लोर को एक जेल में तब्दील कर दिया था जहां उसने अपने भाई मुराद को कैद किया था। जब आप यहाँ जाएंगे, देखिए जब आप उन गोल और घुमावदार रास्तों पर चलकर उन पुराने झरोकों को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हर कोना एक नई कहानी सुनाने के लिए आपको बेकरार है, आपको जो है वो सुनाने के लिए बेचैन है। और साथ ही चलिए इसके बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे ग्वालियर के बारे में हम, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. साथ ही आज आपको एक बड़े खूबसूरत जो शहर है वहाँ लेकर के आई हूँ. और ये जो शहर है सिर्फ देखिए यहाँ पर महलों का ये शहर नहीं है जहाँ पर सिर्फ महल ही महल हो. ये शहर एक और बड़ी खास चीज से जाना जाता है, द सिटी ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है. संगीत के सबसे बड़े उस्ताद के आंगन में हम चलते हैं, तानसेन टॉम. अकबर के नवरत्न में शामिल संगीत सम्राट मिलन तानसेन की जो मजार है वो ग्वालियर में है और ग्वालियर के हजीरा एरिया में ये स्थित है. ये एक बहुत ही शांत और सुंदर मुगल गार्डन के बीच बनी है. मजार के बिल्कुल पास एक पुराना इमली का पेड़ यानी कि टैमरिन का एक ट्री है और एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि जो गायक इस पेड़ की पत्तियों को चबाता है उसकी आवाज तानसेन की तरह मीठी और सुरीली हो जाती है. हर साल दिसंबर के महीने में यहाँ पर वर्ल्ड फेमस तानसेन समारोह लगता है जहाँ पूरी दुनिया के टॉप क्लासिकल म्यूजिशियंस आकर सारी रात सुरों की बरसात करते हैं. ग्वालियर की हवाओं में संगीत का जो ठहराव है वो इस जगह आकर दिल को छू लेता है. चलिए इसके बारे में, इस जगह के बारे में और भी बहुत सारी आपसे बातें करूंगी. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel right.

वेलकम बैक रेडियो मैरिव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, चांदी की ट्रेन और सुनहरे झरोके, शाही लाइफस्टाइल का इससे ग्रैंड रूप कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है कि असली राजा महाराजा कैसे रहते थे तो आपको जाना होगा जय विलास पैलेस। इसे जो है वो 1874 में महाराजा जयाजीराव जो है स्काई इंडिया ने बनवाया था, और इसका एक हिस्सा आज भी स्काई इंडिया जो है फैमिली का निजी घर है, जबकि बाकी हिस्सा एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है। इस पैलेस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका जो दरबार हॉल है, और इस हॉल की छत पर सोने की 560 यानी कि 560 किलो की बारीक जो एक बनावट है, कार्विंग जो है वो की गई है, और सीलिंग पर लटक रहे हैं पूरे एशिया के सब

सबसे बड़े शैंडेलियर्स यानी कि आकर झूमर, जिनका वजन कुछ 3.5 टन है, 350 टन है। कहते हैं कि इन झूमर को टांगने से पहले 8 हाथियों को छत पर चढ़ाकर टेस्ट किया गया था कि छत का जो वजन है वो ये झेल भी सकते हैं, कि जो झूमर है वो झेल भी सकते हैं नहीं। तो हाथियों को चढ़ा के, 8 हाथियों को चढ़ाकर जो है वो देखा गया था कि छत टिक भी सकती है या नहीं। और डाइनिंग हॉल में एक सॉलिड चांदी की ट्रेन है जो डिनर टेबल पर ट्रैक पर जो है उसके चलकर गेस्ट को आगे ड्राई फ्रूट्स, उनके आगे ड्राई फ्रूट्स और जो वहां पर उस टाइम पर सिगार्स होते थे वो सर्व किया करती थी। और ये ग्रैंड पैलेस देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे। ये होते हैं राजा रजवाड़ो के, जो देखिए उनके जो ठाट होते हैं ना वो आपको दिखेंगे वहां पर। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती हैं बातें। सुबह का नाश्ता अगर कचौड़ी और जलेबी के साथ हो तो दिन अपने आप खुशनुमा हो जाता है। और थोड़ी पेट पूजा की बात कर ली जाए, बड़ी देर से घूम रहे हैं हम। ग्वालियर का स्ट्रीट फूड जो है वो एकदम मजेदार है, क्रंची होता है। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है, यहाँ की जो देखिए पूरी होती है और यहाँ की जो सब्जी होती है, आलू पूरी की सिर्फ सब्जी हो गई, वो बहुत ही कमाल होती है। बिड़ई की एक तरह की उड़द दाल की जो है वो स्टफ्ड फूली हुई कचौड़ी होती है। और मैं आपको बता दूं, इसे जो है वो तीखी होती है, इसका थोड़ा सा टेस्ट जो फ्लेवर तीखा होता है। मसालेदार हींग वाली आलू वाली जो सब्जी होती है, रसेदार सब्जी के साथ और साथ ही दही के साथ इसे परोसा जाता है। और उसके बाद गरम गरम रस से भरी हुई जलेबी या इमरती खाना, ये मैंडेटरी होता है। और अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ग्वालियर और नियर बाय मोरेना के जो वर्ल्ड फेमस गज्जक है, तिल और गुड़ की या चीनी की बनी जो फ्लेकी मिठाई है यानी कि जो गज्जक है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप यहाँ आएंगे नया बाज़ार में खड़े होकर, जब गरम गरम आप खाएंगे यहाँ की बेड़मी यानी कि बिड़ाई और यहाँ की जो पूड़ी और आलू की सब्जी है, कचौड़ी है, ये खाएंगे मज़ेदार, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। हींग और देसी घी का स्वाद कमाल रहता है। और मैंने भी एक बार ट्राई किया था, ज़ुबान पर ना ये बोलते बोलते भी स्वाद आ रहा है, इतनी टेस्टी। ग्वालियर का खाना सिंपल है पर इसमें जो देसी गर्माहट है वो आप हमेशा आपके जो है जुबान पे रहेगा, याद आपको रहेगा, इतनी कमाल ये लगती है। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. और आज आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही खास जगह. ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत शहर है ग्वालियर. जी हाँ, ग्वालियर फोर्ट के सबसे, देखिए अगर हम बेस की बात करें तो बड़े खूबसूरत बेस की बात करें तो बेस पर बना है एक और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत महल, गुजरी महल. और इसे राजा मान सिंह तोमर ने अपनी जो गुजर रानी है उनके लिए जो है वो बनवाया था. मृगनयनी उनका नाम था, मृगनयनी के प्रेम में ये बनवाया था. कहानी है कि रानी मृगनयनी ने राजा से शादी की और इस शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि उन्हें अपने गांव राय का जो पानी है वो पीने के लिए चाहिए. और राजा ने उनके लिए एक अलग महल बनवाया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन से उनके गांव से राय रिवर का जो पानी है वो सीधा इस महल तक मंगवाया. आज ये महल एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जहां 2nd century BC की मशहूर शालभांजिका की जो मूर्ति है वो रखी गई है. और गुजरी महल हमें बताता है कि ग्वालियर की मिट्टी में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक गहरी प्रेम कहानी भी बसी हुई है. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good? Feel good.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहा है। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज इस प्रोग्राम में आपको एक बड़ी खास जगह लेकर के आई हूँ और ये जगह है ग्वालियर। पत्थरों पर उकेरी गई कलाकारी बताती है कि नाम भले ही बदल जाए पर आस्था हमेशा वही रहती है। ग्वालियर फोर्ट के ऊपर दो बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत मंदिर खड़े हैं जिन्हें लोग जो हैं वो बोलचाल की भाषा में सास बहु टेंपल कहते हैं। असल में इसका असली नाम जो है वो है सहस्त्र बहु टेम्पल, भगवान विष्णु का हजार भुजाओं वाला रूप। 11th सेंचुरी में बने इन मंदिरों में एक जो है वो बड़ा मंदिर राजा की पत्नी यानी कि उनकी सास के लिए था और छोटा मंदिर बहू के लिए बना था और इसीलिए वक्त के साथ साथ इसका नाम सास बहु मंदिर पड़ गया। और इन मंदिरों की छत और पिलर्स पर पत्थरों को इतनी बारीकी से काट कर डिजाइन बनाया गया है कि बिना किसी सीमेंट के लिए, देखिए अगर सीमेंट के ये हजार साल के वैसे ही खड़े हैं तो ये तो बहुत ही गजब की बात है। यहाँ बैठकर जब ठंडी पहाड़ी हवा आपको जो है लगेगी या छूती है तो पुराने जमाने की कारीगरों के हुनर के आगे सर अपने आप झुक ही जाता है। इसी के साथ साथ एक और खास बात मैं आपको बता दूं ग्वालियर की, ग्वालियर फोर्ट की चढ़ाई पर चलते वक्त गोपाचल पर्वत पर पहाड़ के पत्थरों को काट कर बनाई गई है

से खड़ा है। इन विशाल जो शांत चेहरों के आगे खड़े होकर आपको एक अजीब सा सन्नाटा और सुकून भी साथ में महसूस होता है, जो आपके दिमाग के सारे शोर को शांत कर देता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हो हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको बड़ी खूबसूरत सी जगह शहर में, वो है ग्वालियर। ग्वालियर के मुरार एरिया में स्थित है एक मॉडर्न पर बहुत ही शानदार मंदिर, सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। इसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला ने 1988 में बनवाया था और ये उड़ीसा के फेमस कोणार्क सन टेम्पल का डिजाइन से इंस्पायर है। और जो लाल सैंडस्टोन है और साथ ही अंदर सफेद मार्बल से ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। इस विशाल रथ के शेप में है जिसमें 7 घोड़े हैं और 24 पहिए हैं। मंदिर के चारों तरफ हरा भरा बगीचा है जो एकदम साफ सुथरा है और शांत है। सुबह सनराइज के वक्त जब सूरज की रोशनी इस लाल मंदिर पर पड़ती है तो इसका नजारा देखने लायक होता है। यह मंदिर ग्वालियर के मॉडर्न आर्किटेक्चर का जेम में गिना जाता है। इनफैक्ट ग्वालियर का इतिहास 1857 की क्रांति के बिना अधूरा है। फूलबाग एरिया में स्थित है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहां ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांसें जो है वो ली थी और उनका अंतिम संस्कार किया गया था ताकि उनका जिस्म अंग्रेजों के हाथ ना लग सके। वहाँ उनकी घोड़े पर बैठे हुए एक विशाल ब्रोंज स्टैचू भी यहाँ पर लगा हुआ है और अमर ज्योति एक जलती रहती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां याद आती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ आकर हर भारतीय का दिल राष्ट्रता और सम्मान से जो है वो भर जाता है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और इस सफरनामा प्रोग्राम में बहुत सारी बातें अगर आपसे कर रही हूँ, और देखिए अगर आपको फोर्ट और महलों के बाद थोड़ा नेचर और वाटर साइड पीस चाहिए तो शहर के लगभग 20 किलोमीटर दूर निकल जाए, यहाँ पर जो है वो है टिगरा डैम। ये जो है वो एक संक नदी पर बना एक विशाल डैम है जहाँ का पानी पूरे ग्वालियर शहर की प्यास बुझाता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा देखिए कमाल है। चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ और बीच में नीला साफ पानी। यहाँ आप स्पीड बोटिंग, पैडल बोटिंग और वाटर जो अब्सॉर्बिंग है इसका मजा ले सकते हैं। शाम के वक्त डैम के किनारे बैठकर ढलता सूरज देखना और दोस्तों के साथ गर्म चाय पीना एकदम रिफ्रेशिंग वीकेंड फील लगता है। साथ ही ग्वालियर आ रहे हैं तो यहाँ के बाजार में भी आप जरूर आइए। यहाँ का जो है वो सराफा बाजार बड़ा बाजार है, महाराज जो है बड़ा बाजार के नाम से यहाँ पर फेमस है, और साथ ही साथ पटांकर बाजार है बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मैं आपको बता दूं, महाराज जो बड़ा पर जो विक्टोरियन रोमन और साथ ही मराठा आर्किटेक्चर वाली 7 हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एक साथ खड़ी हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ आपको मध्य प्रदेश की वर्ल्ड फेमस चंदेरी और यहाँ पर जो है वो महेश्वरी सिल्क सारीज, दुपट्टा और ट्रेडिशनल हैंडलूम कपड़े यहाँ आपको मिल जाएंगे। और साथ ही मोरेना की मशहूर गज्जक और चिक्की के डब्बा भी आप जरूर यहाँ से पैक कराना मत भूलिएगा, क्योंकि लोकल शॉपकीपर से बात करना और उनका फ्रेंडली अंदाज आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप लिए बिना वैसे भी नहीं रह पाएंगे, जरूर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का. आज हमने ग्वालियर की बहुत सारी बातें करी, यहाँ की महलों की बातें करी, यहाँ के खाने की बातें करी, यहाँ घूमने की, यहाँ की हिस्ट्री की, हर एक पहलू पे हमने बात करी. तो आप भी ग्वालियर ज़रूर जाइए और यहाँ जाकर ना मतलब बस लुत्फ़ उठाइए, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, ज़रूर देखिए, देखने लायक है. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का. तो मुझे दीजिए इजाजत और आपसे मिलती हूँ कल, होंगी ढेर सारी बातें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुकी हूँ मैं. मेरा नाम है प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आप सभी जानते हैं प्रियंका होती है और ये 2 घंटे का प्रोग्राम है, यानी कि 1 बजे से 3 बजे तक मैं आप स्टूडियो में रहने वाली हूँ, जहाँ आपसे बातें करूँगी और आपको गाने सुनाऊँगी. और आज के इस खास मौके पर बहुत सारी बातें तुम करने ही वाले हैं, लेकिन गाने जो है ना, जो हमारी बातों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और जो यू नो एक शो की पहचान है. 90s के दौर के गाने में आपको इस प्रोग्राम में सुनाती हूँ, तो कोई आपका पसंदीदा गाना है तो आप मुझे बता सकते हैं. नंबर है हमारा 8010781078. कभी आपने नोटिस किया है हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कही हुई बात उस वक्त तो समझ नहीं आती है, लेकिन कुछ साल बाद वही बातें जो है ना लाइफ का सबसे बड़ा लेसन बन जाती है. जी हाँ, आज के दिन भाई ये दिन जो है बड़ा ख़ास है, मेरे लिए भी बहुत ख़ास है. मैडम ये चैप्टर एग्ज़ाम में आएगा क्या, सर इतना होमवर्क क्यों देते हैं, और टीचर का वही क्लासिक जवाब, अभी नहीं समझोगे बेटा बाद में समझ में आएगा. और ऑनेस्टली आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ा रहे थे बल्कि हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. टीचर्स हमारी लाइफ के वो लोग हैं जो हमें सिर्फ किताबों के आंसर्स नहीं बताते हैं बल्कि हमें सवाल पूछना सिखाते हैं, हारने पर दोबारा कोशिश करना, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, डिसिप्लिन रखना, और सबसे ज़रूरी बात खुद पर विश्वास करना. कभी कोई टीचर हमारी छोटी सी अचीवमेंट पर इतना प्राउड यू नो हुआ कि हमें लगा हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ, तो कभी किसी टीचर की डांट उस वक्त बुरी लगी लेकिन बाद में समझ आया कि उसमें हमारी भलाई छुपी हुई थी. और शायद यही एक अच्छे टीचर की खासियत है, और वो क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं, हमारी सोच में, हमारी हैबिट्स में और हमारे फैसलों में. तो आज टीचर्स डे के इस खास मौके पर मैं आप सभी टीचर्स को विश करना चाहती हूँ, और सभी को मैं दिल से, सभी टीचर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी लाइफ को सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि अपनी सीख, गाइडेंस और थोड़ी सी डांट से भी बेहतर बनाया. क्योंकि देखिए मार्क्स भले ही ना हम भूल जाएं लेकिन एक अच्छे टीचर की कही हुई बात जो है वो अक्सर पूरी लाइफ याद रह जाती है. तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द अमेजिंग टीचर्स. और बस यही कहूँगी कि आप अपने टीचर से हमेशा कनेक्ट रहिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अब इसी बात पर मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज है सैटरडे और आप सभी जानते हैं कि हर सैटरडे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूं हैक्स, अमेजिंग हैक्स, जी हाँ, जो कि बड़े काम के होते हैं, हमारे काम को इजी करते हैं, हमारे लिए वक्त बचाते हैं और भी बहुत कुछ जो हमारी ज़िंदगी को एक आसान मोड पर कैसे लाया जाए। अब उसमें देखो कई सारी छोटी छोटी, इनफैक्ट छोटी बड़ी हर एक चीज़ों का एक कहीं के साथ होता है। लेकिन अब देखो मेरे को लगता है कि काम में अगर एक बड़ा हिस्सा हमारे समय का बच जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाती है ना, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा समय का जो है वो घर की देखभाल और ख़ास तौर पे किचन में जाता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए हर सैटरडे हैक्स लेकर के आती हूँ और आपको मैं अमेजिंग हैक्स बताती हूँ। तो आज भी होने वाला है भाई यही हैक्स, जो कमाल के जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है उस हैक से आपको सोल्यूशन मिल जाए, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और साथ के साथ क्योंकि आज टीचर्स डे है तो आज मैं कुछ टीचर्स की बातें और इनफैक्ट और भी बहुत कुछ जो आप इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आज के प्रोग्राम में क्या खास होने वाला है। चलिए इसी के साथ अब आपको सुनाती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं. मैं हूं प्रियंका. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हैक्स पर बात करने वाली हूं, तो एक हैक, इनफैक्ट एक नहीं बल्कि दो हैक्स आपको मैं ऐसे बताने वाली हूं जो आपके पैसों को बचा सकता है. जी हाँ. अब देखो, कई बार क्या होता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बचत ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बचत से भी एक बड़ी बचत का निर्माण होता है. तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आप छोटी छोटी बचत कर सकते हैं. अब देखो, जब छुट्टी होती है तो घर के काम हमें दिखते हैं कि कहाँ पे क्या सफाई क्या करना है, है ना. अब ये वाली चीज़ें जब हम नोटिस करते हैं तो फिर उसके साथ में खर्चा भी हमें याद आता है कि हाँ, अब ये साफ़ करने के लिए ये मंगाना पड़ेगा, है ना, उस चीज़ को साफ़ करने के लिए वो चीज़ मंगानी पड़ेगी. तो इस तरह के घर के खर्चे जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं. अब इसको देखो, हम पूरी तरीके से तो कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर चल रहा है भाई, लेकिन कुछ एक चीज़ों को बचा करके हम काफ़ी उसमें एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने कांच की चीज़ें, यानी कि कोई दरवाजे पर लगा शीशा या कोई मिरर है,

है ना, या इस तरह की चीजें जो एक शोभा के लिए आपके घर में है, आप उनको जब सफाई उसकी करते हैं तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करते होंगे जिसे आप बाहर से परचेज करते हैं और उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है ना। तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपकी किचन से निकलती है और हम उसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन कितना सारा घर का कांच हम इससे साफ कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि जो मिरर है ना, जिसको देख करके आप रोज सजते संवरते हैं, आप उसको भी साफ कर सकते हैं और पूरी तरीके से ये साफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आप फ्री में ये काम कर सकते हैं। वो है आलू के छिलके। जी हाँ, तकरीबन आलू जो है वो हर घर में इस्तेमाल होता है और यहाँ तक कि तकरीबन हर सब्जी में डलने वाली ये चीज़ है। अब ऐसे में छिलके भी हर दिन निकलते हैं आलू के ना, लेकिन अब उन छिलकों का हम क्या करते हैं, हम इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन अब आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप इन्हें फेंकने की बजाय इसका इस्तेमाल सिंक साफ करने में, शीशा साफ करने में, अपने कांच के दरवाजे साफ करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आलू के छिलके में स्टार्च बहुत होता है जो आपके कांच की चीज़ों को साफ करने में ये काफ़ी हेल्प कर देगा। तो ये करने से आपके कांच के दरवाजे, शीशे, जो भी कांच की चीज़ें हैं वो चमक जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे उनको क्लीन करने में, तो अब आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मुझे आप बताना कि आपको ये हैक कैसा लगा। ऐसे ही मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, बिकॉज आलू की बात हो रही है और आलू ना मेरा फेवरेट है भाई। आलू के चिप्स हो, आलू की सब्जी हो, या जो भी आलू की आइटम बनी है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मैंने एक इसका हैक पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आलू के चिप्स जो कि बाज़ार से तो हम करते ही हैं परचेज़, लेकिन घर के जो आलू के चिप्स होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसको हम नहीं बनाया है ना। लेकिन क्या होता है, बाहर के चिप्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइम तक सही रहते हैं, लेकिन जो घर में बने चिप्स होते हैं ना, वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, बहुत सौगी हो जाते हैं ना। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके बनाए चिप्स में भी अगर ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप आलू के चिप्स को मीठे नीम की सूखी पत्तियों के साथ रखें, यानी कि कड़ी पत्ते के साथ अगर आप रखेंगे, तो जो कड़ी पत्ता है वो पत्तियाँ जो है वो नमी सोख लेगी और चिप्स कुरकुरे बने रहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि नमकीन में अक्सर जो कड़ी पत्ता है वो डलता है ना, तो वो स्वाद तो देता ही है, लेकिन साथ के साथ नमी जो है वो नहीं आने देता है नमकीन में या आलू के चिप्स में, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, बढ़िया हैक है। अगर आप भी आलू के चिप्स बनाने वाले हैं या बना चुके हैं, तो ये आप हैक को यूज़ कर लो और बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत टाइम तक आपके आलू के चिप्स कुरकुरे बने रहेंगे। तो ये हैक्स मैंने आपके साथ में शेयर किया। अभी और बहुत कुछ आपको बताना बाकी है, लेकिन साथ के साथ मैं आपको सुना रही हूँ गाने, तो आइए एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से गाने रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और मैं आपको आज हैक्स बता रही हूँ। एक हैक आपको और बताती हूँ जो कि ये बड़ा काम का होने वाला है, क्योंकि जो किचन में काम करते हैं ना उनको पता होता है कि भाई कितनी मुश्किलों से किचन रेडी होती है, खाना तैयार होता है ना। तो ऐसे में अब जैसे प्याज काटो सब्जी बनाते वक्त, खाना बनाते वक्त तो आंसुओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही आपको हरी मिर्च जब आप कट करते हैं तो आपको जलन का भी सामना करना पड़ता है जो अक्सर हाथों में आ जाती है। अब इस जलन का क्या किया जाए? भाई प्याज का हैक तो मैंने आपको बताया था पहले, लेकिन हरी मिर्च अगर हाथों में लगने लगे, जलने लगे तो क्या करना चाहिए? तो अगर आप भी सिर्फ हाथों को धोकर ऐसे ही जलन महसूस, जलन को फील करते हुए रह जाते थे तो अब आपको ये महसूस नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरी मिर्च की जलन को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन हो रही है तो हाथों को तेल या दही, दो चीजें मैंने बताई हैं, या तो तेल या दही, अगर आप दोनों में से कोई भी एक चीज को मलकर और फिर अच्छे से आप हाथ धोते हैं तो जलन काफी हद तक कम हो जाएगी। जी हाँ, अगर घर में दही है तो हाथ में दही मल लीजिए और उसके बाद हाथ धोइए, या फिर तेल है तो तेल को आप हाथ में मलकर फिर आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं तो जलन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा हैक भी बड़े ही कमाल का है और ये जुड़ा है रोटी से। अब रोटी बनाने के बाद में क्या होता है, या तो वो अकड़ जाती है या वो गीली हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब सी गीलापन आ जाता है उसमें, है ना। और अक्सर फिर ये रोटियां जो है खाने में अच्छी नहीं लगती। अब गर्मी में क्या होता है कि रोटियां एक बार बनाकर रख लो तो बार बार किचन में जाना नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे में क्या होता है रोटियां गीली हो जाती है। अब इसका उपाय क्या है, क्या इसका कोई उपाय है? तो मैं बताती हूँ, बिल्कुल है इसका उपाय। रोटी पकाते समय ध्यान रखें, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि रोटी कहीं से भी कच्ची ना हो, क्योंकि अगर ज़रा सी भी कहीं से भी कच्ची रह गई ना तो बस फिर वो रखते ही थोड़ी देर के बाद गीली हो जाएगी। इसलिए इस आपको ध्यान रखना है कि रोटी जब आप पकाएं तो पूरी पकाएं, कहीं से भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। पूरी पकी हुई रोटी में नमी नहीं आती है, अगर आप ज़रा सा भी कच्चा छोड़ दोगे तो रोटी में नमी आ जाएगी। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, रोटियां बिल्कुल फूली फूली सेके, एकदम पूरी पकी हुई, मज़ा आएगा खाने में। और रखने के बाद अगर आप थोड़ी देर बाद भी खाओगे तो भी रोटियां गीली नहीं होगी, बहुत ही आराम से आप रोटियों को इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे हैक्स जो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ और साथ ही सुना रही हूँ गाने। आइए एंजॉय करते हैं अगला गाना। मैं हूँ प्रियंका, रेडियो 107.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: जिस उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर। प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में बातें हो रही हैं, हैक्स बता रही हूं आपको मैं, और साथ ही कुछ और हैक्स जो कमाल के तो हैं लेकिन साथ साथ बहुत यूज़फुल भी हैं। तो मैं आपको बताती हूं, केले अगर आप खाने के शौकीन हैं और घर में अक्सर केले रखे रहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जिसका सामना आपको करना पड़ता है कि केले जो हैं अगले ही दिन काले पड़ने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे धीरे धीरे वो गलने लगते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम का सामना आप भी करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूं जिससे आपके केले जो हैं वो 5 से 6 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। केले का जो गुच्छा होता है ना, उसको आप लटका कर अगर रख देते हैं, या एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, गीला कॉटन का कपड़ा या कोई टॉवल छोटी वाली होती है उसको आप गीला करके अगर आप उसके गुच्छे को कवर कर देते हैं, यानी कि जो उसके ऊपर का गुच्छा होता है उसको अगर आप कवर कर देते हैं तो केले जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। 5 से 6 दिन तक आप इसको ईजिली रख सकते हैं, केले ख़राब नहीं होंगे, आराम से आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये वाली चीज़ अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी ये बताइएगा, क्योंकि केलों की जो प्रॉब्लम है ना वो अक्सर देखा गया है कि रोज़ अगर आप ताज़े केले लाके खा रहे हो तो सही नहीं, तो 2-3 दिन आपने रखे तो केले गलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला ट्रिक, ये वाला हैक जो है आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको मैं बताती हूँ पानी वाले नारियल से जुड़ा एक और हैक, जो कि बड़े कमाल का है। पानी वाला जो ताज़ा नारियल होता है ना, जिसमें गिरी भी निकलती है, अच्छा क्या होता है कि कई बार तो उसकी गिरी आसानी से निकल जाती है, लेकिन कई बार गिरी जो है उसके खोल से बहुत टाइट चिपकी हुई होती है, निकल ही नहीं पाती है, और नारियल जो है फिर पूरी तरीके से उस खोल से नहीं निकल पाता है ना। तो अगर ये प्रॉब्लम का सामना आप भी करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी गिरी को आप आसानी से खोल से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नारियल के ऊपर छोटा सा छेद करना है और उसका जो पानी है वो आप निकाल दीजिए, और सारा पानी ऊपर से छेद करके निकाल लें, और फिर उसे गैस बर्नर पर रखें। 2 से 3 मिनट तक आपको सेकना है चारों तरफ से, पूरा एकदम सेक दें। ऐसा करने से पता है क्या होगा, नारियल का ऊपर वाला जो कड़क हिस्सा होता है ना खोल, वो चटक कर अलग हो जाएगा, और या फिर चटका भी नहीं तो आप हल्का सा उस पर मारोगे तो वो चटक जाएगा और गिरी जो है अंदर की एकदम साबुत आपको मिल जाएगी, और इस तरह से नारियल को आप आसानी से उसके खोल से अलग कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि कहीं के काम को ना आसान कर देती हैं, क्योंकि होता क्या है कि छोटी छोटी सी चीज़ें ही ना बड़े समय की होती हैं और यही समय हमारा वेस्ट हो जाता है। अब घर में इतने सारे काम होते हैं, अब उसमें अगर इतना भी हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाए तो कितना समय बच जाता है ना। ऐसे ही मैं आपको एक और हैक बताती हूँ, मिर्ची पाउडर में अक्सर क्या होता है, नमी आ जाती है, तो नमी से बचाने के लिए अगर आप एक हींग का टुकड़ा उसमें रख दें तो मिर्चियों में नमी नहीं आएगी, बिल्कुल कड़क मिर्च रहेगी और स्वाद भी उसका बरकरार रहेगा, स्वाद भी कम नहीं होगा उसमें। तो ये हैक भी कमाल का है। तो साथ के साथ अभी और बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है, लेकिन साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, इंजॉय कीजिए अगला गाना। मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और चलिए आप कुछ और हैक्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। दूध उबालते वक्त अक्सर दूध के सामने खड़े रहना पड़ता है क्योंकि वो कब उबल जाए और गिर जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता भाई, क्योंकि अक्सर ऐसा और आप लोगों के साथ में होता है कि आप पूरे टाइम दूध के पास खड़े हो तब तो दूध उबला नहीं, लेकिन जैसे ही आप चंद सेकंड्स के लिए कुछ काम एकदम से करने गए पीछे से दूध गिर जाएगा। तो ऐसी वाली प्रॉब्लम ना मतलब बचपन में बड़ी होती थी और बड़ी हंसी आती थी कि ऐसा कैसे। तो दूध का ना जब हम उसे बॉईल करते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर आपके पास काम बहुत सारा है लेकिन दूध भी पकाना नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करें, क्या कोई हैक है कि दूध भी पक जाए और दूध गिरे भी नहीं और हम उसके सामने खड़े भी ना हो और बाकी काम भी हो जाए हमारे? तो बिल्कुल हैक है, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। तो दूध उबालते समय आपको क्या करना है, जैसे आप पतीले में आप दूध पका रहे हैं और अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि दूध उबल के गिर जाता है, तो उसके ऊपर में एक लकड़ी का चम्मच आप रखते हैं। लकड़ी का चम्मच होता है ना, आप पतीले के ऊपर इस तरीके से रखते हैं जिससे दूध उफन कर बाहर नहीं आएगा। दूध पकेगा लेकिन उफन के बाहर नहीं आएगा और बिल्कुल एकदम दूध बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और आप जैसे कोई काम कर रहे हो और दो चार मिनट लेट हो भी गए हैं तो भी दूध नहीं गिरेगा अगर आप उस पतीले के ऊपर लकड़ी का चम्मच रख देते हैं। तो ये हैक आप करके देखिएगा, बहुत कमाल का हैक है। ऐसे ही अगला हैक है पुदीने से जुड़ा। पुदीने को सुखा कर देखो, कई लोग रखते हैं खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका छाछ में दही में लस्सी में इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर आप पुदीने को सुखा कर स्टोर करना चाहते हैं तो उसे ऐसा करने के लिए आप जड़ों से बांध कर इसे धूप में सुखाएं। और अगर उसके बाद भी, वैसे तो नमी नहीं रहेगी लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नमी महसूस होती है तो 30 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव में रख दीजिए। पूरे तरीके से एकदम क्रिस्पी पुदीना एकदम सूख जाएंगे और बहुत लजीज लगेंगे। फिर आप उसे पराठे में डालकर या सब्जी में डाल के, छाछ में डाल के, दही में डाल के आप खाओ, बड़ा मज़ा आएगा। ये वाला हैक भी बड़े काम का हैक है। चलिए अब इसी बात पर सुनाती हूँ आपको गाना। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

मैं हूं प्रियंका, आपके साथ रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में आपको बता रही हूँ वो हैक्स, और कई कमाल के हैक मैंने आपको बताए हैं जो ज़्यादातर किचन से जुड़े हुए हैं। तो ये हैक्स आपके छोटे छोटे जो काम हैं उसको बहुत ही ईजी कर देगा और समय बचाएगा। ऐसे ही कभी ऐसा होता है ना कि हम छुट्टी पर होते हैं तो कभी कुछ कुछ ऐसा खाने का मन करता है जिसमें चाशनी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रसगुल्ला है या सूजी का हलवा है। सूजी का हलवा कभी आप चाशनी वाला बनाइएगा, बड़ा स्वाद लगता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी मिठाई, ऐसा मीठा जिसमें चाशनी की ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि कई बार ज़्यादा चाशनी बन जाती है तो हम ये सोच के रखते हैं कि चलो अभी तो हमने इस्तेमाल कर लिया, कुछ दिन बाद हम इसका फिर कुछ और जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे। अब होता क्या है, चाशनी बनाने के बाद चाशनी जम जाती है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो क्या किया जाए जिससे चाशनी जमे नहीं? तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप थोड़ा सा नींबू का रस चाशनी बनाते वक्त उसमें डाल दें तो एक तो चाशनी बड़ी क्लियर बनेगी और दूसरा चाशनी जमेगी नहीं। और इस तरह से आप चाशनी को रख सकते हैं क्योंकि आपने उसे नींबू उसमें ऐड कर दिया है तो अब वो जमेगी नहीं। ऐसे ही अगर दूध को फ्रिज में ना रख पाएँ, कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है कि आप फ्रिज में नहीं रख पाए दूध को, तो दूध को उबालते समय एक हरी इलायची को तोड़कर दूध में डाल दें। तो इससे क्या होगा, दूध लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अगर भूल भी जाते हैं दूध को फ्रिज में रखना तो भी दूध सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। तो इस तरह से आप दूध को बचा सकते हैं। तो देखा, कई बार होता है ना कि अक्सर गर्मियों में भी होता है कि ज़रा सा दूध ठंडा हुआ, जैसे हमने पकाया दूध और ठंडा हुआ, तो फ्रिज में अगर हम रखना भूल गए तो थोड़ी देर बाद में दूध ख़राब होने लगता है। तो अगर आप हरी इलायची डालकर पकाएंगे तो कुछ समय तक दूध जो है ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप इसको बचा सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़, एक है कब मैं आपको और बताती हूँ, कई बार क्या होता है आलू उबालते समय जो है आलू जैसे उबलते हैं तो फूट जाते हैं, है ना, और पानी में मिक्स हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो भी हमें बनाना है, आलू सैंडविच बनाना है या पराठे बनाने हैं या जो भी बनाना है, तो उसमें वो स्वाद नहीं आता आलू का ना, क्योंकि आलू पानी में मिक्स हो गया फूट के। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो कभी भी आलू उबालते वक्त, जब भी आप आलू को बॉईल कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आलू फटते नहीं हैं और इसका छिलका भी आसानी से उतर जाता है। और जैसे दो सीटी आपने लगाई आलू में और आलू उबल चुके हैं और आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, अगर एक आध सीटी ऊपर भी चली गई, यानी कि 3 से 4 सीटी भी लग गई, तो भी आलू तब तक फूटेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही एक्स्ट्रा सीटी हुई है तुरंत आप गैस बंद के उसकी सीटी को, यानी कि जो उसकी हवा, उसका जो प्रेशर होता है अंदर का, आप निकाल दीजिए ताकि आलू जो है वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो, ना। तो ये वाली चीज़ें, बस छोटा सा आपको काम, थोड़ा सा नमक डाल के आलू उबालें तो बस आपका काम देखो कितना इजी हो जाएगा, खाने में भी स्वाद, चीज़ें भी बरकरार रही, ख़राब भी नहीं हुई। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आपको ऐसे ही हैक्स के बारे में बताया है। तो कैसी लगी हैक्स मुझे आप ज़रूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078। अब क्योंकि आज है टीचर्स डे, तो आज इस हैप्पी टीचर्स डे के मौके पर हमारी जो आरजे है स्नेहा, उन्होंने बात की है, तो आइए हम सुनेंगे थोड़ी सी देर में ये सारी बातें। और आप कहीं मत जाइए, एंजॉय कीजिए अगला गाना रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ अजय स्नेहा आपके साथ, और आज हम आए हैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल सेक्टर 75 ग्रेटर फरीदाबाद में, और आज टीचर्स डे के इस खास मौके पर बच्चों से उनके गुरु के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उनसे कुछ सवाल। हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: ध्वनि।
0: ओके ध्वनि,

0: teachers that experience.
1: How to deal with students.
2: Yes. I don't think this even should be a question, because it was always human teachers. Like AI, by the name itself, it suggests ki ye artificial intelligence hai. So it can never replace human teachers. Jo teachers hame knowledge dete hain, wo kabhi AI nahi de paata.
1: Bilkul.
3: Okay. To mera aapse agla sawal rahega ki kya aapke according jo teacher hai और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम ये बात सुनते हैं ना कि पेरेंट्स के बाद अगर हम देखते हैं कि कोई हमें सिखाने वाला होता है तो वो हमारे टीचर ही होते हैं, तो हमें उनकी बात तो माननी चाहिए. ऑब्वियसली वो सिखाते हैं जो अच्छा ही सिखाते हैं, तो उनके साथ का हमारा जो बॉन्ड है वो कैसा रखें हम.
4: आई थिंक इट शुड बी अ फ्रेंडली बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, सो दैट दे कैन शेयर देयर व्यूज एंड लाइक एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू आस्क.
2: Yes, we should share a nice friendly bond with our teachers, because teachers if we share our problems with the teachers, to teachers ke paas experience zyada hota hai, so they can tell us where to like hume kya karna chahiye at every point of our life.
4: Instead of relying on our peers all the time, we can ask our teachers for any value, because they are like more experienced.
3: अच्छा, टीचर्स हमें बुक से तो पढ़ाते हैं, पर कोई एक ऐसा मोटिवेशन याद है जो उन्होंने दिया हुआ अभी तक? मतलब
0: मेनी टीचर्स, लाइक ऑल द टीचर्स, दे मोटिवेट अस थ्रू आउट द सेशंस. लाइक वन ऑफ आवर टीचर्स रिचा मैम, शी ऑलवेज टेल्स अस दैट डोंट ब्यूटिफाई योर पिक्चर्स, इंस्टेड ब्यूटिफाई योर कैरेक्टर, बिकॉज बिल्डिंग अ स्ट्रांग कैरेक्टर मीन्स बिल्डिंग अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, एंड अपने आप को मतलब दैट्स बेटर बना देते हो करके. सो
4: माय टीचर वंस टोल्ड मी, रिचा मैम वंस टोल्ड मी दैट 2+2 इज नॉट ऑलवेज 4, बिकॉज लाइफ कैन गिव यू द सिचुएशंस वेयर यू डू नॉट गेट द डिजायर्ड आउटकम व्हाइल पुटिंग ऑल द राइट एफर्ट्स, सो इट इज अनफेयर टू यू समटाइम्स, सो यू शुड नॉट बी जस्ट फेयर्ड ऑफ इट एंड यू शुड टैकल द सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस.
2: Yes, our Hindi teacher once said one thing in our class. She said कि हमें किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन किसी एक घटनाक्रम पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. This is the thing which I like the most.
3: तो हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं?
0: Yes, definitely.
3: Okay, thank you.
0: थैंक यू सो मच मैम.
3: अब हमारे साथ में है अनन्या, जो कि होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की हेड गर्ल भी है, और साथ ही हमारे साथ में है हिताशी भी. तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि इनके क्या व्यूज़ है टीचर्स डे के लिए. सो हेलो.
5: हाय.
3: ओके, तो हम अपना कोई भी फेवरेट टीचर बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि हम उनके अंदर क्या क्वालिटी ऐसी देखते हैं जिन्हें हम अपना फेवरेट टीचर मानते हैं?
5: आई थिंक मोटिवेशन, द वे शी मोटिवेट्स अस, हर टीचिंग क्वालिटी, लाइक उनके पास जो कन्विक्शन है वो पढ़ाती हैं, द डेडिकेशन एंड ऑल थिंग्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ फ्रेंडली शी इज़ विद अस, लाइक कोऑपरेशन इज़ मस्ट.
6: Agreed, agreed. I also agree with this fact, and also I think the ability to understand and relate with the students, to try to explain stuff to them better. I think
3: okay. Ananya, आप head girl भी हैं, तो आपका ज़्यादा अच्छा bond या फिर ज़्यादा अच्छी बातें होंगी ऐसे ही मैम के साथ में. आपके क्या views हैं teacher के लिए?
6: Teachers के लिए I feel like especially हमारे school में we have a great faculty, and all of the teachers are very supportive, they're very helpful, and I think they grab all the qualities that we look for in a teacher.
3: बिल्कुल. अच्छा, आजकल ना हम बहुत सारे changes देखते हैं, बहुत सारे ऐसे cases भी सुनते हैं कि teachers के, और अब तो बच्चों को मारना भी बंद हो गया है, तो टीचर का एक बच्चों के साथ में जो हम बॉन्ड देखते हैं वो किस तरीके का है? मतलब आप इधर से ज़्यादा पर्सनलाइज करके उसको फील कर पाते हो ना?
6: आई थिंक हर टीचर के साथ एक बाउंड्री है, होती है, बट एट द सेम टाइम हम टीचर्स को काफ़ी ट्रस्ट कर पाते हैं. वी अंडरस्टैंड देयर, वी ट्राई टू एक्सप्लेन आवर पर्सनल लाइफ टू देम, दे अंडरस्टैंड इट, दे ट्राई टू कोऑपरेट, एंड आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ बाउंड्री.
5: आई थिंक आई एग्री विद हर द मोस्ट, क्योंकि आई थिंक दैट्स द मोस्ट फाउंडेशनल बेस लाइक ऑफ हैविंग अ फेवरेट टीचर और एनी टीचर, आई थिंक. तो आई एग्री ऑन दिस.
3: अच्छा, कोई एक ऐसी बात जो टीचर ने हमसे कही हो और हम बहुत टाइम से स्कूल में रहते हैं तो हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, और हम हमसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी और हमारी जो स्कूल के बाहर वाली लाइफ है हम उसमें भी अप्लाई करते हैं?
6: वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड मी, सो आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, सो शी वॉज अ टीचर हु गेव मी ऑल द टाइम एंड ऑल द फ्रीडम टू फोकस ऑन माई एक्स्ट्रा करिकुलर्स फर्स्ट एंड कीप माई एकेडमिक्स इन चेक, सो एंड शी really encouraged that in me, so because of that I think I've started focusing more on my talents and my careers.
5: And I have my interest in dramatics, and I am a student of National School of Drama, New Delhi branch. So I think my teacher, the most that I love in this school, she has supported me so much. She has supported me in like kind of preparing my time schedule for the subject and for extracurricular, for my exams and my classes also. So I think support is the most important thing.
3: अब हमारे साथ में head boy Rishabh और उनके साथ है शाश्वत. चलिए इनसे जानते हैं. Hello.
7: हेलो.
3: ओके, टीचर्स डे की हम बात कर रहे हैं, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा और टीचर भी?
7: फिजिक्स और केमिस्ट्री.
3: ओके, और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो नहीं पसंद है?
7: केमिस्ट्री.
8: ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे को सारे अच्छे लगते.
3: कोई टीचर जो स्ट्रिक्ट लगता हो?
7: केमिस्ट्री के ही है.
3: नहीं.
8: हाँ, एग्री.
3: कौन से?
8: केमिस्ट्री वाले टीचर जो हैं.
3: ओके, अच्छा, स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, हमें लगता है कि यार ये कितना डांटते हैं, कितना बोलते हैं, पर आपको नहीं लगता कि वो हमारे भले के लिए होता है?
8: हाँ, एग्जैक्ट.
7: हाँ, मतलब उनका तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन आफ्टर ऑल उनका मोटिव तो यही होता है कि हमारे
3: कि बच्चा पढ़े.
8: हम इनिशियली समझ नहीं पाते, बट उनका इंटेंशन अच्छा होता है उसके पीछे, मतलब स्कोल्डिंग और डांट वगैरह, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लाते.
3: तो आप मुझे एक डिफरेंस बता सकते हो स्ट्रिक्टनेस में और डिसिप्लिन में?
8: स्ट्रिक्टनेस ये है कि मतलब जब टीचर्स जब बच्चों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाते हैं आई गेस, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेरे हिसाब से.
3: डिसिप्लिन की वजह से?
8: हाँ, क्योंकि वो एक तरीके का यू नो काइंड ऑफ ऑर्डर कहें वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ बच्चों के अंदर डिसिप्लिन हो, दे फॉलो, दे पर्टेन टू रूल्स.
3: ओके, आप हेड बॉय हो.
7: Yes.
3: आप क्या कहना चाहोगे?
7: मेरे हिसाब से डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस में एक माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है. इट्स वो थोड़ा मतलब वो स्ट्रिक्टनेस भी इसीलिए ही दिखाते हैं सो दैट द चाइल्ड कैन बी डिसिप्लिन, बट इट्स समटाइम्स अ लिटिल बिट ओवर एंड दे समटाइम्स आई गेस फॉरगेट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्टनेस.
3: पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब तो बहुत कम है. अब ऐसा लगता है कि टीचर्स अब फ्रेंड बन गए हैं?
8: टीचर्स फ्रेंड्स बन गए हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. पहले आई गेस हो सकता था कि टीचर्स वगैरह थोड़ा लाइक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन याद करो, बिल्कुल जो बुक में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट, लाइक बुक इज द बाइबल. बट आज के टीचर्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि मतलब बच्चों को समझ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बच्चों की हेल्प कर.
7: मेरे हिसाब से टीचर्स वो कोशिश करते हैं कि हम ऑन द सेम पेज ऑफ द स्टूडेंट रहे, जिससे कि दे कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड लाइक व्हाट स्टूडेंट इज थिंकिंग सो दैट दे कैन मेक देम अंडरस्टैंड मोर इवन बेटर.
3: आप लोग 12th में हो ना?
7: Yes.
8: नहीं, मैं
7: 11th.
3: आप 11th में हो? आप 12th में हो. अच्छा, टीचर्स के पढ़ाने का भी जो एक वे होता है वो भी चेंज हुआ है?
7: Yes, I guess. मतलब मैं पहले
3: मतलब जैसे कि पहले होता था ना कि जैसे बुक्स सपोर्टिव मटेरियल कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आप पढ़ो, अब जैसे फ़ोन भी आ गया है, इंटरनेट भी आ गया है, तब उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं ऐसे?
7: हाँ, मतलब इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना दिया है हमारी स्टडीज़ को एंड यस इट्स देर इज़ अ चेंज, बट समटाइम्स वी थिंक के पहले ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इंटरनेट समटाइम्स बिकम्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन और क्या कह सकते हैं कि हम अपने पाथ से अलग हो जाते हैं, लेकिन देयर इज अ चेंज.
8: आई गेस इट्स हाउ वी यूज इट, लाइक हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो अगर इफ वी आर यूजिंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सेल्व्स देन इट इज डेफिनेटली एक्टिंग एज अ टूल, एंड इफ वी आर जस्ट यूजिंग इट इररिस्पॉन्सिबली सो इट इज एक्टिंग एज अ मेनेस काइंड ऑफ.
3: थैंक यू. ओके, आपका नाम?
9: शचिशा.
3: ओके, कौन सी क्लास में हो आप?
9: 2D.
3: ओके, सेकंड क्लास में हो आप, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है वो हमारे साथ. अच्छा, कौन सी टीचर पसंद है आपको?
9: चेता मैम.
3: क्या पढ़ाती है वो आपको?
9: वो मेरी फर्स्ट में क्लास टीचर थी.
3: अच्छा, क्लास टीचर थी. ओके, कोई और सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो?
9: अबेकस.
3: ओके, क्या करते हो आप उसके अंदर?
9: वी डू प्लस माइनस एंड फाइव कॉम्प्लीमेंट्स.
3: ओके, आप अपनी टीचर को जो आपकी फेवरेट है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बोलोगे उनके लिए? वो बेस्ट है ना?
9: यस.
3: तो फिर आप अपनी बेस्ट टीचर को क्या बोलोगे?
9: शी इज ग्रेट.
3: ग्रेट. ओके, थैंक यू. अच्छा, बच्चों के लिए चैलेंजिंग क्या होता है? या स्कूल आने सुबह टाइम पे आना या कुछ ऐसा, या स्कूल में?
6: स्कूल में
0: इट्स चैलेंजिंग स्टडी नहीं होती बट चैलेंजिंग इज जब आपको टीचर्स आपकी समझते नहीं है समटाइम्स. चैलेंजिंग इज जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा एंड दैट टीचर इज स्कोल्डिंग यू फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट. बट इन आर स्कूल मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव. फॉर एग्जाम्पल जागृति झा मैम, शी इज माई फेवरेट टीचर, एंड गौतमी मैम, शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टीचर. दे बोथ आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सपोर्टिव, एंड आई थिंक दैट इन माई स्कूल लाइफ देर इज नथिंग चैलेंजिंग.
5: Okay, one of the challenges I feel that come up in a student's lives is mental health. And with these mental health problems, that stress and exam pressure, some of the teachers do not tend to make a mutual understanding about it. And it's sometimes really frustrating to have to like cover up a lot of subjects and with your mental health, and the teacher is not willing to understand. And it's kind of frustrating sometimes, but some teachers just kind of make your moment someday, and that just kind of sets you in a good tone. And
3: okay.
5: I like that.
3: तो आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चों के अपने चैलेंजिंग मोमेंट होते हैं तो टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता होगा?
0: मे बी बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में तो दैट्स द मेन कंसर्न ऑफ अ टीचर, क्योंकि सुनते नहीं है. बट
4: 10th एंड 12th
0: आई थिंक यही चैलेंज है. बाकी शी दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी वेल एजुकेटेड, दैट दे मेक अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. बट एक ही चैलेंज है, दैट मेक देम डिसिप्लिन.
5: आई ऑल्सो अग्री विद हर. देर आर लाइक 40-50 students are like yapping non-stop. It's really hard to control people, and some of the boys, they're really talkative, they're not willing to understand. And it's really annoying sometimes. I can understand from the point of view of a teacher maybe, and I feel like that's one of the concerns.
3: Okay, thank you.
0: Thank you.
3: Hello.
10: Hello, I am Harshit, class 10c.
11: I am Ayan from class 11th.
12: Okay. I am Dhanur from class 10th.
13: I am Dhanur, I'm Anup from class 10th.
3: ओके, नाम में ही कन्फ्यूज़ हो. ओके, सो आप सबसे रैपिड फायर कर रहे हैं, ठीक है. कौन सा टीचर है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है?
11: सुधीर पुटानी सर.
10: आई थिंक रचना मैम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द वे शी इज स्कोल्स अस समटाइम्स एंड द वे शी इज काइंड टू अस समटाइम्स, दैट्स यू नो वेरी मिस्टीरियस.
12: प्रतिभा शर्मा मैम, द हर वे ऑफ टीचिंग बायोलॉजी लाइक इन अ वेरी फन वे इज रियली इंटरेस्टिंग.
13: बसंत सर, दे टीच अस इन वेरी गुड वे, वी आर हैविंग वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सपीरियंस विद.
3: ओके, कि अच्छा, एक आइकॉनिक डायलॉग जो आपके टीचर हमेशा बोलते हैं.
10: वेल, इट्स अ काइंड ऑफ अ जेनेरिक डायलॉग, लाइक मोस्ट ऑफ द टीचर्स स्पीक इट, दैट इज जो भी कॉपी नहीं लाया खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ क्लास से.
11: और सर हैज अ वेरी यूनिक डायलॉग, सान दाम दंड भेद, बस केमिस्ट्री आनी चाहिए.
3: मेरे को ऐसा लगता है कि ये डायलॉग ना स्कूल का फेमस डायलॉग है, क्योंकि ये हर बच्चे के पास है. ओके, कौन से टीचर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगता है?
10: See, I think Prasuna ma'am, from my experience in this school, which is I think 3 years, yeah, I think Prasuna ma'am is the most strict teacher that I've
11: been with. Think also Neera sir is quite strict.
3: Okay.
12: Prasuna ma'am and Vidhu ma'am, I think, are quite strict.
13: I think Prasuna ma'am is strict, but she is very cold and kind-hearted.
3: Okay. Agar aap ek din ke liye teacher ban jao, to kaun sa rule banana chahoge?
10: I think the new rule would be, if your work is incomplete, then that's okay because we don't care about work.
11: Pressure लेके पढ़ाई नहीं करनी है. जब अगर मन हो तो, अगर आपको interest है subject में, then study. Then if you have interest in other subject, then focus on that.
12: Marks will be given on the basis of knowledge, not on written words or questions answers.
13: अगर हम डेजी फील करें तो इसका मतलब ये नहीं कि अब भी पढ़ते रहें, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए जिससे हम मोर इंटरेक्टिव बने और हम उस जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम ज़्यादा इनफ प्रैक्टिस कर सकें उसके लिए.
3: ओके, एक लास्ट टीचर के लिए कोई एक मैसेज.
10: सी द टीचर्स, माई ओनली मैसेज टू द टीचर्स इज दैट दे शुड बी काइंड, यू आर वेरी काइंड, एंड इवन इफ यू स्कोल्ड अस, दैट्स फॉर आवर गुड, एंड दैट्स यू नो वी ऑल नो दैट यू हैव अ वेरी गुड इंटेंशन बिहाइंड इट.
11: Our teachers are one of the best teachers we have got, and they are very kind-hearted, and they understand us and our studies too, that what a child is doing and what he is not.
12: So no message like that. The teachers we got are very supportive and open to us, and they enlighten us also in the path of our life.
13: They are very close to us. We don't need ki हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें कुछ चाहिए, वो उन्हें हमें पता है कि हमारे अंदर क्या है और हमें कैसे हमें एनलाइटमेंट देनी है. तो वो हमें उनकी जरूरत थी, मतलब वो इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव है हमारे साथ कि अब जैसे पुराने टाइम में हमें होता था कि हमें स्कूल नहीं जाना, बट आज हम कहते हैं कि हमें स्कूल जाना है।
3: अब हम आ गए हैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल के पास, वंदना भाटिया जी के पास। तो चलिए मैम से जानते हैं कुछ सवाल। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा, एक बेस्ट टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है?
14: देखिए, ऐसा है कि आई एम इन दिस

0: पैशन फॉर मोर देन 3 decades और जिस पर मैंने भी काम किया है, टीचर की इंटेग्रिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है. और इंटेग्रिटी के साथ ऑफकोर्स कॉन्टेंट नॉलेज तो होना ही चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए और एक टीचर को लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए. बिकॉज हम लोग वो टीचर्स हैं जो चॉक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड से लेकर आज AI तक आ गए हैं. सो दैट चेंज, दैट क्यूरोसिटी टू लर्न एंड चेंज विद द चेंज एंड ऑफकोर्स कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी टूवर्ड्स योर वर्क.
1: मैम, आप खुद एक प्रिंसिपल हैं, आप बाकी सब टीचर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
0: सी, अ प्रिंसिपल इज़ अ डेजिग्नेशन. प्रिंसिपल भी एक टीचर ही होता है और टीचर्स के साथ काम किया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल खुद भी एक टीचर है. सो मोटिवेशन के लिए देखिए, कोई किसी को तब मोटिवेट कर सकता है जब वो खुद मोटिवेटेड होता है. सो आई आस्क माई टीचर्स एंड आई ऑलवेज टेल माई टीचर्स दैट यू बी हैप्पी एंड कंटेंटेड एंड मोटिवेटेड सो दैट यू आर रीडूइंग दैट वर्क. अगर आपके दिन में, आपके सारे दिन की क्लासेस में, काम में कोई भी चीज़ आपको परेशान करती है, देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स बिकॉज इट्स लाइफ. टीचर से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, यू सॉल्व इट देन एंड देयर. उसका सल्यूशन करके ही आप घर जाएं, सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू कम बैक अगेन नेक्स्ट डे विद फुल पॉजिटिविटी एंड एंथुजियाज्म, ताकि वो कमिटमेंट तभी दे पाएंगे जब वो अपने आप को कमिटेड फील करेंगे एंड मोटिवेटेड रहेंगे. सो दैट्स द मंत्रा वी आर फॉलोइंग एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट्स वर्किंग आल्सो.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ RJ स्नेहा और आपने सुनी बहुत सारी बातें आज टीचर्स डे से जुड़ी हुई. जी हाँ, आज हम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल सेक्टर 75 फरीदाबाद में आए, जहाँ पर आज हमने टीचर्स डे के खास मौके पर बच्चों से बहुत सारी बातें जानी. टीचर्स जो हमारे गुरु होते हैं, हमें लाइफ में इतना कुछ सिखाते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे ज्ञान देते हैं. बच्चों से हमने बहुत सारी बातें जानी, उनके फेवरेट टीचर कौन है, क्या क्या वो मोटिवेशन देते हैं, कैसे उनका बॉन्ड टीचर्स के साथ में कितना अच्छा है और साथ ही टीचर्स उनको कैसे समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना। मैं हूँ प्रियंका और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना, और इसी के साथ ही मेरे चलने का वक्त हो गया है। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे मैसेज करके बताना, नंबर है हमारा 8010781078। और इसी के साथ मेरे चलने का वक्त हो गया है, और चलते चलते मैं एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो बस आप एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है. जी हाँ, प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त चांदना. जी हाँ दोस्तों, लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर से ये खास प्रोग्राम, ये खास एपिसोड जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी बेहतरीन गाने. लेकिन उस गानों के पीछे, मतलब जब हमने उन गानों को देखा तो प्लेबैक सिंगिंग तो ऑफकोर्स सुनी, लेकिन वो किस पर फिल्माया गया, आज मैं एक अभिनेत्री के बारे में बात करने वाली हूँ. आई एम श्योर जो हमारे जेंजीज हैं, इन लोगों ने ये नाम शायद कम सुना होगा, लेकिन जो थोड़े से पहले के हमारे लोग हैं वो इस नाम से भली भांति वाकिफ होंगे. तो दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जिस कलाकारा के जीवन पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जिनके बारे में मैं आपको आज दूंगी ढेर सारी जानकारी, दोस्तों वो हैं नंदा जी. बहुत एक फेमस ये एक्ट्रेस रहीं और बहुत सुपरहिट फिल्म्स इन्होंने बॉलीवुड को दी. हम सभी इनके बहुत बड़े फैन थे और आज भी हैं. तो दोस्तों, आज का सफ़र नंदा जी के नाम. नंदा जी अब हमारे बीच में नहीं है. 2014 में ये इनका शरीर शांत हुआ, लेकिन अपने काम के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपने करियर के माध्यम से ये हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बसी रहेंगी. तो दोस्तों, आज का सफ़र नंदा जी के नाम. यहाँ ले रही हूँ मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक. जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का ये सफर एक खूबसूरत सी अभिनेत्री के नाम। जी हाँ, वो अभिनेत्री जो कि बहुत समय तक बॉलीवुड में छाई रही। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ नंदा जी की। नंदा जी जिनका पूरा नाम था नंदिनी कर्नाटकी और ये भारतीय फिल्म की अभिनेत्री है, ये तो हम सब जानते ही हैं। भारतीय से मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी फिल्मों में तो हमने देखा ही है, लेकिन ये मराठी फिल्मों में भी दिखाई दी और हमारे भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्रियों में से दोस्तों नंदा जी का नाम लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है। ऑलमोस्ट 30 साल तक ये बॉलीवुड में छाई रही। छोटी बहन, धूल का फूल, भाभी, काला बाजार, कानून, हम दोनों, ये एक बहुत बहुत अच्छी पिक्चर थी ये। जब जब फूल खिले, गुमनाम, इत्तेफाक, द ट्रेन, प्रेम रोग, इन सभी में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। फिल्म्स इनकी बहुत आई, लेकिन जो मैंने अभी ये नाम गिनाए ये मतलब बहुत एक ही सिलेक्टेड मूवीज़ थी। तो दोस्तों नंदा जी के बारे में मैं आपसे करूंगी बहुत सारी बातें, क्योंकि नंदा जी की ज़िंदगी बहुत हमें मोटिवेट भी करती है और एक इनका नेचर ये भी था कि बहुत हेल्पिंग थी। इन्होंने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर शुरुआत करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। तो करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, फिलहाल ले रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। जुड़े रही हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील Live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में। दोस्तों आप सुन रहे प्रोग्राम कैफे क्लासिक्स और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री नंदा जी की, जिनको हम नंदा जी प्यार से कहते थे या फिर हम ये मान लें कि नंदा नाम इनका फिल्मी करियर का था। इनका असली नाम था नंदिनी कर्नाटकी। 8 जनवरी 1939 को इनका जन्म हुआ और महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में मतलब से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिताजी विनायक दामोदर कर्नाटकी के घर में इनका जन्म हुआ और सफल मराठी अभिनेता और निर्माता निर्देश थे इनके पिताजी। तो मतलब ये जो काम है इनको ये एकदम से इनको सडन नहीं मिला, ये इनके ब्लड में ही था। और मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग में कई हस्तियों से उनके कनेक्शंस थे। और जो उनके भाई थे यानी कि इनके चाचा वासुदेव कर्नाटकी, वो एक छायाकार थे। जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां बाबूराव पेंडारकर, भालजी पेंडारकर, ये सब जो हैं ये भी इनके फैमिली का ही हिस्सा हैं। महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम से भी ये रिलेटेड थी क्योंकि वो इनके मामा हैं। और मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने लता मंगेशकर को पहली मंगला गौर फिल्म उद्योग में भी पेश किया था। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि नंदा जी का जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत स्ट्रांगली वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और आप समझ लीजिए कि ये जो सारे उनके अंदर ये टैलेंट जो था वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया था। और 1947 में इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई, तब नंदा जी मात्र 7 साल की थी। और परिवार को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा क्योंकि जो एक ब्रेडविनर थे वो ही नहीं रहे, तो लिहाजन ये बाल कलाकार बन गई। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम किया और 1950 के दशक की शुरुआत की फिल्मों में इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर अपने परिवार की मदद करी। और फिल्मों में क्योंकि जब इन्होंने काम शुरू किया तो हालांकि मतलब जाहिर सी बात है कि पढ़ाई पे तो असर हुआ ही, तो थोड़ा पढ़ाई से भी ये दूरी इनकी बन गई। बट ये है कि क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पाती थी तो कुछ टीचर्स ने इनको घर पर आकर ही इनको पढ़ाया और इनकी पढ़ाई जो है उस हिसाब से फिर चलती रही। और फिल्मों में करियर बनाकर इन्होंने अपने 6 भाई बहनों का मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करी और उनको एजुकेशन भी इन्होंने दिलवाई। सो हैट्स ऑफ टू यू नंदा जी, आपने अपना करियर भी बनाया और अपने भाई बहनों का भी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम ऐसे ही किसी की ज़िंदगी को हम जब खंगालते हैं। हम लोग को शोबिज़ में जब हम देखते हैं हमको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन देखिए जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो किस इंसान ने, किस कलाकार ने कितनी मेहनत करी है ये हमें पता चलता है। तो यहाँ बातें हो गई ढेर सारी, आइए लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी, करेंगे और ढेर सारी बातें नंदा जी के बारे में। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा कैफे क्लासिक्स, मैं हूँ उस शो की होस्ट और आप सबकी प्यारी प्यारी दोस्त। और आज के प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी की, जिनका जन्म जो है वो 1939 का है और बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों नंदा जी ने 1948 में मंदिर से अपनी शुरुआत करी। सिल्वर स्क्रीन पर जब उन्होंने पहली बार बेबी नंदा के रूप में काम किया तो लोगों ने उनको बहुत सराहा भी, बहुत पहचान उनको मिली। मंदिर, जग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में उन्होंने 1948 से लेकर 56 तक, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो गुड 8 ईयर्स इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। और नंदा जी के जो चाचा थे, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक थे। शांताराम जी भी इनके रिलेटिव हैं। तो इन सब के वजह से इनको, मतलब थोड़ा सा ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा इनको काम मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और इनको एक बड़ा ब्रेक मिला तूफ़ान और दिया मूवी में, जो कि आई 1956 में। ये जो तूफ़ान और दिया है, ये एक स्टोरी थी अनाथ भाई बहन की, जो दुखद असफलताओं की वजह से त्रस्त हो जाते हैं, जिसमें वो लड़की अपनी आईसाइट तक खो देती है। तो इसमें इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी रही। और उसके बाद 1957 में आई मूवी भाभी, जिसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी इनको मिला। और वो इनका, मतलब इनका पहला नामांकन था और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। 1960 में आई काला बाजार, और उसके बाद में शांताराम द्वारा निर्देशित एक और मूवी आई थी कुछ, मतलब मराठी मूवीज़ में, जिसमें राजा परांजपे और कुलदेवत ऐसे करके जो मूवीज़ आई, इसमें इन्होंने काम किया। और इन्होंने एक मराठी पिक्चर में एक बहन की भूमिका के लिए नंदा जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी सम्मानित किया गया। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि काम बहुत किया, मेहनत बहुत की। थोड़ा सा पॉजिटिव इनका पास ये चीज़ थी कि फिल्म किसे जुड़े हुए थे इनके परिवार के बहुत सारे लोग, लेकिन जैसे कि हमने इनकी कहानी जब खंगाली तो पता चला कि पिताजी जो है वो बहुत जल्दी चले गए, तो काफ़ी जल्दी इन पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। लेकिन जो इनको उससे एक्सपीरियंस मिला ना, मतलब एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 8 साल काम करना, फिर आगे आई तो फिर और अच्छे अच्छे काम करे, तो वो सब इनका जो इनका एक शेपिंग ऑफ इनका फिल्म एक्ट्रेस एज ए, मतलब करियर उनका बहुत अच्छा शेप हुआ और ये काफ़ी एक सफल अभिनेत्री रहीं। नंदा जी के बारे में हम करेंगे और ढेर सारी बातें। फिलहाल ले रही हूँ आप एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद दोस्तों मैं जल्दी से आ जाऊँगी, आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और दोस्तों आज का ये हमारा शो हमने समर्पित किया है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। दोस्तों नंदा जी का जो फिल्मी करियर है वो काफ़ी बड़ा रहा, ऑलमोस्ट 30 साल तक उन्होंने काम किया, जिसमें 8 साल तो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नंदा के नाम से उन्होंने काम किया। हिंदी ही नहीं मराठी फिल्म जगत में भी इन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया, खुद भी काम किया, अपने परिवार वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। और एक जो इनकी बहुत अच्छी बात थी दोस्तों, ये नए लोगों को बहुत एनकरेजमेंट देती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि शशि कपूर जी, हालांकि शशि कपूर जी तो खुद ही राज कपूर से वो संबंध रखते थे, उनके ब्रदर थे, तो उनको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि शशि कपूर जी की शुरुआती पिक्चरें नहीं चल रही थी तो उस ज़माने में उस टाइम पर नंदा जी ने उनके साथ फिल्में साइन करी। हालाँकि शुरू की दो पिक्चरें चार दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ, ये दोनों पिक्चरें नहीं चली, लेकिन उसके बाद की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल रहीं। और अपने शुरुआती करियर में जब उन्होंने एकल मुख्य नायक के रूप में उन्होंने जब काम किया तो सभी फिल्में उनकी फ्लॉप रहीं, लेकिन उसके बाद वो चल निकले। और उसके बाद में उन्होंने शशि कपूर जी ने हॉलीवुड में भी काम किया, कई मूवीज़ में काम किया, जिसमें कुछ मूवीज़ जो हैं उनकी बहुत अच्छी चली। और जब जब फूल खिले जो 1965 में आई उसमें नंदा जी ने पहली बार पश्चिमी भूमिका निभाई और इससे उनकी छवि को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बूस्टअप मिला। और 65 से लेकर 70 की अवधि में शशि नंदा जी की जोड़ी बहुत ज़्यादा सफल रही। और फिल्मों में मोहब्बत इन्हें कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब, रूठा ना करो। 1970 के दशक के शुरुआत में नंदा जी ने द ट्रेन और ऐसी कई मूवीज़ करी और ये सभी मूवीज़ बहुत ज़्यादा सफल रही। तो दोस्तों करियर इनका बहुत लंबा है। थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ कि इनके एक और जो इनकी हिट फिल्म आई वो थी गुमनाम, आपको याद होगा वो

है। हाँ जी, एक ये बहुत ही मल्टी स्टारर मूवी थी गुमनाम, जिसमें नंदा जी भी थी, और ये पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा चली। इन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी बहुत काम किया, जिस मूवीज में जो इनका मेजरली काम मेरा कसूर क्या है और आकाश थी, और कानून मूवी आई, फिर छोटी बहन इनकी मूवी आई। राजेश खन्ना जी के साथ इन्होंने थ्रिलर इत्तेफाक में इन्होंने साइन करी, और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद जो है, इस मूवी के बाद राजेश खन्ना जी सुपरस्टार बन गए, और उनके साथ इन्होंने कुछ और हिट फिल्में भी करी, जैसे परिवार, धरती कहे पुकार। संजय खान के साथ भी इन्होंने काम किया, उन्होंने बेटी अभिलाषा जैसी हिट फिल्में दी, और 3 फिल्में इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम। ये मूवीज़ जो हैं, इसमें शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद और संजीव कुमार के साथ उनकी पिछली हिट फिल्मों से अधिक कमाई इन पिक्चरों ने करी। अगर मैं इन सबको रैप अप करूं तो एक बात ये समझ में आती है कि बहुत ही सुपरहिट करियर नंदा जी का रहा, और बॉलीवुड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और लाइफ से तो इतना कुछ हमें सीखने को मिल ही रहा है कि अपने को भी सेटल करना, दूसरों को इनकरेज भी करना, कभी किसी के खिलाफ कोई जेलेसी की भावना ना रखना, ये सबसे बड़ा इंसान का गुण होता है, और ये गुण हमें देखने को मिला नंदा जी की लाइफ में। तो दोस्तों, बहुत हो गई ढेर सारी बातें, चलिए यहाँ पे लेते छोटा सा म्यूजिक ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: Radio Mana Vishnu 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: हाँ तो नैनों में
2: बिंदिया है,
1: माथे पे
2: बिंदिया है,
1: तो बालों में
2: गजरा है,
1: आँखों में
2: गजरा है।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का सफर हमारा समर्पित है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को, जिनका असली नाम नंदिनी कर्नाटकी था। बहुत ही सफल फिल्मी करियर इनका रहा 30 साल तक। और आइए थोड़ा सा आप झांकते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन पर। कहा जाता है कि 1965 में कश्मीर में जब जब फूल खिले की शूटिंग हो रही थी, उस शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश ने बताया कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखा और उनकी माँ तक पहुँचाने के लिए कहा, लेकिन अंत में हुआ कुछ नहीं। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के लेकर घर आए, लेकिन सभी को नंदा जी ने ठुकरा दिया। और 1992 में अधेड़ उम्र में नंदा जी ने वहीदा रहमान के आग्रह पर निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही गिरगांव में अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और ठीक एक साल बाद उनकी मां की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जिस रेलिंग पर वह झुके हुए थे वह गिर गई और नंदा जी अविवाहित ही रह गई। और नंदा मुंबई में रहती थी जब इनकी डेथ हुई और परिवार में अपने लास्ट ईयर्स में, क्योंकि 2014 में इनकी डेथ हुई है, तो बहुत कम लोगों से ही मिला करती थी और करीबी लोगों से ही मिलती थी। और फिल्म उद्योगों में उनके जो करीब फ्रेंड्स थे जो उनके साथ रहे, वहीदा जी, नरगिस जी, आशा पारेख जी, हेलेन, सायरा, बानो जी, माला सिन्हा, साधना, शकीला, ये सब इनके जो है फ्रेंड सर्कल में थे, क्योंकि प्रोबेबली ये सब एक ही टाइम के सब एक्ट्रेसेस, तो इनकी फ्रेंडशिप सबकी बहुत अच्छी थी, तो इनके साथ ये काफ़ी टाइम तक ये कनेक्टेड रहीं। और लंबे अंतराल के बाद 2010 में इन्होंने एक मराठी फिल्म नटरंग की स्क्रीनिंग के लिए रहमान के साथ सार्वजनिक रूप में इन्होंने अपना मतलब प्रस्तुति लोगों को मतलब ये दिखाई दी, लेकिन काम फिर इन्होंने बहुत कम ही कर दिया। और नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन काम जो है इनका वो आज भी जब हम गुमनाम जैसी फिल्म देखते हैं या फिर जब जब फूल खिले देखते हैं तो कितनी नज़ाकत है उनमें, कितनी नज़ाकत उनके काम में है वो तो देख के ही पता चलेगा। तो यहाँ ले रही हूँ मैं छोटा सा एक म्यूज़िकल ब्रेक। सफ़र हमारा जो है अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव एंड आई विल बी राइट बैक।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये सफर समर्पित रहा मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। 230 साल का करियर और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने दी हमको। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया बहुत सारी, फिर ऑलमोस्ट उस टाइम के हर हीरो के साथ इन्होंने काम किया। जिस हीरो का काम अच्छा नहीं चल रहा था इनके साथ काम करके उनका भी करियर निखर गया। तो नंदा जी ने खुद भी काम किया और सबको एनकरेज करा। सबसे अच्छी बात यह है बहुत ही ये हेल्पिंग नेचर की थी। और कहा जाता है कि 25 मार्च 2014 को जब दिल का दौरा पड़ा इनको तो इनकी उम्र थी 75 वर्ष की। मुंबई में वर्सोवा में इनका फ्लैट था जहाँ पर इनका निधन हो गया। और इनके परिवार में इनके भतीजे स्वास्थ्य कर्नाटकी और इनके ग्रेट ग्रैंडसन जो इनके थे, मतलब इनके

ही इनके ब्रदर के थे, तो उन सब ने मिलकर जो है इनको अंतिम टाइम पे वो उनके साथ रहे, और ये लोग मुंबई में आज भी निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने काम की वजह से, जो गाने उन पर फिल्माए गए उनकी वजह से आज भी वो हम सब के दिल में बसती हैं। रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से मैं नंदा जी को हाँ बार बार सलाम करती हूँ, उनको भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, और जो वो काम हम सब के लिए कर गई हैं तो उन कामों को हम बार बार देखें भी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज़ को दिखाएं कि पुराने लोग भी बहुत अच्छा काम कर गए हैं। तो दोस्तों जाने का टाइम हो गया है, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में कुछ नई बातें और कुछ नए आर्टिस्ट की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा, एंड आई एम साइनिंग आउट, बट यू रिमेन ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज का हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। ये शो रेडियो मानव रचना का एक स्पेशल वर्टिकल, आप इसको बोल सकते हैं। हमारा मोटिव होता है कि हर बार यहाँ पर अपने एपिसोड में एक हम टॉपिक लेकर के आते हैं, उसको डिस्कस इस तरीके से किया जाता है कि आपको पता लगे एग्जैक्टली कि हमारे भारत में कानून और संविधान आपको क्या क्या अधिकार जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वुमेन्स राइट्स इन इंडिया, और उसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर शहरयार। डॉक्टर शहरयार प्रोफेसर हैं एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना यूनिवर्सिटी। बहुत सारी बातें हम सर के साथ करने वाले हैं, बट एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर शहरयार। हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
4: थैंक यू सो मच, इट इज गुड टू बी ऑन द शो।
3: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। मैं सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा अपने शो को। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द वुमेन्स राइट्स इन इंडिया, व्हाट एग्जैक्टली डज द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी अ वुमन?
4: We have a separate provisions for various provisions in the Constitution of India, which gives special rights to the women. Though we have the right of equality, Article 14 specifically says that we have the freedom of equality. But within that, a reasonable classification can be done for the women and as well as the children. So that is allowed even in Article 14 also, and it is even allowed in Article 15, 16. And there are various other provisions jahan par women ke rights ko enforce karne ke liye mechanism, legal mechanism exists karta hai. So Constitution is very clear about giving special status to women, not just treating them equally because they have been deprived of their rights for a long period of a time. So when Constitution came into picture, it created right of equality with special privileges to the women also.
3: All right, so amazing. भारत में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं तो फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से कानून हैं, और मैं मेजर लीगल प्रोटेक्शंस की बात यहां पर करना चाहूंगा।
4: देखिए, हम अगर सबसे पहले कोई भी समाज होता है वो घर से शुरू होता है।
3: बिल्कुल।
4: अगर हम घर की बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो कानून है वो वुमेन की सेफ्टी के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, 2005 में बनाया गया था। एंड व्हेन आई से वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सिर्फ वाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, वाइफ्स अगेंस्ट द हस्बैंड और वाइफ्स अगेंस्ट द मदर इन लॉ और एनीबडी एल्स। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज़ लार्जर इम्प्लीकेशन, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द वाइफ्स, इट्स अबाउट एनी वुमेन हु इज़ लिविंग इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। It includes sisters also, it includes daughters also, it includes mothers also. हाँ, वो एक अलग बात है कि इतना exercise नहीं कर पाते हैं, but अगर father अपनी बेटी के साथ में अगर violence कर रहा है, जो कि definition है domestic violence act में, या भाई अपनी बहन के साथ में violence कर रहा है, चाहे वो property को लेकर के हो, चाहे वो किसी और तरीके की बात हो, तो the woman can go to the court of law under domestic violence act. ये घर के अंदर की चीज़ है। घर के बाहर में अगर आप देखें तो जितने भी सारे जो laws हैं, चाहे वो criminal law हो, चाहे वो और जो provisions हैं वो भी लगते हैं। प्लस वी डू हैव स्पेसिफिक प्रोविजन विच आर जस्ट फॉर द वुमेन, फॉर एग्जाम्पल क्रुएल्टी, जो आपका BNS में भी है, पहले IPC में हुआ करता था। क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस विच इज अगेंस्ट मैन ओनली, दिस इज अ राइट विच इज जस्ट फॉर द वुमेन। वी ऑल्सो हैव डाउरी प्रोहिबिशन लॉज टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी एज वेल एज इन द फैमिली। तो वी हैव टू मैनी लॉज एज फार एज प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन इज कंसर्न, क्रिमिनल लॉ खासतौर पर। सिविल लॉज अगेंस्ट, देर आर वेरियस प्रोविजन्स इन हिंदू मैरिज एक्ट ऑल्सो, हिंदू सक्सेशन लॉ ऑल्सो, देर आर मैनी लॉज जहाँ पे वुमेन को सिविल सोसाइटी में रिकोगनाइज करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बने हुए हैं। सो वी हैव एम्पल लॉज एज फार एज लॉज आर कंसर्न, द लॉज आर देयर।
3: ओके, आपने ये वर्ड यूज़ करा डोमेस्टिक वायलेंस, इसको बहुत बार समझा जाता है सिर्फ फिजिकली मारपीट करना, सिर्फ उसी को डोमेस्टिक वायलेंस समझा जाता है, लेकिन कानून की क्या डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस?
4: डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक अगेन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब भी हम वायलेंस सुनते हैं तो हमारे जहन में हमेशा फिजिकल वायलेंस ही आ रहा होता है, लेकिन वो वायलेंस जो कि बिसाइड्स फिजिकल वायलेंस है, दैट हैज़ ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने 5 तरीके के वायलेंस को वायलेंस बोला है, जिसमें एक है फिजिकल वायलेंस, उसके अलावा मेंटल टॉर्चर भी होता है, इकोनॉमिक वायलेंस है, वर्बल वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस है, ये पांच तरीके के वायलेंस हैं जो कि कवर्ड हैं। तो अगर कोई इंसान किसी को इकोनॉमिकली भी डिप्राइव कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वायलेंस। अगर वो किसी को टॉर्चर कर रहा है फिजिकली या मेंटली, वो भी वायलेंस है। वर्बल अब्यूज कर रहा है, वो भी वायलेंस है। तो देर आर टू मैनी कैटेगरीज ऑफ द वायलेंस विच कवर्स एक्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ एज फार एज वुमेन आर कंसर्न। तो वो तकरीबन इफ द वुमेन इज फीलिंग अनसेफ और इनसिक्योर्ड because of any reason whatsoever, of course it should be a potent reason, then the laws are there to protect that.
3: All right, one more important question is ki there is a misconception ki violence ki jab hum baat kar rahe hain yahan par, so अमूमन ये होता है कि आपके ससुराल में एक महिला के वहाँ पर समझा जाता है, बट ये तो आपके मैटरनल हाउस में भी हो सकता है ना।
4: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो आपके अपने घर से शुरू हो सकता है। अगर आप अपनी मदर के साथ में वायलेंस कर रहे हैं तो, आप अपनी बहन के साथ में वायलेंस कर रहे हैं तो, एंड अपनी बेटी के साथ वायलेंस कर रहे हैं तो, तीनों ही सिचुएशंस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ वाइफ्स के लिए आया है, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर यूज़ वाइफ्स कर रही होती हैं, बट जस्ट बिकॉज द थिंग इज़ नॉट यूज्ड इट डज़ नॉट मीन इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। लॉ एग्जिस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टर्स, मदर्स एज वेल एज द डॉटर्स ऑल्सो।
3: ओके, अगर एक लड़की को एक उसके मैट्रिमोनियल हाउस से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, क्या लीगल प्रोटेक्शन है उसके लिए कुछ?
4: यस, बिल्कुल। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट खुद अपने आप में ही कहता है कि अगर लड़की, अगर शादीशुदा लड़की है, अगर वो अपने घर में रह रही होती है तो वो कोर्ट में जा करके रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ला सकती है, वो आपके रेसिडेंस ऑर्डर्स भी ला सकती है, जिसमें इनफैक्ट अगर यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर जो राइट लॉ में दिया गया वो ये है कि अगर लड़की चाहे तो वो अपने ससुराल वालों के घर में रह सकती है, और ये रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट से कि ससुराल वाले उस घर को छोड़ के चले जाएं। तो ये तक भी लॉ है, एग्जिस्ट करता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजंस है, रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरे पति को बोलिए कि वो यहाँ से निकल जाए, मैं इस घर में रहूँगी जो मेरा मैट्रिमोनियल होम है। वही बात है कि हम उसको एक्साइज नहीं करते हैं, पता नहीं होता लॉ का जो हमारा अवेयरनेस है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, एंड दैट्स वाई व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ लॉट ऑफ मिस ट्रीटमेंट टू द वुमेन ऑल्सो। तो मैं तो इस लॉ के इस मंच के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपने मैटरनल होम में, ये पैटर्नल होम में ही आपको जगह मिलेगी, आपको अपने मैट्रिमोनियल होम में भी जगह मिल सकती है। आप ये भी कह सकती हैं कि मेरे मैट्रिमोनियल होम में फॉर एग्जांपल किसी का दो तीन फ्लोर्स के फ्लैट्स हैं, आप ये तक कह सकती हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहूँगा, सेकेंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर कोई और रहेगा, मेरे फ्लोर पर कोई ना आए। या फिर आप ये भी कह सकती हैं पोर्शन ऑफ द हाउस बिलोंग्स टू मी, नो बडी शुड बी कमिंग इन माई पोर्शन, और टू अ लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट यू कैन ask that everybody should be removed from that particular place, I should be allowed to live in this. तो ये rights हैं, provided वो depend करता है कि किस level पे cruelty हुई, जज को आपको present करना पड़ेगा अपना case, and if the court find fits कि हाँ the husband should be asked to leave, the vacate the premises, then of course the order can be passed.
3: All right, so amazing. उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर जितनी हमने बात करी डॉक्टर शहरयार से अभी तक, बेसिक ओवरव्यू हमने यहाँ पर टच अप करने की कोशिश करी है, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आई चार चीज़ें। अच्छा लगना सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये मैं ये बोलूंगा कि महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है तो ये बात महिलाओं को पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस शो। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद विल कंटिन्यू द शो। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं हूं आरजे सागर, शो सत्यमेव।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है सत्य में विजय थे और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन्स राइट्स की, भारत में क्या राइट्स हैं महिलाओं के, और उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट यहां पर हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार। और अभी तक हमने एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करी है, बेसिक चीज़ें क्या हैं इसमें। सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि मानकर चलिए एक महिला है जिसकी शादी हो गई है, अब उनके साथ अब्यूजिव बिहेवियर जो है उनके इन-लॉज का या हस्बैंड का हो रहा है, लेकिन वो कुछ अर्न नहीं करती हैं, उनकी कोई आमदनी नहीं है और उन लोगों ने खर्चा देना बंद कर दिया है, इस केस में क्या होगा, कानून कैसे नेविगेट करेगा?
1: वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं, अगेन वी हैव द लॉज ऑफ मेंटेनेंस, वी हैव द लॉज जिसमें कहा गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी ये चीज़ है, अदरवाइज सेपरेट जो लॉज हैं हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी है, एंड पहले CRPC जो अब BNSS है उसमें भी प्रोविजंस हैं जिसमें वाइफ के मेंटेनेंस के राइट्स बहुत कैटेगोरिकली लिखे हुए हैं। एंड क्षमता ऑफ कोर्स मैटर्स ऑफ द हस्बैंड टू पे बैक, इफ द हस्बैंड इज अर्निंग तो इट बिकम्स द राइट ऑफ द वाइफ दैट ही शुड बी पार्टिंग अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सैलरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। तो वो देना बंद कर दे रहे हैं, ये उनकी मर्जी है, वो पैसे कहते हैं हम नहीं देंगे तो मेंटेन करेंगे, ये उनका उत्पीड़न करने का तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर लड़की सक्षम है, उसको अपने लॉस के बारे में पता है, अपने राइट्स के बारे में पता है और उस राइट्स का वो इस्तेमाल भी करना चाहती है, अपने अधिकार को इन्फोर्स भी करना चाहती है, शी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर BNSS ऑल्सो, थ्रू BNSS ऑल्सो वो उसमें जा करके वो कह सकती हैं कि माई हस्बैंड इज अर्निंग एंड इज नॉट गिविंग मी मेंटेनेंस, कोड ऑन बींग सेटिस्फाइड दैट यस यू कैन नॉट मेंटेन योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग एंड द हस्बैंड कैन मेंटेन यू बिकॉज ही इज वर्किंग। सो जो भी मेंटेनेंस का जो प्रोविजन होता है डिपेंडिंग अपॉन, वो कैलकुलेशन कोर्ट खुद करता है, कोई सेट रूल नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में कहीं कहीं पर अलग अलग होता है, लेकिन अभी कोई सेटल प्रिंसिपल नहीं है कि हाँ इतना पैसा मिलेगा 100%। लेकिन पैसा मिलेगा, मेंटेनेंस होता है वो मंथली भी हो सकता है, वो कभी CRPC BNSS में मंथली दिया जाता है, अदरवाइज अगर कभी क्या कहते हैं डिवोर्स की बात पहुंचती है तो आपको लमसम अमाउंट भी मिल सकता है एलिमनी। बट हम डिवोर्स की बात ना करके रिश्ते में रहते रहते भी अगर वो उसको मेंटेन नहीं कर रहा है तो भी वाइफ कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस। नॉर्मली वुमेन डू नॉट आस्क फॉर द मेंटेनेंस, दे ऑलवेज वेट फॉर द लास्ट डे टू कम व्हेन दे थिंक ऑफ आस्किंग फॉर डिवोर्स, तब वो फिर कहती हैं कि हमें मेंटेनेंस चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक बीवी रहते हुए अगर वो मेंटेनेंस मांगना चाह रही है अपने पति से जो उसको मना किया जा रहा है और कोर्ट के पास जाती है, द कोर्ट ऑफ कोर्स विल पास द ऑर्डर। और अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो वी हैव अ सेपरेट प्रोविजन जो कहते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटेलाइट, यानी कि जब तक लिटिगेशन चल रहा है तब तक भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वाइल शी इज अ वाइफ, वाइल द केस इज पेंडिंग एंड आफ्टर द केस इज डिसाइडेड, इन ऑल द थ्री सिचुएशंस इफ द हस्बैंड इज कॉम्पिटेंट टू मेंटेन एंड इज चूजिंग नॉट टू मेंटेन, द वाइफ कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड गेट द ऑर्डर पास्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हरसेल्फ।
0: ओके, मेरे पास एक रियल लाइफ केस है जो अभी हाल फिलहाल जिसको मैंने देखा था। आई नो समवन, देयर इज अ फीमेल, हर एज इज 50, उनके हस्बैंड है वो एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, पेंशन मिलती है पति को, वाइफ एक होम मेकर रही है जी। उनके बच्चे हैं 3-4, वो बाहर रहते हैं अर्न करते हैं, लेकिन अब हस्बैंड ने पेंशन में से हिस्सा देना बंद कर दिया अपनी वाइफ को फॉर नो रीजन, इस केस में क्या हो सकता है?
1: देखिए लॉ वही सिंपल है, लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट वुमेन ऑफ 25 और 50, लॉ इज सेम फॉर एवरीबॉडी। लॉ में जब हम लॉ बना रहे होते हैं तो हम ये नहीं कह रहे होते हैं कि 18 से 25 साल की लड़की के इतने राइट्स हैं, 25 से 40 कितने हैं, 40 के बाद बूढ़ी औरत है उसके कम राइट्स होंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एल्डरली वुमेन के साथ में और स्पेसिफिक प्रिविलेजेस और ऐड हो जाती हैं, लेकिन आप क्योंकि स्पेशल केस की बात कर रहे हैं तो यही वाली बात है कि मेरा सजेशन ये है कि लॉ है, अब क्या वो उस लॉ को इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा करके कोर्ट में एक कंप्लेंट डालना, एक पिटीशन डालना, क्या वो करना चाह रही हैं? अगर करना चाह रही हैं तो लॉ इज़ गोइंग टू सपोर्ट हर इन दैट केस ऑल्सो। प्रॉब्लम आई एम श्योर यही आ जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इंसान उस चीज़ को इन्फोर्स नहीं कराना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम अपने पति के अगेंस्ट पे जा रहे हैं सब कुछ है तो कहीं ऐसा ना हो कि समाज में हम लुक डाउन अपॉन हो जाएं, तो इसलिए कभी कभी बर्दाश्त भी किया जा रहा होता है। बट अगर गलत है तो उसको बर्दाश्त करना भी उतना ही गलत है। तो ये ड्यूटी है हस्बैंड की अपने वाइफ को मेंटेन करना, रिगार्डलेस ऑफ आप कॉम्पिटेंट, वैसे तो मैं तो मेरा पर्सनल मानना है कि आपकी कॉम्पिटेंस मैटर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर द हस्बैंड, यू शुड ऑलवेज बी मेंटेनिंग योर वाइफ। अगर आप कॉम्पिटेंट होकर के भी मेंटेन नहीं करो, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग विच यू कैन डू, दैट इज लाइक अ डिसग्रेस टू द रिलेशनशिप पर से ऑल्सो, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट थिंग। एंड इफ द वाइफ chooses to go to the court of law, the law is there to protect her, to make it very sure ki this in cases mein jab salary kaisi ek particular jagah se aa rahi hoti, if you are not a businessman to usme kya hota hai ki aap daily basis pe aapke paas paisa aata hai and all, but when you are just example which you have given where the salary is coming from a particular employer pension or you are working at some place and somebody is getting, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन ये तक है कि वो कोर्ट उसके एम्प्लॉयर को डायरेक्टली ऑर्डर पास कर देगा, वो कहेगा कि आप इसकी पेंशन में से या आप इनकी सैलरी में से इतना हिस्सा डायरेक्टली इसके अकाउंट में डालिए, आप वाइफ को हस्बैंड से मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर वो ये करना चाहें तो पेंशन में से ही पैसा कट के पहले उनके पास पहुँच सकता है एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट।
0: ओके, दैट कैन बी डन। इसका सिंपलेस्ट पॉसिबल प्रोसेस क्या हो सकता है?
1: सिंपल एक आपको देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर से बात करनी है, अपनी जो DIR होती है डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको MFIR नहीं कहते हैं, उसको DIR कहते हैं, आप वो DIR फाइल कीजिए एंड उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर सारे काम अपने आप ही करता है, आपको सिर्फ कैरी अलॉन्ग करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो हर पॉसिबल सजेशन जो उस वुमेन को चाहिए टू मेक इट वेरी श्योर दैट शी इज़ एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो हर सजेशन वो हर गाइडेंस प्रोटेक्शन ऑफिसर को देना होता है। तो इट इज जस्ट अबाउट द विलिंगनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन वेदर और नॉट शी वांट टू प्रोसीड विद दिस और नॉट। इफ शी वांट्स टू प्रोसीड द सिस्टम इज देयर टू प्रोटेक्ट एज पर लॉ, शी इज देयर।
0: All right.
1: इस केसेस में कभी कभी ये हो जाता है कि हाँ कि अगर पेंशन वो कोर्ट में कहना स्टार्ट कर दे, हस्बैंड कहना स्टार्ट कर दे कि मेरे पास खुद इतनी जिम्मेदारियां हैं या उसके पास पेंशन कम आती है या कुछ ऐसा हो जाए या कुछ और जिम्मेदारियां दिखा दे कि हाँ भैया मेरे पास लोन है कुछ है, तो उस केस में क्वांटिटी मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ कंपनसेशन या मेंटेनेंस है वो वैरी कर सकता है, बट नहीं मिलेगा दैट इज़ वेरी रेयर टू हैपन। दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द हस्बैंड प्रूव्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ ही डज नॉट हैव द सफिशिएंट इनकम एट ऑल।
0: ये तो हालांकि हम एक रियल केस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हस्बैंड के पास अच्छे खासे 50-60 हज़ार रुपए आते हैं और वो अपनी वाइफ को तड़पाना चाहते हैं,
1: ये तो मतलब ये फिर तो है उनके पास ऑप्शन, मतलब शी कैन गो टू, अगर आप रियल केस आप जानते हैं तो आप सेशन दे भी सकते हैं, मतलब आई एम श्योर इट विल हेल्प।
0: हाँ, और ये मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर गाँवों की तरफ अगर हम जाएंगे तो अमूमन ये केसेस ऐसे बहुत सारे दिखाई देते हैं जहाँ पर महिलाओं को सप्रेशन की इतनी आदत डाल दी गई है अनफॉर्चुनेटली कि वो बोलना भी नहीं चाहती हैं। बट यू शुड ऑलवेज रेज योर वॉइस, क्योंकि आपका अधिकार है। भारत का कानून की खूबसूरती ये है कि आपको ये सारे अधिकार मिलते हैं। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: आपके पास कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है मेरे लिए हो सकता है, डॉक्टर शहरयार के लिए हो सकता है, तो 8010781078 बहुत ही आसान सा हमारा नंबर है, इस पर अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा दीजिए लिखकर। फिलहाल अपने शो को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते। महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, भारतीय कानून क्या बोलता है, और ये कोई सब्जेक्टिव टर्म नहीं हो सकती है क्योंकि ये सबके लिए बराबर है। हालांकि उसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं वो वेरी कर सकते हैं बिल्कुल, बट कानून क्योंकि सबको, हर महिला को, जैसा डॉक्टर शहरयार ने कहा कि वो 22 नहीं हो सकता है कि 18 से 25 साल के लिए है, सबके लिए कानून बराबर है। अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि भारतीय कानून में सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा क्या है।
1: देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हमारा लॉ है, BNS है, उस पर भी दे रखा है, जिस किसी भी तरीके से अगर आपके एक्शंस के थ्रू अगर लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, चाहे वो आपके जेस्चर के थ्रू हो, चाहे वो आपके वर्ड्स के थ्रू हो, चाहे वो एक्ट्स के थ्रू हो, वो आपका विद इन द स्टार्टिंग डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट आ जाता है। और वो धीरे धीरे वही चीज़ आपका बढ़ के वो आपके रेप की डेफिनेशन, अटेम्प्ट टू रेप की डेफिनेशन तक पहुँच जाती है। इट स्टार्ट्स विद द जेस्चर्स, इट कैन बी एनीथिंग, लुक्स ऑल्सो, इट कैन बी मैसेजेस ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन तो बहुत वाइड है, एंड इट कवर्स एनी एक्ट विद विच अ वुमेन विल फाइंड हरसेल्फ इन एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन, इवन टू एन एक्सटेंट दैट इफ यू स्टे अ वुमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ मिनट और फ्यू सेकेंड्स, दैट ऑल्सो इज कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इट्स नॉट एक्जैक्टली मैंशन, बट येस द एक्सप्रेशंस द जुडिशरी हैव बीन सेइंग दैट इफ यू आर ऊगलिंग अपॉन अ वुमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू लुकिंग स्टेयरिंग फॉर वुमेन, दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो एज सिंपल एज मिनिएचर एक्ट एज लुकिंग टू, ऑफ कोर्स द हाइएस्ट ऑफ, एंड यू गो टू एन एक्सटेंट दैट यू ब्रेक ऑल द bonds of morality and you commit rape on a girl. So all these things are covered within the definition of, within the social concept of sexual harassment. So of course, baki jo specific laws hain, molestation ke, ya voyeurism ke, ya stalking ke, wo sab ke alag alag provisions bhi hain. But it covers everything.
0: All right. What's your take on child marriage?
1: Child marriage is a very very pressing concern which needs to be taken care of. Child marriage पहले से भी हो रही थी, अब तो बहुत हद तक हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज को कर्व कर दिया है। वी हैव बीन मेकिंग लॉ सिंस 1978 में भी हमने लॉ बनाया था, 2006 में भी हमने फाइनली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बनाया था, जिसमें हमने सज़ा को काफ़ी बढ़ाया था। उससे पहले सज़ा बहुत कम थी, सज़ा सिर्फ 15 दिन की जेल या 1000 रुपये जुर्माना ऐसा हुआ करता था। लेकिन देन वी थॉट दैट कि लेट्स हैव सम स्ट्रिक्टर प्रोविजन्स फॉर चाइल्ड मैरिज, टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। तो वी ड्राफ्टेड प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसमें हमने एज वही रखी है, 18 और 21 साल रखी है, लेकिन हमने ये कह दिया कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज कर रहेगा तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है, जो भी चाइल्ड मैरिज करता है उसको दो साल रिग्रेस इंप्रिजनमेंट और 1,00,000 रुपीज़ फाइन है, जो करवाता है उसकी पनिशमेंट है। अगर कोई मेजर शादी करता है किसी माइनर के साथ में तो उसकी अलग पनिशमेंट हो जाती है। तो प्रोविजन्स आर देयर फॉर चाइल्ड मैरिज। हाउएवर वन थिंग विच bothers me as an academician or as a law student is that हम child marriage पर हम कोई strict take नहीं ले पा रहे हैं। हम child marriage को maximum voidable कहते हैं, void in very few instances कहा जाता है, जब ज़बरदस्ती करवाई जा रही होती है, या उसको आप entice करके लेके जाते हैं, या उसको trafficking के चक्कर में आप उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं, उन cases में forcefully marriages में कुछ अब 2006 में बोला गया था कि void होती है। But अगर otherwise देखा जाता है तो child marriage is voidable, जो प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो उसको वॉइडेबल कहता है। वॉइडेबल के साथ में एक थोड़ा सा मसला है, वो है कि मैरिज वॉइड नहीं, मतलब प्राइमा फेसी वॉइड नहीं होती है, मैरिज वैलिड मानी जाती है। हाँ, अगर जो माइनर है वो चाहे तो वो शादी को ख़त्म करवा सकता है, बट अगेन उसके साथ में एक मसला ये आता है कि माइनर अपने आप डायरेक्टली कोर्ट जा नहीं सकता है, माइनर कोर्ट में डायरेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है। तो अगर ड्यूरिंग द माइनॉरिटी इफ़ दिस child wants to go to the court of law to get the marriage void, declared as void, then she will require a guardian. Now the guardians are the ones jinhone shaadi karayi hai. So technically going against the head of the family, for example, अगर father ने शादी कराई है तो अब चाचा अगर लेके जाएंगे तो फिर technically speaking चाचा अपने भाई के, बड़े भाई के अगेंस्ट में जा रहे हैं, which is very rare to happen. अगर हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन देन अगेन गार्डियन ही अगर शादी करा रहे हैं और गार्डियन को ही बोला गया नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन जा सकता है कोर्ट में, तो थोड़ा सा वो फ्लॉ आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चलो ठीक है माइनॉरिटी में नहीं गई, लेकिन अब बच्ची थी उसकी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी, अब वो 18 साल की हो गई है, अब वो चाहती है शादी ख़त्म करवाए, लॉ कहता है उसके पास में मैक्सिमम 2 साल का टाइम है, 2 साल में कोर्ट में जाए वो कह दे कि उसकी शादी माइनॉरिटी में करवाई गई थी, वो शादी को ख़त्म करवाई जा सकती है। बट 2 साल इन अ सेटअप, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत हद तक पॉपुलेशन हमारी गांवों में रह रही होती है, मैं गांवों में तो छोड़ो, मैं आपको शहर का बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये पता भी नहीं होगा। प्रोविजंस क्या हैं वो तो बहुत बात की बात होती है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी कमी है एज एकेडमिशियंस ऑल्सो लॉ स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि हम इसको उतनी तरीके से हम आगे तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, हर जगह पे हर घर तक वो बात पहुंचनी चाहिए। आई होप कि इस माध्यम से पहुंच जाए हर उस कान तक जिसको ये सुनना चाहिए इस बात को, कि लॉ ये कहता है कि आपके पास 2 साल तक का टाइम है, आप 2 साल के अंदर अंदर आके करवा लें। अब अगर 18 साल की लड़की की शादी मैक्सिमम मेजॉरिटी क्योंकि 18 साल में आ जाती है, तो उसके पास सिर्फ 2 साल और रह गए, यानी कि 20 साल तक कोर्ट में आ जाए। नाउ इन अ सेटअप विच वी हैव, सोशल सेटअप वी हैव इन इंडिया, 19-20 साल की लड़की जिसकी शादी हो रखी है वो अपने पति के अगेंस्ट में आ रही है, अपने घर वालों के अगेंस्ट में कोर्ट में आ रही है कहने के लिए कि मेरी शादी खारिज करवाओ। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक लीगल सिस्टम जो उसके पूरे सपोर्ट के ऊपर आ जाए उसके बाद भी क्या, बिकॉज शादी खारिज करवाने के बाद का जो सपोर्ट चाहिए होगा वो बहुत मैटर कर रहा होता है। वो उसके घर वालों से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, सोसाइटी उसको लुक डाउन अपॉन ना करे यार ये तो शादीशुदा है, क्योंकि शादी लॉ तो नहीं मान रहा है, समाज तो मान रहा है। अब जब समाज शादी मान रहा है तो उसकी जो अपनी खुद की जो एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कहीं वो हावी ना होने लग जाएं, उसकी अपनी खुद की आगे के शादी के प्रॉस्पेक्ट्स वो ख़राब ना हो जाएं, ये सोसाइटी में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये चेंज नहीं आ पाएगा तब तक अगर कोई हिम्मत उठा भी पाता है तो वो ऐसा एग्जाम्पल सेटअप नहीं कर पाता है कि दूसरे लोग उससे प्रभावित हो पाएँ। तो वो प्रभाव जो कहते हैं ना, वो हो पाना, इंस्पायर कर पाना, वो बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग या तो बर्दाश्त कर रहे होते हैं या फिर अगर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद का जो उनका जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतामय हो जाता है, तो इसके चलते हुए वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता है। वी शुड हैव सर्टेन प्रोविजंस जहाँ पर हम उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में, अदरवाइज बाकी सब चीज़ों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, एवरीथिंग, क्योंकि अगर कट ऑफ, सोशल कट ऑफ हो जाता है तो फिर उस केस में हमें सपोर्ट मैकेनिज्म देना बहुत ज़रूरी होता है। वो थोड़ा सा हम वर्क अपॉन कर रहे हैं, बट यस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज अब चाइल्ड मैरिज थोड़ी लुक डाउन अपॉन की जाने लग गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज को कोई ऐसा खास बुरा नहीं माना जाता है। हमें चाहिए कि लॉ वहाँ तक भी पहुँचे और मेक श्योर करे कि चाइल्ड मैरिज अगर हो रही है तो वो होने से पहले ही रोक दी जाए।
0: ऑलराइट, इस टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको अपने कानून के बारे में, राइट्स के बारे में पता है, मैंने कहीं पर देखा है इनजस्टिस हो रहा है, एक बच्चे की शादी की जा रही है, एक माइनर की शादी की जा रही है, क्या मी बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कोई स्टेप उठा सकता हूँ?
1: यस,
0: उस पूरे सेटअप में कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं है, बस मुझे पता है कि वहाँ पर गलत हो रहा है।
1: जी, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपका ड्यू एक्शन जो पुलिस है उनको लेना पड़ता है कि हाँ चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आपको बताना पड़ता है एंड ऑल दैट थिंग। ऑफकोर्स अगर ऐसा कुछ कोई कर सकता है तो द डोर्स आर ओपन फॉर दैट थिंग, बिकॉज हर शादी जो हो रही है उसके बारे में खबर सबको नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके बता रहे होते हैं कि हाँ हम अपनी बेटी की शादी करवाने वाले हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट शुड बी नोइंग कि हाँ इस फला गांव में, इस फला कस्बे के अंदर में, इस फला घर में शादी हो रही है और वो माइनर है या नहीं है, ये पता कर पाना इस थोड़ा सा टीडियस टास्क। बट यस, हाँ अगर कोई एक राइट स्प्राइटेड सिटीजन है जिसको लगता है ये चीज़ गलत है तो उसको अगर वो रोक सकता है अपने लेवल पे भी, तो जिस लेवल पे भी रोक सकता है, मैं तब और इसमें बहुत एक अच्छा एक ऐड था सरकार की तरफ से चलाया गया था जिसमें बच्ची की शादी करवाने के लिए लोग गए थे, तब दैट वाज एन ऐड, ऑफ कोर्स नॉट अ ट्रू स्टोरी, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के भी स्टेप्स होते हैं इस डायरेक्शन में भी। वो ये था कि बच्चे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए दर्जी के पास गए थे कपड़े सिलवाने के लिए, तो दर्जी ने कहा था आपकी बेटी की तो छोटी बच्ची था उसकी शादी ऐसे जोड़ा क्यों बनवाने का, हम उसकी शादी कर रहे हैं, तो उसने कहा ये कपड़ा तो मैं नहीं सिल सकता हूँ। तो वो दर्जी है, उसने अपनी तरफ का जो काम करना था उसने वो कर दिया कि भाई ठीक है ये चीज़ का मैं भागीदार नहीं बन सकता हूँ। उसी तरीके से हर इंसान का अपने अपने लेवल पे एक भागीदार, एक योगदान हो सकता है, लॉयर का अपना योगदान हो सकता है, NGOs का अपना योगदान हो सकता है, समाज का अपना योगदान हो सकता है, जो जैसे आपने कहा कि आप एक राइट कॉन्शियस इंसान है आपका अपना योगदान हो सकता है, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, वो रोकी जा सकती है। बट यही है कि वो चेतना जगना बहुत ज़रूरी है।
0: All right, so amazing. Sir, I'm done with my questions. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ तो please feel free.
1: अरे नहीं, this is a very important session because मेरा personal अपना मानना ये है कि as a law student also, faculty तो हम लोग हैं by profession, लेकिन हम सब लोग law पढ़ रहे हैं at the end of the day. As a law student, as a law professor, मेरा मानना ये है कि law का होना सिर्फ पूरा नहीं काम करता है. लॉ बहुत हैं हमारे पास में, हज़ारों के हिसाब से लॉ हैं. लॉ का जानना और लॉ के जानने के बाद की जो सपोर्ट चाहिए होती है वो काम बहुत ज़रूरी है. जब दोहरा तरीके से जब सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ मुझे पता है कि क्या लॉ है, ये मुझे हिम्मत नहीं दे सकता है कि मैं लॉ का इस्तेमाल भी करूं. मुझे वो हिम्मत भी चाहिए कि हाँ, अगर मैं लॉ इस्तेमाल करूंगा, इफ़ समथिंग बैड हैपेंस, देर इज़ अ एंटायर मशीनरी विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी. और वो काम स्टेट का होता है. जैसे कि अगर हम घर पे हम कहते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, हमें कुछ पता है कि हाँ हमने ये काम किया है, और अगर हम कहते हैं कि हम इसको गो अहेड करेंगे, तो हमें पता है कि हमारे घर पे हमारे माँ बाप हैं जो हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. कुछ भी हो जाएगा वो तो सपोर्ट करेंगे. तो ये जो फॉल बैक सेफ्टी नेट जो होता है, ये हमको बहुत हिम्मत देता है कि हम आगे काम कर सकें. हम एक मेहनत कर, चलो ठीक है, हम दो साल बैठ के पढ़ाई करेंगे. क्यों? क्योंकि पापा हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास फॉल बैक है. लेकिन अगर हमारे पास फॉल बैक नहीं होता है, हमारे पास एक मशीनरी सपोर्ट करने के लिए, ये काम स्टेट का बहुत मैटर करता है कि वो चीज़ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे सोसाइटी में जहाँ पर लगे कि हाँ, अगर आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे. नॉट जस्ट टू मेक इट वेरी श्योर कि आपका राइट इन्फोर्स हो, बट उसके बाद की ज़िंदगी के लिए भी. वी आर नॉट जस्ट कि जैसे रॉबिनहुड है कि हम अमीर से पैसे लेके गरीब को दे देंगे, सिर्फ ये नहीं है, हम आपके लिए वो तरीका भी तैयार करेंगे जहाँ से आप अपने आप खुद भी अपने आप पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. वो सपोर्ट मैकेनिज्म भी देना बहुत ज़रूरी है.
0: बहुत उम्दा. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमेशा मैं आपके विचारों को सराहता हूँ कि जब आप आते हैं तो कुछ मुझे नया जानने को मिलता है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा. सो इट्स ऑलवेज अमेजिंग, इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू होस्ट यू हियर सर. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच. इट्स ऑनर टू बी हियर अगेन. लुकिंग फॉरवर्ड अगेन कि जल्दी मिलते हैं फिर से.
0: श्योर सर. और दोस्तों, अगर आपके पास कोई पॉइंट है, कोई आपको सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो सिंपल इतना करिएगा कि अपने आसपास जिसको आपको लग रहा है कि नीडी है, उसको ये बात जरूर बताइएगा कि आपके लिए कुछ कानून में प्रावधान है. सिर्फ इतनी लाइन भी अगर आप बोल देंगे तो भी शायद किसी की हेल्प बहुत हो सकती है आगे उनकी अपनी यात्रा है. अब इसके साथ चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.
2: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए.

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: इस रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। आप सभी को पता है कि ये मेरे दिल के कितना करीब है और महिला सशक्तिकरण का ये खास कार्यक्रम लंबे समय से मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इस कड़ी में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ, उनके जीवन के पन्नों को पलटते हैं, उनकी कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से आप जीवन के बहुत सारे मोटिवेशंस डिराइव करते हैं और यही कारण है कि विमेन एम्पावरमेंट फैलाने की ये छोटी सी मेरी मुहिम आगे बढ़ती है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट है और मेरे दिल में एजुकेशनिस्ट के लिए खास रिस्पेक्ट इसलिए होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके हाथों में आने वाली पीढ़ी है जिसको बदलना और जिसको मोल्ड करना इनके लिए बहुत ही आसान होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं निवेदिता राणा जी से जो कि फाउंडर प्रिंसिपल है KDB स्कूल गाजियाबाद। फाउंडर हैं ये इस खूबसूरत से स्कूल की, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये उज्जवल भविष्य बना रही हैं। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। हेलो मैम।
4: हेलो भावना।
3: मैम, कार्यक्रम का नाम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट और आप एक सशक्त महिला, लेकिन हर महिला के लिए महिला सशक्तिकरण की जो डेफिनेशन होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। शायद किसी के लिए सशक्तिकरण पैसा, तो किसी के लिए सशक्तिकरण शायद थोड़ी सी फ्रीडम, किसी के लिए सशक्तिकरण थोड़ी सी पावर, तो किसी के लिए सशक्तिकरण कंट्रोल। आप मुझे बताइए आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, किसे आप सशक्त महिला कहेंगी?
4: जी बिल्कुल, सवाल बड़ा अहम है और इसका जवाब मैं जो मैं समझती हूँ मैं उन्हीं शब्दों में देना चाहूँगी। मैं मानती हूँ महिला सशक्तिकरण एक ताकत है, एक टूल है जो महिलाओं को हर तरह से, आपने कहा, फ्रीडम देती है, इंडिपेंडेंस देती है, शक्तिशाली बनाती है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज को पा सके, उन अधिकारों के बारे में जानकारी पा सके और अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजंस निर्णय ले सकें। एक और बात है इसके साथ ही, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्त हों इसलिए ताकि वो पेट्रियार्कल आउटलुक को चैलेंज कर पाए, वो लोग आउटलुक जहाँ पे महिलाओं को छोटा या कमतर माना जाता है और उनमें इस तरह का आत्मविश्वास पैदा हो ताकि वो हर तरह से, चाहे जैसे आप भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के स्तर पर अपने आप को ताकतवर महसूस कर पाए।
3: वाकई सशक्तिकरण मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए ना एक ओवरऑल कवच के रूप में है। मतलब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, सशक्तिकरण आपको शायद वो सिक्योरिटी दिलाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के हर आयाम में जीने के लिए, खुश रहने के लिए सशक्तिकरण की बहुत ही जरूरत है। तो मैं तो चाहूंगी कि ये पूरा जो विश्व है इसमें जितनी भी महिलाएं हैं ये सशक्त बने, बट उसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइफ।
5: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुटकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
6: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पष्टीकरण तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट की खूबसूरत से कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं डायनेमिक निवेदिता राणा जी से, जो कि फाउंडर हैं KDB स्कूल गाजियाबाद। निवेदिता जी, हर सदी में, हर युग में, हर साल अगर हम देखें तो बदलते हुए चैलेंजेस है महिलाओं के लिए। मतलब कभी जीने का चैलेंज था, तो कभी कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी परेशानी थी। फिर धीरे धीरे हमारे कुछ चैलेंजेस निकले, एजुकेशन मिली, फ्रीडम मिला, अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर हम आज के जमाने की बात करें, क्या लगता है क्या चैलेंज है हमारे लिए?
1: चैलेंज तो बहुत बड़ा है। जब UN तक ये बात कहता है कि 130 साल लगेंगे जब दुनिया में महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके, ताकि वो हर उस पोजीशन पे पहुंच सके जहां पर आज पुरुष हैं। ये विडंबना है कि जिस देश में हम नारी को पूजते हैं, वहां पर केवल 27% महिलाओं ने आज तक संसद का द्वार देखा है। नौकरियों में एक तरह से भेदभाव, वायलेंस जो पहले भी था और अभी हम सोचते थे शायद समाज में लड़के लड़कियां पढ़ जाएं तो वायलेंस कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, देयर वाज अ स्पर्ट इन द नंबर ऑफ डेथ्स, डावरी डेथ्स, अचानक से उनमें बढ़ोतरी हुई है। मुझे मालूम नहीं इसका कारण क्या है। क्या हम अपने लड़कों को कुछ सिखा नहीं पाए, या हमने अपनी लड़कियों को कमजोर ही रखा? ये मुझे लगता है ये एक बहुत अहम चीज है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो हमारा लीगल फ्रेगमेंट है, उसके बारे में ज्ञान का अभाव। बच्चियों को मालूम ही नहीं उनके लीगल राइट्स क्या हैं। क्या वो अपने राइट्स को गार्ड करने की क्षमता रखती हैं? क्या वो अपने आप को बचाने, अपनी आवाज उठाने की क्षमता रखती हैं? मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं जो चैलेंज के रूप में आज की महिलाएं फेस कर रही हैं, और शायद हम समाज के हिस्सेदार होते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे।
0: भाई वाकई सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं हम अपने अधिकारों को आज तक नहीं जान पाए हैं, और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हमारे घरों में इन अधिकारों का डिस्कशन नहीं है। कहीं भी कोई माता पिता एक बेटी को ये बताते ही नहीं है कि आज आप बड़े हो रहे हो, 18 साल की उम्र के बाद आपकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने आप के लिए, और किस प्रकार के आपके अधिकार हैं। तो आपके साथ कोई किसी प्रकार की बदतमीजी ना करे, आपके साथ कहीं कोई अन्याय ना हो, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इस पर चर्चा ही नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी जीवन की जर्नी है ना, ये इतनी खूबसूरत रहने वाली है कि कोई अप्रिय घटना घटेगी ही नहीं। और ये सोचकर हम कभी भी न बेटियों को न बेटों को किसी भी डिजास्टर के लिए, किसी अनहोनी के लिए एम्पावर ही नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत ही खूबसूरती से इस चैलेंज को बताया है निवेदिता जी ने। बस जुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, वापस आएंगे करेंगे और भी ढेर सारी बात। टिल देन फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है हमारे समाज के लिए। इमेजिन करिए ना, हर घर में हर महिला अगर सशक्त है तो कितना बदलाव आ सकता है हमारे समाज में। चलिए अब बात करते हैं निवेदिता जी की। निवेदिता जी, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक स्कूल की आप फाउंडर हैं, सो महिलाओं को, बच्चियों को आप एजुकेशन के थ्रू एम्पावर कर रही हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। और इनफैक्ट जब आपने ये कहा ना कि ये विडंबना है कि आज भी हमारी बच्चियों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हर प्रिंसिपल या हर फाउंडर स्कूल की ये सोच ले कि शायद पूरे साल में सिर्फ 5 क्लास होंगी लेकिन इन अधिकारों के बारे में होंगी। किसी भी उम्र से क्यों ना शुरू किया जाए, बट ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि शायद किसी स्तर पर ही सही हम उन्हें कुछ सिखा पाए। तो मुझे बताइए कि आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी कैसी रही और आप दरअसल बच्चियों को किस तरीके से एम्पावर कर रही हैं।
1: देखिए, एक तरह से मैं मानती हूँ स्कूल में रहने का सबसे बड़ा हमारा ये, मैं कहती हूँ, एक खुशनसीबी है कि हम उस आयु में बच्चों की को शिक्षा से जोड़ते हैं जो उनकी एज बड़ी इम्प्रेशनेबल होती है। जैसे एक कच्ची मिट्टी में जैसा ढाल दो बच्चे वैसे ढल जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा ही वो जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और अन्याय के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस सिखा सकते हैं। शिक्षा आई थिंक एक माध्यम है जो कि इट हैज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म। हम अपने बच्चियों को लाइफ स्किल, लीडरशिप, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सब के बारे में जागरूक करते हैं। और मैं ये आपको कहना, एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक होता है पैसिव इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चों को इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ इंडियन वुमेन जो कि जिन्होंने समाज में कोई इम्पैक्ट डाला बाय ब्रेकिंग बैरियर्स, ये हम बच्चों को बताते हैं। डिबेट्स, नाटक, परिचर्चाएं, बहुत सारी चीजें जो स्कूलों में होती हैं और जिसके माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि क्यों जरूरी है तुम्हें अपने आप को एम्पावर करना। देखिए, बदलाव हर जगह जरूरी है, बदलाव बच्चों में आना जरूरी। तो जब वो असली महिलाओं को देखती हैं चैलेंज लेते हुए कहानियों के द्वारा, वार्ताओं के द्वारा, तो वो उनको ये समझ में आता है कि एक सहानुभूति डेवलप हो जाती है और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने व पूर्व निर्धारित रोल को रीसेट करना उनको उनके लिए संभव हो जाता है। देखिए, आज महिलाएं राजनेता भी बन रही हैं, आज महिलाएं स्पेस में भी ट्रैवल कर रही हैं, आज महिलाएं पायलट भी बन रही हैं। तो इन सारे लोगों की जीवन से प्रेरणा लेकर यदि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां सीख सकती हैं, तो आई थिंक यही माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को जागरूक करते हैं और जानकारी देते हैं कि देखिए ये सब आपका जीवन का हिस्सा है और आपको ये सीखना है और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपको अपने लिए बनानी है ताकि आप हर एक विरोध से, हर एक कटु सत्य से जूझने की ताकत जोड़ पाए।
0: सो ट्रू, बहुत ही खूबसूरती से निवेदिता जी आपने बताया कि चाहे कहानी के रूप में, चाहे डायरेक्ट सिखाने के रूप में, चाहे एक सीख के रूप में, बट जरूरी ये है कि हम उन्हें बताएं कि उनके अंदर ये क्षमता है, औरों में भी थी और उनमें भी है, और ये क्षमता से वो अपने जीवन को और बहुत लोगों के जीवन को। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि जब एक औरत कोई रिफॉर्म करती है या जब कहीं कोई बदलाव आता है समाज में, वो सिर्फ औरतों के लिए आता है, वो औरतों के लिए भी आता है, पुरुषों के लिए भी आता है, बच्चों के लिए भी आता है, आने वाले भविष्य और पूरे समाज को ठीक करता है। सो जरूरी ये है कि अगर महिलाएं न सिर्फ शिक्षा का हाथ पकड़ ले, और हर महिला को शिक्षा तब तक मिले जब तक कि वो शिक्षा लेना चाहती है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, हायर एजुकेशन है, डिपेंड ये करता है कि वो किस स्तर तक शिक्षा चाहती है। जब तक उसे शिक्षा मिलेगी ना, आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे समाज में एक बदलाव आता जाएगा। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। सुना रही हूं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना, फील गुड फील
2: टुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं निवेदिता राणा जी से। निवेदिता राणा जी फाउंडर हैं KDB स्कूल गाजियाबाद की, और अब बात करते हैं एजुकेशन की यानी शिक्षा की। निवेदिता जी, ये तो हम सब जानते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर खास तौर पर मैं महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगी। अक्सर हमने ये देखा है कि जो ड्रॉप आउट्स होती हैं ना, वो अक्सर बच्चियां होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल से लेकर पब्लिक स्कूल तक की मैं बात करूँ, और या फिर हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ, आज भी मैं ये देख रही हूँ। एक तरफ हम ये कहते हैं बायोलॉजिकल साइकिल, लेकिन दूसरी तरफ उस क्लॉक को ही तोड़ते हुए बहुत सारी बच्चियों की आज भी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, और वहां पर शिक्षा उनसे छिन जाती है। सो कितनी इम्पोर्टेंट है शिक्षा, और ये उनके भविष्य को कैसे बनाती है?
1: देखिए, स्कूल वो सेफ स्पेसेस हैं जहाँ पर हम बच्चियों को सिखाते हैं कि वो निर्भीक होकर अपने चैलेंजेस, अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स शेयर कर पाएं और कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। क्योंकि व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल, यू एम्पावर अ नेशन। जैसा आपने कहा, यू लिटरली एम्पावर द होल सोसाइटी। शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण का एक रिपल इफेक्ट होता है, जो एक स्वस्थ परिवार, शक्तिशाली इकोनॉमी और एक अधिक इंक्लूसिव समाज की नींव बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटियों को ये बहुत जरूरी है समझना कि उनमें वो ताकत है, वो काबिलियत है, जिसको पहचानना उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, और इस शक्ति के माध्यम से ही समाज में बदलाव आना संभव है। और मैं ऐसे ही इसी प्रकार से अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को सिखाती हूँ कि शिक्षा कितनी अहम है उनके जीवन में। अगर वो शिक्षित होंगी तभी वो समाज को समझने, उसकी जो जटिलता है उसको पहचानने, और उसमें जो कुरूपता है उससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर पाएंगी। तो मैं तो यही मानती हूँ कि शिक्षा ही माध्यम है, शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ संभव हो सकता है।
0: देखिए ना, किसी भी स्तर पे अगर आप चले जाएं, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि शिक्षित महिलाएं हैं, वहाँ समाज भी बेटर है, वहाँ परिवार भी खुशहाल है, और वहाँ पर जो सोच है ना, वो काफी ज्यादा खुली हुई सोच है। यानी आज भी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है उन परिवारों में जहाँ महिलाएं शिक्षित हैं, और जहाँ महिलाएं शिक्षित नहीं है वहाँ वो आज भी किसी न किसी स्तर पर सफर कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, पुरुष या महिला, शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। छुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ले रही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आज हम बात कर रहे हैं निवेदिता राणा जी से प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट में। निवेदिता राणा जी फाउंडर हैं केडीबी स्कूल गाजियाबाद से। और निवेदिता जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, महिलाएं ना बहुत जगह पहुंच गई हैं, पायलट्स हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रही हैं, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ भी हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखो सो ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये आज भी है। ये जो जेंडर में इक्वालिटी या इक्विटी हम जैसे कहते हैं, ये आज भी मुझे लगता है कि बहुत एपरेंट है और बड़ी क्लियरली नजर आती है। बट मुझे बताइए कि इसके बारे में बात तो सब करते हैं पर सॉल्यूशन कोई भी नहीं देता है, आपको क्या लगता है इससे कैसे कोप किया जा सकता है?
1: देखिए भावना, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, लेकिन वास्तविकता को एक्सेप्ट करना और वास्तविकता को समझना दूसरा मुद्दा है। ये बिल्कुल सच है कि महिलाएं बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रही हैं और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें केवल एक महिला का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें पूरे समुदाय और पूरे समाज का इन्वॉल्वमेंट है। और मैं मानती हूँ महिलाओं को हर तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। इंडिविजुअल स्तर पर हम महिलाओं को उनके अधिकारों, उन कानून पॉलिसी जो कि जेंडर इक्वालिटी में को बढ़ावा देते हैं, उसका ज्ञान कराना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ भी डेवलप करना पड़ेगा। सब कुछ करके भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझती हैं, ये बहुत कॉमनली हमने देखा है परिवारों में। तो उनको जरूरी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपनी ओपिनियन को प्रकट करने की हिम्मत और क्षमता, और साथ ही साथ बाउंड्री सेट करने की काबिलियत, बड़ा क्लियर और एजर्टिवली उनको बाउंड्रीज अपनी सेट करनी है, ताकि वो कभी भी किसी के दबाव में ना सकें और कभी भी किसी से झुक ना पड़े उन्हें जीवन में। मेरा ये भी कहना है कि जो बदलाव की नींव है ना, वो घरों में रखी जानी चाहिए। लड़कों को शिक्षित करना चाहिए, इंक्लूसिवनेस के बारे में बताना चाहिए कि वे बराबर हैं लड़कियों के, लड़कियां उनसे कम नहीं हैं, ना वो उनसे सुपीरियर हैं। आई थिंक जब तक समाज में संकीर्ण विचारधारा को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तक समाज में बदलाव संभव ही नहीं है। देयर हैज टू बी अ सोशल डायलॉग कि कहां कमी रह गई और क्यों समाज में नारी व पुरुष का दर्जा एक समान नहीं है। आई थिंक यही चीजें हैं जो मिलकर एक कहते हैं ना, कंप्लीट सोसाइटी को फॉर्म करती हैं। एक पोएट है अल्फ्रेड टेनिसन, उन्होंने कहा है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी कि जब तक पुराना ऑर्डर बदलेगा नहीं, नए ऑर्डर को रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक कहीं कोई परिवर्तन संभव नहीं है। और मैं मानती हूँ कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और हम सबको बदलाव को एडॉप्ट और अडेप्ट करना चाहिए।
0: सो ट्रू। तो मुझे लगता है शुरुआत अपने घर से करके देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने ये पूछा है अपने घर की महिला से, वो चाहे माँ है, वो चाहे दादी है, चाहे नानी है, चाहे बहन है, कि when was the last time you did anything for yourselves? शायद कभी नहीं। मतलब क्योंकि हम अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हैं कि कुछ दिन हैं जो जरूर सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, मदर्स डे, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अप्रिसिएशन, अटेंशन और केयर, ये तो कहीं है ही नहीं। ये सब उनको देने की चीजें हैं, यानी एक महिला पूरे परिवार को ये सारी अटेंशन देगी, सारी केयर देगी, वो ध्यान रखेगी पूरे परिवार का, लेकिन उसे इन रिटर्न क्या मिल रहा है ये कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि अगर हम घरेलू काम की बात करें, डोमेस्टिक चोर्स, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ये डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में महिला पर है। बच्चे की परवरिश और प्रजनन तो ऑफकोर्स प्रभु ने महिलाओं को दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है, जब तक इन चीजों में भी साझेदारी नहीं आएगी, तब तक एक महिला अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ महसूस करेगी। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी महिलाएं बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद भी इनइक्वालिटी का सामना करती हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजों के कारण, समाज की सोच के कारण, वो उतना एम्पावर्ड हो ही नहीं पा रही हैं जितना दरअसल होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम सब की है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं निवेदिता राणा जी से। बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही और आज हमने इनसे जाना कि सही मायने में सशक्तिकरण को प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है। तहे दिल से धन्यवाद निवेदिता जी। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, जैसा मैं मानती हूँ कि एक साथ मिलकर एक सोच का निर्माण करना, ताकि हम महिला पुरुष एक दूसरे का साथ दे सकें और एक ऐसा समाज हो जो बराबरी में विश्वास करता हो, ये कल्पना नहीं, ये हकीकत में बदलना चाहिए। और जहां महिलाएं खुलकर जिए, खुलकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें और अपनी काबिलियत से नए आयाम बनाएं। वी डोंट वॉन्ट अ वर्ल्ड वेयर, जैसे आपने कहा कि केयर, अफेक्शन, अटेंशन, ये तीनों चीजों का अभाव है परिवारों में। तो मैं चाहती हूँ हर महिला को का ये राइट हो कि उन्हें ये सब मिले, वो इतना कुछ करती हैं। इसके अलावा एक ऐसा संसार हो जहाँ पे सभी समाज के पुरुष जो हैं वो सेंसिबल होने के साथ साथ सेंसिटिव भी हों, उनकी नीड्स, महिलाओं की नीड्स को लेकर, यानी समझदारी के साथ संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। और बदलाव तो आएगा जब आप और हम जैसे लोग मिलकर ऐसी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है ये बात घरों तक पहुंचेगी और घरों से ही बदलाव की शुरुआत होगी। तो भावना, वंडरफुल इट वॉज टू टॉक टू यू एंड दिस इज माई मैसेज टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू रेडियो।
0: वाओ, हमारे सभी लिसनर्स की ओर से भी निवेदिता जी तहे दिल से धन्यवाद। ना सिर्फ आज आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, लेकिन हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाने से पहले एक बार फिर से आपका धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, और जब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ तो मैं वादा जरूर करती हूँ। तो चलिए भाई, वादा रहा, प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट में मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते ठीक इसी टाइम इसी दिन यानी शनिवार को 5 से 6 बजे। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील नाइस।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। हमारे सभी श्रोताओं को पता है कि हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं तलाशने की नई सोच के साथ नई दिशाएं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश की न्याय व्यवस्था को लेकर के, जो एक्ट में चेंजेज आए, जो हमारी एक इंडियन पिनल कोड जो करीब 100 वर्षों से भी पुराना एक कानून का जो एक महत्वपूर्ण अंग था उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता और इस प्रकार के जो बदलाव आए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर IPC से BNS तक क्या बदला, क्यों बदला और आम आदमी को क्या मिला। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आपके साथ कोई अपराध हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, तो न्याय पाने की आपकी पहली सीढ़ी क्या होगी? पुलिस स्टेशन, FIR, इन्वेस्टिगेशन, देन एविडेंस, देन कोर्ट और फिर जजमेंट। लेकिन अगर इन पूरी प्रक्रियाओं के नियम ही बदल जाएं, तो भारत में 1 जुलाई 2024 से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली, यानी BNS। CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली, यानी BNSS। और हमारे देश में एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, यानी BSA, जो लागू हुए। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि धाराएं बदल गईं, सवाल ये है क्या न्याय का तरीका भी बदला? क्या आम नागरिक की परेशानी कम हुई? क्या पुलिस और प्रशासन ज्यादा जवाबदेह हुए? और क्या ये बदलाव वास्तव में समय की जरूरत थे? आज इस प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सवालों पर बात करेंगे नई सोच नई दिशाएं में। तो दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और हम हाजिर होते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आईपीसी से बीएनएस तक क्या बदला, क्यों बदला और आम आदमी को क्या मिला। हमने आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 को भारत की जो देश की जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, लेकिन अब मुद्दा यह है कि आखिर कानून बदलने की जरूरत पड़ी क्यों। सबसे पहले समझते हैं कि पुराने कानून आखिर इतने पुराने क्यों माने गए, यानी हम आईपीसी की बात कर रहे हैं या सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, उनको हमने पुराना क्यों माना। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आईपीसी वर्ष 1860 का था, यानी तकरीबन 150 साल पुराना या शायद उससे भी ज्यादा, एविडेंस एक्ट 1872 का, और मेन जो सीआरपीसी था वो सन 1898 का था, जिसे बाद में 1973 में एक नया रूप दे दिया गया था। यानी हमारी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था की जो बुनियाद थी वो ऐसे समय की थी जब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन थे, ना सोशल मीडिया, ना कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन और ना ही कोई साइबर क्राइम, जो आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे जीवन में। आज अपराध भी बदल गए हैं और उन अपराधों के मिलने वाले सबूत भी। आज किसी अपराध का सबूत किसी चश्मदीद गवाह के पास नहीं, बल्कि मोबाइल फोन, सीसीटीवी, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, सर्वर या लोकेशन डाटा में हो सकता है। इसीलिए एक जरूरत आन पड़ी कि कानून का आधुनिक तकनीक और आज के सामाजिक अपराधों के साथ चलना जरूरी था। अब सरकार का तर्क यही था कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को जो कॉलोनियलिज्म का एक दौर था उसकी सोच से निकाल करके नागरिक केंद्रित और आधुनिक व्यवस्था बनाया जाए, यानी जिस प्रकार से एक अंग्रेजी शासन के दौरान के सारे नियम कानून थे, तो उस दौर से निकल के हम आज के हालात और आज की जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसकी उसको केंद्रित करते हुए एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए इस एक्ट के जरिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि कानून का नाम बदलना अपने आप में सुधार नहीं है। प्रयास किए गए कि सुधार आए, लेकिन केवल नियम बदलने से या कानून का नाम बदलने से सुधार नहीं आता। असल सुधार तब होता है जब आम आदमी को न्याय जल्दी, निष्पक्ष और आसानी से मिल जाए। तो

मूल भावना जो है वो किसी भी न्यायिक व्यवस्था की इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील राइट।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की आपराधिक जो न्याय व्यवस्था है उसमें आए हुए बदलाव को लेकर के, यानी आज से लगभग 2 साल पहले जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश की इस न्यायिक व्यवस्था में आया उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने बात की आखिर कानून को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, और अब एक बात हमारे आम नागरिकों से जुड़ी हुई, जो देश के नागरिक हैं आखिर उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है इस व्यवस्था को बदलने में। मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आपके साथ कोई गंभीर अपराध हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उस समय आप अपने ही क्षेत्र में हो, तो पहले ज्यूरिसडिक्शन यानी मामला किस थाने का है, जैसी समस्याएं सामने आ सकती थी। पहले होता था कि आप जिस क्षेत्र में आपके साथ अपराध घटित हुआ है वो उस अपराध की जो सूचना है वो केवल उसी क्षेत्र के थाने में ही दी जा सकती है, लेकिन अब जीरो FIR की व्यवस्था के कारण व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है। यानी एक नई व्यवस्था जो लागू हुई है नई भारतीय न्याय संहिता में वो ये कि आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुआ हो। यानी यदि आपके साथ जो दुर्घटना है, जो भी अपराध है, वो किसी भी जगह पे क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप उसकी सूचना अपने नियरेस्ट अपने सुविधाजनक पुलिस थाने में दे सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अपराध की सूचना देने की व्यवस्था भी लाई गई है। यानी कानून का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि पहले नागरिक की शिकायत सुनी जाए, ज्यूरिसडिक्शन बाद में देखा जाए। यानी सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे एक आम नागरिक के जीवन में आया है कि आपकी जो कंप्लेंट है, जो आपकी शिकायत है, उसको तवज्जो दी जाएगी, ना कि आपके न्यायिक या ज्यूरिसडिक्शन को देखा जाएगा। और आपको आमतौर पर बड़ी शिकायतें आती थी कि आप किसी क्षेत्रीय थाने में कहीं जाते हैं तो वो आप पढ़ करके कंप्लेंट को बोलते हैं कि ये मामला यहाँ का नहीं है, वहाँ जाओ ये जाओ, तो वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई व्यवस्था एक जीरो FIR वाली पॉलिसी को ला करके। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव कि शिकायतकर्ता को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की गई। यानी आपको अपनी कंप्लेंट के ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है उसकी भी जानकारी देने की व्यवस्था इस नई न्याय व्यवस्था है उसके अंदर की गई है। BNSS में पुलिस को 90 डेज के अंदर कंप्लेनेंट या विक्टिम को इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस बताने का प्रावधान है। यानी आप समझ सकते हैं जो भारतीय न्याय संहिता है, BNSS जो एक नाम बदला गया CRPC का, और उस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अब नाम से जानी जाती है, उसमें एक व्यवस्था है कि 90 दिन के अंदर जो भी शिकायत करने वाला व्यक्ति है या जिसके साथ भी ये दुर्घटना या अपराध हुआ है उसको इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको 90 डेज के अंदर देनी पड़ेगी। तो इससे नागरिक को ये पता चल सकेगा कि उसकी शिकायत केवल FIR की फाइल बनकर रह गई है या वास्तव में उस पर कोई कार्रवाई भी हो रही है। यानी कानून की भाषा में एक बड़ा बदलाव है पुलिस स्टेशन से सिटीजन सर्विस तक। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, नई सोच नई दिशाएं में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की आपराधिक व्यवस्था में आए हुए बड़े बदलाव, यानी जो एक्ट के चेंजेज आए उसको लेकर के। अभी हमने चर्चा की कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हमारे आम नागरिक के लिए क्या इसमें बड़ा बदलाव है, जिसमें हमने बताया कि जीरो FIR की जो व्यवस्था अब आई है उससे एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है कि उसमें कंप्लेंट को तवज्जो दी गई है, ना कि जुरिस्डिक्शन को। अब दूसरा मुद्दा हम बात करते हैं, हम आते हैं उस बदलाव पर जो आज के डिजिटल युग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जिस प्रकार का लाइफस्टाइल और जो लाइफ हमारी हो गई है, जैसा वातावरण हमारा है, तो उसमें हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा मोबाइल में है। किसी व्यक्ति की लोकेशन, CCTV फुटेज, ईमेल, डिजिटल पेमेंट, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, फोन या कंप्यूटर का डाटा, ये सब अपराध की जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इन सब चीज़ों में कवर होता है। और किसी भी अपराध की जानकारी के लिए या उसकी जांच के समय पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी में भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है BSA, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को एविडेंस के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, यानी जो भी ये जो मैंने अभी आपसे नाम लिए, लोकेशन, CCTV फुटेज, डिजिटल पेमेंट, ये सभी पूरी तरह से एविडेंस के रूप में एक्सेप्टेबल हैं नए कानून के तहत, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। लेकिन उसके लिए कुछ जो कंडीशंस हैं, कानूनी शर्तें हैं, वो जरूर मेंशन है। साथ ही BNSS में भी इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक मींस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया, यानी अब से पहले जो टेक्नोलॉजी से हटके जो एक तरह की व्यवस्था चल रही थी उसको एक नया रूप दे दिया गया, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मींस है डॉक्यूमेंटेशन में उनको भी, जैसे कंप्यूटर है या किसी भी तरह का है, तो वो उस चीज़ों को उसमें इस्तेमाल किया जाने को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। और साथ ही साथ जो गंभीर अपराध हैं उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की भूमिका बढ़ाई गई है। अब लेकिन जो ये चीज़ें हुई, आखिर इससे फ़ायदा क्या होगा? अब दोस्तों, अगर जाँच वैज्ञानिक और डिजिटल एविडेंस पर आधारित होगी तो केवल किसने क्या कहा पर निर्भरता कम हो सकती है। यहाँ एक चुनौती भी है कि डिजिटल एविडेंस जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है, यानी डाटा की जो ऑथेंटिसिटी है, जो चेन ऑफ कस्टडी है और प्राइवेसी है, अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो टेक्नोलॉजी न्याय का साधन बनने की जगह विवाद का कारण भी बन सकती है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जितना इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है डिजिटल जो एविडेंस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने उसकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का विवाद का रूप भी ले सकता है, यानी उसमें कंट्रोवर्सी होने के चांसेस भी हैं। तो जितना सुविधाजनक ये हमारे लिए एक साधन हुआ है, उतना ही हमें इसमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि जिस प्रकार से हमने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात की, या जो हमने कहा कि मोबाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको यदि हम टेस्टिंग करते हैं, एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उससे एक बेहतर और निष्पक्ष न्याय की संभावनाएँ काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं आज के आधुनिक युग में। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशा।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और जो हम आपराधिक न्याय व्यवस्था के बदलाव की आज हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, उसी में एक अगला विषय आता है कि यदि हम अपने समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, अपने अगर हम बात करें महिलाओं की और बच्चों की, तो आखिर उनके लिए क्या इस व्यवस्था में बदलाव आया है। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी न्याय व्यवस्था की जो असली परीक्षा है वो इस बात से होती है कि वो अपने सबसे जो वल्नरेबल नागरिक हैं, जो उनकी रक्षा कितनी मजबूती से करती है, यानी हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं महिलाओं की और बच्चों की। अब BNS में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को एक अलग प्रमुख चैप्टर में स्थान दिया गया है, यानी उनके लिए बिल्कुल एक अलग से व्यवस्था की गई है जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कई अपराधों में सख्त दंड का प्रावधान है। जो व्यवस्था पहले इतनी सख्ती से लागू नहीं हो रही थी, लेकिन इन बदलाव में BNS में उन अपराधों के प्रति जो महिलाओं और बच्चों के साथ हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया उसमें अपनाया गया है और सख्त दंड का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ इसमें झूठे प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन या आइडेंटिटी कंसीलमेंट के माध्यम से जो एक तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ और ये जो अपराध होते हैं उसको लेकर भी नया प्रावधान जोड़ा गया है। यानी कि जिसमें आमतौर पर हमने सुनी है, अभी आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे रेप केसेस की जो चर्चाएं आती हैं, तो उसमें स्पेशली जो अगर कोई भी माइनर के साथ गैंगरेप होता है तो उस अपराध के लिए एकदम बेहद कठोर दंड का प्रावधान है नई BNS में, यानी हम भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक संतुलित बात है जो हमें समझनी होगी, केवल सजा बढ़ा देने से अपराध खत्म नहीं होते। यानी अपराध की यदि आपने कोई सजा में बदलाव भी कर दिया, उसको हमने सख्त भी कर दिया, बढ़ा भी दी, तो वो कोई मात्र कारण नहीं बनता हमारे समाज के अंदर अपराध कम होने का। जो अपराध है उनको रोकने के लिए जरूरी है बेहतर पुलिसिंग, तेज इन्वेस्टिगेशन, बेहतरीन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम सपोर्ट, विटनेस प्रोटेक्शन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निश्चित और निष्पक्ष न्याय। यानी कि एक जो न्याय की निश्चितता है और जो निष्पक्षता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस बात में जो हमारे अपराधियों को सजा दे पाए। और साथ ही साथ यदि सही अपराधी को सही सजा मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा कारण समाज में बनता है उन अपराधों पर नियंत्रण करने का, क्योंकि अपराधी को एक भय मन में होना चाहिए कि वो कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना पैदा कर ले, चाहे वो दबाव की, चाहे लालच की या किसी प्रकार के प्रभाव की, लेकिन उसको ये भय मन में होना चाहिए कि वो बच नहीं सकता। और ये सब जो कारण हैं वो बहुत बड़ा एक बनते हैं, साधन बनते हैं इस बात का जो हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर अपराध की दरों में कमी लाने का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं देश की नई आपराधिक न्याय व्यवस्था को लेकर के, जो कानून बदले, जो नियम बदले, उसके पीछे का कारण क्या था, हमारे वर्तमान आधुनिक परिवेश में हमें इन कानूनों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और साथ ही हमने जाना कि हमारे देश के नागरिकों को उसमें क्या मिला और विशेष रूप से हमारे जो समाज की महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार के नए प्रावधान इस BNS में दिए गए। अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि इस बदलाव से क्या वास्तव में जो न्याय की जो गति है, जो स्पीड है, वो तेज होगी, यानी न्याय जल्दी मिल पाएगा। अब इन नए कानूनों से न्याय जल्दी मिलेगा, एक प्रश्न कमोबेश सभी के मन में होता है। लेकिन BNSS में इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसको भी अधिक टाइम बाउंड बनाने की कोशिश की गई है, यानी इस नई व्यवस्था में जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी प्रकार के जो सेक्सुअल ऑफेंसेज की बात करते हैं तो उस मामलों में इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई, यानी 60 डेज में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कई प्रक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसमें और साथ ही साथ उसकी जो टाइम बाउंडेशन है उसके इस्तेमाल को बढ़ाया गया है। पहली बार कम्युनिटी सर्विस को भी पनिशमेंट के रूप में शामिल किया गया है और उसके पीछे का भाव ये है कि अपराधी को भी एक बार सुधरने का मौका दे करके जो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें लाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं या अंडर ट्रायल्स हैं उनके बारे में भी कुछ काफ़ी रिलीफ देने वाले प्रोविजंस किए गए हैं, यानी यदि आप किसी गलत मामले में फंस भी गए हैं किसी वजह से और आप अंडर ट्रायल हैं, बरी भी नहीं हुए हैं, तो उस दौरान आपके साथ थोड़ी एक लीनियंसी बढ़ती जाए और आपको एक तरह का रिलीफ उस दिन दिया जाए। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि हर अपराध का जवाब केवल जेल नहीं होना चाहिए, छोटे अपराधों में समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने वाली सजा भी एक रास्ता हो सकती है, जिसे हमारे सामने एक नई व्यवस्था दी गई है कम्युनिटी सर्विस के रूप में। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो लॉ की स्पीड है, जो अगर हम न्याय की बात करते हैं, वो जमीन पर जब ही दिखाई देगी जब पुलिस, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक लैब्स और कोर्ट्स चारों की क्षमता भी उसी गति से बढ़े। यानी आपने व्यवस्था तो कर दी कि इतने समय में इन्वेस्टिगेशन करो, इतने समय में इसका ट्रायल कर लो, लेकिन साथ ही साथ जो इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक लैब्स हैं और कोर्ट्स हैं, उनको भी अपनी क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी आप किसी भी आपराधिक मामले की यदि जांच होती है या उसकी सुनवाई होती है तो उसके लिए एडिक्वेट अथॉरिटी नंबर्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ केस बढ़ गए लेकिन कोर्ट की क्षमताएं नहीं बढ़ी, तो किसी भी एक पर्टिकुलर जो न्यायाधीश हमारे न्यायालयों में होते हैं उनकी भी एक समय सीमा होती है, कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड जा करके वो भी उस स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे। यानी वो व्यवस्था का जो थॉट है वो तभी पूरी तरह से मैच्योर होगा जब हम सारी चीज़ों को पैरेलली लेकर के चलें, क्योंकि कागज पर टाइमलाइन होना और ग्राउंड पर समय पर न्याय मिलना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और हमें इन सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। सारे जो परिवर्तन हैं, जो चेंजेस हैं, वो भी पूरी व्यवस्था में लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा पर हम और जानकारी देंगे आपको इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में आए हुए बड़े बदलाव को लेकर, जो नियम बदले या नियमों में सुधार आया और जिस प्रकार की एक नई व्यवस्था हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए दी गई। अब आखिर इस सब में चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि हमने सारी बातें की, क्या क्या चीज़ अच्छी हुई, कैसे बेहतर होने की बात हुई, लेकिन अब थोड़ा आलोचनात्मक जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आलोचनात्मक जो नज़रिया है वो बेहतरी के लिए सदैव बहुत अच्छा होता है। और किसी भी नए कानून को सिर्फ इसलिए सही नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो नया है। यानी हम आमतौर पर बात करते हैं कि एक लेटेस्ट जो वर्जन किसी चीज़ का होता है तो वो बेहतर है, लेकिन उसको केवल इसलिए बेहतर मान लेना क्योंकि वो लेटेस्ट है, ये भी कोई सही कारण नहीं है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ट्रांजिशन। यानी हजारों जो पुलिसकर्मी, वकील, जुडिशियल ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वर्षों से पुराने कानूनों के साथ काम करते आए हैं। यानी आप समझिए कि जिन्होंने पूरे समय तक अपने देश को आज़ाद होने के बाद से लेकर के आज तक जो भी व्यवस्था थी वो पुराने नियम कानून के नियमों को पढ़ करके की, उनका जो भी अनुभव रहा उसी के आधार पर रहा। उन्हें जो बहुत ज़्यादा समय तक इसमें रहे, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे हमारे वकील या न्यायाधीशों की बात करें, तो उनको विभिन्न धाराएं और उनके प्रावधान एक तरह से रटे हुए होते थे। लेकिन नई धाराएं, नई टर्मिनोलॉजी और नया डिजिटल प्रोसीजर, इन सब के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यानी एक नई व्यवस्था आपने दे तो दी इस पूरे प्रणाली को, लेकिन उसके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है पॉलिसी पावर्स और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन। यानी आपने पॉलिसी के हिसाब से शक्तियां प्रदान की, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हमारे राइट्स हैं, जो हमारे नागरिकों के जो अधिकार हैं, उसके बीच का जो एक बैलेंस है वो बना के रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है इस बदलती नई न्यायिक व्यवस्था में। अब कानून पुलिस को प्रभावी इन्वेस्टिगेशन के पर्याप्त अधिकार दे, लेकिन साथ ही नागरिक की लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी सुरक्षित रहें। यानी आप जल्दबाजी की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे नागरिकों के अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही तीसरी चुनौती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। यदि किसी छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक फैसिलिटी या ट्रेंड मैन पावर पर्याप्त नहीं है, तो कानून की अच्छी भावना भी जमीन पर कमजोर पड़ सकती है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन चीज़ों को लेकर के, कि एक बहुत ज़्यादा आधुनिक शहर भी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर अभी आधुनिकता बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो वहाँ पर यदि ये सब सुविधाएं नहीं है जिनका उल्लेख हमारी BNSS में और BNS में किया गया है, तो उनका प्रभाव किस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि जो कानून है वो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होता है, ना कि किसी क्षेत्र की जो सुविधाएँ हैं या क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इस चीज़ को लेकर के भी है। अब वहाँ पर यदि ट्रेंड मैन पावर भी नहीं है तो वो उन सब सुविधाओं का या उन तरीकों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिनको बहुत मुख्य रूप से स्थान दिया गया है नई आपराधिक न्याय व्यवस्था में। तो यानी सीधी सी बात है कि जो कानून की अच्छी भावना है, एक अच्छा न्याय दिलाना, जल्दी दिलाना, तो वो भी कमज़ोर पड़ जाती है यदि ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं। और चौथी सबसे बड़ी चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन। कानून किताब में कितना भी अच्छा हो, अगर FIR दर्ज करने में परेशानी हो, इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट देर से आए और साथ ही प्रोसिक्यूशन भी कमज़ोर हो, या कोर्ट में वर्षों तक मामला चलता रहे, तो आम आदमी के लिए कानून का अनुभव नहीं बदलेगा। ये बात आप रेलिवेंट कर सकते हैं।

उसका जो रेलिवेंस है वो सीधा सीधा ये है कि जब हमने बात की कि हमने एक व्यवस्था के बारे में जिक्र कर दिया, नियम बना दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन, जुडिशियल ऑफिसर्स, इन सब की जो एक व्यवस्था है, जिनका नंबर्स है, वो भी उसी तरीके से बढ़ना चाहिए ताकि इसकी जो गति है, जो अपेक्षित गति है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक व्यवस्था बेहतर होगी, न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा, तो वो केवल तभी होगा जब बाकी और चीज़ें भी उसी गति से आगे बढ़ें। एक आम नागरिक के लिए जो अनुभव है वो बदलेगा जब धरातल पर सब चीज़ें उस प्रकार से दिखाई देंगी जैसा कि किताबों में लिखा गया है। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। दोस्तों अभी हमने चर्चा की कि हमारे देश की जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है वो बदली। 1 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा बदलाव आया, आईपीसी सीआरपीसी जो एविडेंस एक्ट है उन सबको बदल करके नए नियम बना दिए गए, नए नाम दे दिए गए। उसमें हमने जाना कि बहुत सारी सुविधाएं हमारे नागरिकों को ही, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो होने वाले अपराध हैं उनके बारे में भी एक बहुत ज़्यादा सख्ती का रवैया उसमें दिखाई दिया गया। और एक जो भावना रही उसमें ये कि लोगों को न्याय मिले, शीघ्रता से मिले और सही न्याय मिले। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी हमारे मन में आता है कि क्या वास्तव में ये सब होना, क्या ये बदलाव वास्तव में लॉजिकल था? यानी हम इस जो बदलती हुई व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो कितना तर्कसंगत था? यदि हम इसका जवाब दें तो ना वो हाँ में होगा ना वो ना में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमने अभी पूरे इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की। क्योंकि कानून को आधुनिक बनाना तर्कसंगत था और आवश्यक था, क्योंकि वो जैसे हमने चर्चाएं की आपसे कि 100-150 साल पुराने कानून थे, उस समय की परिस्थितियां और थी, लेकिन आज बदल गई हैं क्योंकि अपराध बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और समाज बदल चुका है। लेकिन कानून का बदलना पहला कदम है, आखिरी मंजिल नहीं है। यानी हम अगर बात करें तो ये एक केवल पहला कदम है, पहला स्टेप है उस दिशा की तरफ बढ़ने का जो हमारे समाज में सुधार के लिए, अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है। न्याय व्यवस्था का जो असली लक्ष्य है, जो उसका मोटिव है, वो होना चाहिए पीड़ित को न्याय, निर्दोष को सुरक्षा और अपराधी को उचित एवं कड़ा दंड, पुलिस को स्पष्ट प्रक्रिया और नागरिक को सम्मान। तो ये वो कसौटियां हैं जिन पर एक समाज की जो कानून व्यवस्था है वो खरी उतरती है तो वो एक बेहतरीन व्यवस्था मानी जाती है। और शायद इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी कसौटी भी यही है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आईपीसी की धारा 302 अब बीएनएस की कौन सी धारा हो गई है। दरअसल हमें पूछना चाहिए क्या उस हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को पहले से जल्दी और बेहतर न्याय मिला। और साथ ही हमें यह भी नहीं पूछना चाहिए कि एफआईआर की धारा बदल गई या नहीं। हमें पूछना चाहिए क्या आम नागरिक की एफआईआर अब आसानी से दर्ज होती है। और हमें यह भी नहीं पूछना चाहिए कि कानून कितना कठोर है, बल्कि पूछना चाहिए क्या कानून निष्पक्ष है और क्या उसका पालन निश्चित है। तो दोस्तों बस इसी बात में फर्क है कि कानून बदलने और न्याय व्यवस्था बदलने में। जो हमने बात की अभी आपसे कि हमने क्या थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए और क्या नहीं, तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि यही एक बहुत बड़ा फर्क होता है कानून बदलने और न्याय व्यवस्था बदलने में। तो दोस्तों आईपीसी से बीएनएस, सीआरपीसी से बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट से बीएसए तक का सफर सिर्फ धाराओं और नंबरों का बदलाव नहीं, ये कोशिश है एक पुराने क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क को आज के भारत की जरूरतों के अनुरूप ढालने का। इसमें उम्मीदें बहुत हैं, संभावनाएं भी बहुत हैं और चुनौतियां भी कोई कम नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र में कानून की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब आम नागरिक पुलिस स्टेशन जाते हुए डरे नहीं, जब पीड़ित को लगे कि उसकी आवाज सुनी जाएगी और जब किसी निर्दोष को भरोसा हो कि उसके अधिकार सुरक्षित हैं, और साथ ही जब अपराधी को पता हो कि कानून से बचना अब आसान नहीं है, क्योंकि अंततः कानून की ताकत उसकी धाराओं में नहीं बल्कि उसके निष्पक्ष इस्तेमाल में होती है। तो दोस्तों इसी सोच के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे। संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह के चमकते हुए अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसके सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई, होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई, चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर

0: नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 125 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस न हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।

और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साजन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साजन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं ऑर्गन इंडिया की CEO सुनैना सिंह। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
2: हमारे श्रोताओं को बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा नाम सुनैना सिंह है और मैं ऑर्गन इंडिया की CEO हूँ। हम अपने रेडियो शो में ज्यादातर अंगों की बीमारियों के विषय पर बातें करते हैं, लेकिन आज हम शरीर के सबसे अहम हिस्से के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा दिमाग। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप वैश, जो फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। नमस्कार डॉक्टर वैश, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर वैश, सबसे पहले ये बताएं कि आप रोज़ाना किस प्रकार की हेड इंजरीज या सर की चोटें देखते हैं?
3: सर की चोटें कई किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण, झगड़ों के कारण हो जाती है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, कई बार ब्लंट ऑब्जेक्ट से जैसे कि डंडे से या पत्थर से। वॉर इंजरीज होती हैं जिसमें गोली लग जाती है, बॉम्ब के पीसेस लग जाते हैं, तो वो भी हमारे पास काफ़ी विदेश से पेशेंट आते हैं, तो उनकी उस तरह की चोटें भी देखते हैं।
4: तो हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कोई घर में बैठा होता है या कोई बच्चा खेल रहा होता है, वो भी घर में ही उनको चोट लग जाती है और बहुत भयंकर चोट लग जाती है घर बैठे बैठे, तो उससे कैसे बच सकते?
3: घर में बच्चों की चोटें हमने दो किस्म की सबसे ज्यादा देखी है। एक तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो पलंग से गिर जाते हैं, यूजुअली एक साल या उससे कम के बच्चे होते हैं, सोते सोते वो थोड़ा सा मूव करते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो उनको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि या तो ऐसे नीचे पलंग पर सोएं कि बच्चे के गिरने का खतरा ना रहे, या फिर उसको संभाल के रखें जिससे कि उसके गिरने का खतरा ना पैदा हो। दूसरा, बच्चे खेलते वक्त सीढ़ियों से गिर जाते हैं या छत से गिर जाते हैं, खासतौर से पतंग के सीजन में पतंग उड़ाते वक्त नीचे गिर जाते हैं, चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि सावधानी से खेलें।
4: और बाकी जैसे जो लोग होते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आप देखते हैं कि वो उनको चोट लग जाती है, उसका प्रिवेंशन क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं?
3: रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कई कारण है। एक तो सबसे सिंपल बचाव है कि जैसे टू व्हीलर्स वाले हैं वो हमेशा हेलमेट लगा के चलाएं। हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं होता, लोग ये समझते हैं कि वो पुलिस से बचने के लिए पहन रहे हैं, लेकिन हेलमेट पहनना आपके खुद के सिर की चोट को बचाने के लिए होता है। जो हमने देखा है कि जो लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं और उनको चोट लगती है, अगर उनसे कंपेयर करें जो उनको बिना हेलमेट के चोट लगती है, तो वो चोट कहीं कम गंभीर होती है। जो बिना हेलमेट के चोटें लगती हैं उसके अंदर मौत होने की संभावना या मेजर इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि घर के बगल में ही जा रहे थे इसलिए नहीं लगाया था, लेकिन एक्सीडेंट कह के नहीं आता है, आप थोड़ी सी दूर भी जा रहे हैं तो भी हमेशा लगाना चाहिए। दूसरा, फोर व्हीलर में हमेशा आपको सीट बेल्ट लगा के बैठना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट अगर लगाएंगे तो उससे आपकी सर की और चेस्ट की इंजरीज को बचाने में मदद मिलेगी।
4: और हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग साइकिल चलाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं पहनते, टू व्हीलर तो अगर मोटरसाइकिल हो वो तो फिर भी हेलमेट पहन सकते हैं, लेकिन साइकिल पे जो जा रहा होता है आदमी वो बिल्कुल हेलमेट नहीं पहनता, तो आप डू यू फील दैट दे शुड बी वेयरिंग?
3: साइकिल पे भी अगर आप देखें, विदेशों के वीडियोस देखें, तो सब लोग साइकिल भी चलाते वक्त हेलमेट हमेशा पहन के चलाते हैं। अगर आप साइकिल रेस के वीडियोस भी देखें तो सब लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर साइकिल वाले भी हेलमेट पहन के चलाएं।
4: क्या ये चोटें जान के लिए खतरा पैदा कर सकती
3: हैं? कुछ चोटें जरूर कर सकती हैं, पैदा जरूरी नहीं है कि चोट इतनी गंभीर हो कि जान के लिए खतरा हो। कुछ चोटें माइनर होती हैं, कुछ लोग जो हेलमेट पहन के चला रहे होते हैं उनको चोट लगती है तो काफी बचाव हो जाता है उनका, लेकिन कुछ चोटें काफी गंभीर भी हो सकती हैं हैं जो कि जान ले सकती हैं।
4: तो चोट लगने के बाद मरीजों को किस स्थिति में फौरन अस्पताल जाना चाहिए? क्योंकि कई लोग जब चोट लगती है या तो घर चले जाते हैं या फिर बोलते हैं अच्छा बाद में देखा जाएगा, दवाई ले लेते हैं। ऐसी स्थिति कौन सी होती है जब उनको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए?
3: सी, अगर चोट गंभीर है तो जाहिर है कि मरीज बेहोश होगा, तो उस स्थिति में तो अस्पताल जाना ही चाहिए। पर अगर मान लो बेहोश नहीं भी हुआ है तो कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे लगता है कि चोट आगे जाके दिक्कत दे सकती है। जैसे कि अगर मरीज को बेहोशी रही हो कुछ देर,

0: के लिए, या फिर दौरा पड़ा हो, या कोई एक एक हाथ या पैर में कमजोरी हो, या फिर उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो और सर में दर्द हो रहा हो और उल्टियां हो रही हो, तो उस स्थिति में उनको एक बार अस्पताल जाके चेकअप करवा लेना चाहिए।
1: तो डॉक्टर वैश, हम बात कर रहे थे ब्रेन इंजरीज के बारे में और इनका उपचार कैसे कर सकते हैं।
0: जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि एक तो सबको हेलमेट लगा के चलना चाहिए टू व्हीलर पर, और फोर व्हीलर जो भी चला रहे हैं, भले पीछे की सीट पर भी बैठे हों तो बेहतर है कि वो सीट बेल्ट लगा कर बैठे। फिर जो सबसे बड़ा दूसरा कारण है एक्सीडेंट्स होने का, कि लोग शराब पीकर चलाते हैं या ड्रग्स लेके चलाते हैं। कई बार कई लोग बहुत ज्यादा थके हुए, रात भर ड्यूटी करी है, उसके बाद थके हुए भी चला रहे हैं और नींद आ रही है, तो उसमें भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि बसों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि ड्राइवर को नींद लग गई थी। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हों तो भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और शराब पी के तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है कि कई लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, आड़ी तिरछी चलाते हैं, तो वो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। जो और देखने को मिलता है कि बहुत से लोग रॉन्ग साइड चलाते हैं, जो सीधी साइड से आ रहा है उसको नहीं पता होगा कि कोई सडनली सामने से रॉन्ग साइड आ जाएगा और उसमें फिर एक्सीडेंट हो सकता है। इन चीजों का सबको ध्यान रखना चाहिए।
1: तो डॉक्टर वैश, हम बात कर रहे थे ब्रेन इंजरीज के बारे में और इनका उपचार कैसे कर सकते हैं।
0: अभी जैसा मैंने आपको बताया था किन किन स्थितियों में सर की चोट के बाद में अस्पताल जाना चाहिए, उनमें से जिनका भी मान लो किसी का सीटी स्कैन हुआ है, अगर उसमें कुछ खराबी निकलती है तो उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, और कई लोगों को तो एक दिन ऑब्जर्व करने के बाद में फिर वापस घर भेज देते हैं। कई लोगों को साथ में चोटें लगी होती हैं, टाके लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो छोटे से मामूली उपचार के बाद में घर जा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को गहरी चोट होती है, दिमाग में ब्लीडिंग हो सकता है, कई बार बड़े ब्लड क्लॉट होते हैं, कुछ लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कई लोग इनमें जिसमें गहरी चोट है उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, और फिर सुधार होने तक उसका ध्यान रखना पड़ता है।
1: तो कुछ मरीजों की चोट बहुत गंभीर भी हो सकती है, तो उनका कैसे उपचार होता है और उनको आगे जाकर उनका आगे जाकर क्या भविष्य होता है, क्या जान भी जा सकती है?
0: जो बहुत ख़राब चोटें होती हैं उनमें कई लोगों की जान तो एक्सीडेंट के वक्त वहीं पर मौके पर ही हो जाती है, कुछ लोगों की अस्पताल में जाकर हो जाती है। इनमें से काफ़ी लोगों को बचाया भी जा सकता है, कुछ लोग उपचार में देरी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सबसे ज़रूरी है किसी भी चोट के बाद में कि उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए और उसकी तुरंत उपचार चालू किया जाए। कई लोगों को उपचार के बावजूद भी हम नहीं बचा पाते, या कई लोग उपचार के बावजूद बच तो जाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, कई बार वो हमेशा बेहोश ही रहते हैं, या जिसको पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, जिसमें कि वो अपने आप कुछ खा पी नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, उनको नली के द्वारा खाना देना पड़ता है, कई लोग उस हालत में भी रह सकते हैं।
1: तो डॉक्टर वैश, कुछ लोग बहुत गंभीर चोट लगती है उनको, उसके बावजूद भी वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि हैंड इंजरीज में किसी कोई कोमा में चले गया या कोई बेहोश है बहुत दिनों के लिए, तो लोग हम समझते हैं कि उस टाइम कुछ नहीं हो सकता।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, काफी लोग काफी खराब चोट के बावजूद भी बच जाते हैं और उनकी काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हो सकती है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो कि बहुत ख़राब से ख़राब चोट के बावजूद अपने जॉब पर भी वापस चले गए, बट उसके लिए ज़रूरी है कि उनका सही उपचार सही वक्त पर किया जाए और सही उपचार किया जाए।
1: तो जो आदमी या औरत कोई कोमा में चले गया हो वो कोमा से भी बाहर निकल के वापस आ सकते
0: हैं? हाँ, बिल्कुल। कोमा मतलब बेहोशी है, लेकिन उस वक्त मरीज का दिमाग काम कर रहा होता है, उस स्थिति से वापस आ सकते हैं, बट एक कंडीशन होती है ब्रेन डेड, जबकि दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस स्थिति से बाहर आना मुश्किल होता है।
1: हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप वैश से, जो अब हमें बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति को सर पर बुरी तरह चोट लगती है तो उसके आगे उनके पास क्या विकल्प होते हैं। डॉक्टर वैश, आप बात कर रहे थे कोमा और ब्रेन डेथ के बारे में, थोड़ा और बताएंगे प्लीज।
0: कोमा और ब्रेन डेथ दो डिफरेंट चीजें हैं। कोमा में जब आदमी होता है तब भले ही बेहोश है लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा है, भले ही वो समझ नहीं पा रहा है बात को, हाथ पैर नहीं चला पा रहा है, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, वो अपने आप सांस ले सकता है। कुछ लोग भले वेंटिलेटर पर भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी उनका सांस लेने का, ब्लड प्रेशर मेंटेन होने का, ये सब काम हो सकता है। लेकिन जो ब्रेन डेड होते हैं उसका मतलब है कि ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो अपने आप सांस नहीं ले सकते, उनका दिमाग के जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि आँख की पुतली का रिफ्लेक्स देखते हैं या हाथ पैर के हिलने का, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। तो जो लोग ब्रेन डेड होते हैं उस कंडीशन से वो कभी वापस नहीं आ सकते।
1: तो ऐसे कैसे पता चलता है कि कोई कोमा में है और निकल सकता है शायद, और कोई ब्रेन डेड है?
0: एक सीरीज ऑफ टेस्ट करके देखते हैं, एक पूरी टीम होती है जो कि जांच करती है, जब वो सारे पैरामीटर्स पर पेशेंट वो सब फेल कर जाता है, कोई भी चीज उसके अंदर हमें जांच पे नहीं मिलती है, तब हम उसको ब्रेन डेड कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम सिर्फ एक बार जांच नहीं करते हैं, कम से कम 6 घंटे के बाद उसकी वही सारी जांचें दोबारा होती हैं और फिर भी अगर कुछ नहीं मिलता है तब हम उसको ब्रेन डेड कहते हैं।
1: तो ब्रेन डेड जब आप कह देते हो कि ये आदमी या ये औरत ब्रेन डेड हो चुका है, तो उसका कोई डिक्लेरेशन होता है, फैमिली को बताते हो कि ये ब्रेन डेड हो चुका है, और उसके बाद क्या होता है?
0: सी, जब हम दो बार टेस्ट कर चुके होते हैं और हमें पता चल जाता है कि पेशेंट ब्रेन डेड है, तब हमें पता है कि उस स्थिति से कोई भी मरीज वापस नहीं आ सकता। उस स्थिति में हम फैमिली को बताते हैं कि अब ये बंदा ब्रेन डेड है और हम कुछ कर नहीं सकते या दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब उस स्थिति में उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो जो चल रहा है वही चलने दें और अंत में कुछ समय की बात होती है, अल्टीमेटली हार्ट भी बंद हो जाता है। दूसरी चीज, हम उन लोगों को सबको काउंसिल करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है तो अगर वो चाहें तो उसका अंगदान कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे कुछ लोगों की जान बच सकती है।
1: तो डॉक्टर वैश, जब एक मरीज बहुत गंभीर, उसको बहुत गंभीर चोट लगी होती है सिर पर और वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, तो फैमिली को हमेशा लगता है कि शायद कुछ हो जाए, तो उस वक्त आप क्या बोलते हैं उनको?
0: अगर पेशेंट, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं और पेशेंट ब्रेन डेड है, हमें पता है कि पेशेंट ब्रेन डेड है, तो हम फैमिली को साफ साफ बता देते हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो सांस चल रही है वो कृत्रिम है, वो वेंटिलेटर के ऊपर है, वेंटिलेटर जैसे ही बंद करेंगे सांस तुरंत बंद हो जाएगी,
1: तो वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट।
0: हाँ, और उस टाइम सांस तो वेंटिलेटर के द्वारा चल रही है, हार्ट भी कुछ समय तक चलता रहता है अपने आप, फिर 1-2 दिन के अंदर हार्ट भी चलना बंद कर देता है। हमारे पास उतना ही समय होता है अंगदान करने के लिए, इसीलिए हम उनको उसी टाइम काउंसिल कर देते हैं कि अगर आपको करना है तो जल्दी डिसीजन लेना होगा।
1: आपने बहुत सारे मरीज देखे हैं जिन्होंने अंगदान किया है ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद?
0: हाँ, काफी मरीजों ने किया है। सबसे ज्यादा इसमें हमें समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के मन में इसके बारे में बहुत सी मिथ्या है, बहुत से संदेह है। नॉट ओनली लोगों के, मैंने कई बार देखा है कि डॉक्टर्स फैमिली में भी उन लोगों को पूरी बात समझ में नहीं आती है। एक बार जो ब्रेन डेड हो गया उसको दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं लेके आ सकती और उसके बाद मृत्यु ही निश्चित है। अगर ऐसे में वो अंगदान करके दूसरे और लोगों की जीवन को बचा सके तो ये उनके लिए ही नहीं सबके लिए फायदेमंद होगा।
1: डॉक्टर वैश, आपका ऐसा कोई एक केस है जो आपको याद हुआ हो जहाँ पे पेशेंट ने अंगदान के लिए हाँ कर दी?
0: मुझे याद है जब मैंने पहले पेशेंट को मोटिवेट किया था अंगदान करने के लिए, 1994 की बात है, उनकी वाइफ को ब्रेन हेमरेज हुआ था, फिर उसके बाद में वो ब्रेन डेड हो गई थी। तब तक इंडिया में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। फैमिली से मैंने बात किया, हमें पूरा रात लग गई थी समझाने में उनको, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने हाँ कर दी थी और इस प्रकार से इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था।
1: और इनका और भी अंग डोनेट हुए थे?
0: नहीं, उस वक्त सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट।
1: सिर्फ हार्ट डोनेट। तो मुश्किल था फैमिली को समझाने का कि ये अब जा चुके हैं और इनका और कुछ नहीं हो सकता और अब अंगदान, इनके अंगों को दान कर सकते हो?
0: थोड़ा तो मुश्किल था क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था
1: और डोनेशन भी नहीं होगी,
0: एक भी डोनेशन नहीं हुआ था, तो लोगों को इसके बारे में बड़ा संशय था कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था।
1: डॉक्टर वैश, इतनी सब जानकारी के लिए शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम सबको दिमाग की चोटों से बचने के लिए पूरा ख्याल रखना चाहिए और हर वक्त हेलमेट सीट बेल्ट पहननी चाहिए और सावधान रहना चाहिए जब कोई सर पर चोट लग जाए। आज के लिए इतना ही, बैक टू यू पायल।
2: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मानव रचना 107.8 पर श्रोताओं हाजिर हूँ मैं सरिता आपके साथ और लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। वो सदबहर नग में रेट्रो गाने जो वाक्य में ही मोती बन चुके हैं और लेकर आते हैं हम हर शनिवार शाम 8 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हर हफ्ते एक नया थीम, एक नया टॉपिक होता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारे पिछले कार्यक्रम से ही लिया है, क्योंकि पिछले एपिसोड में बहुत सारे गाने हमारे छूट गए थे टॉपिक सुनो सुनिए सुना के साथ। तो चलिए आज इसी टॉपिक को लेकर हम बढ़ेंगे अपने इस सफर पर, लेकिन पहले स्वागत करूंगी अपने कम्युनिटी मेंबर्स का। मेरे साथ स्टूडियो में हैं शैलेंद्र नांगे जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। और मेरे साथ हैं प्रदीप गर्ग पराग जी भी। सर, आपका भी स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच सरिता जी, सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। तो दोस्तों, चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, टॉपिक सुन सुनो सुना सुनिए। तो आज का पहला गाना कौन सा है, हमें जानकारी दे रहे हैं प्रदीप जी।
3: जी, ये फिल्म है हम साया, 1968 की फिल्म है। जय मुखर्जी और शमला टैगोर नायक नायिका के रूप में हैं
1: जी,
3: और इन्हीं पर पिक्चराइज है ये सॉन्ग। रफी साहब का गाया हुआ है, शैबान रिजवी के बोल हैं, ओपी नैयर का मधुर संगीत है
1: जी।
3: दिल

0: जी प्रदीप जी, बहुत ही लोकप्रिय गीत के साथ आपने आज के प्रोग्राम का आगाज कर दिया और बहुत ही अच्छे से आपने इस गीत को पेश किया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच
2: जी। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारे गाने से आगाज हो चुका है आज के इस कार्यक्रम का। आप इसे ओरिजिनल ट्रैक पर एंजॉय कीजिए हमसाया फिल्म से। और दोस्तों, अपने रिक्वेस्ट भी हमें भेज दीजिए अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, रेट्रो गाना जिसके मुखड़े में सुन सुनो सुना इस तरह का कोई शब्द आया हो, तो आप हमें 8010781078 पर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज या कॉल करके बता सकते हैं। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, फील गुड।

0: स्वागत है इस बहुत ही प्यारे नगमे के बाद। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। और दोस्तों, ये बहुत ही सदाबहार प्यारे रेट्रो गाने जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हर शनिवार को, और आज का टॉपिक वही जो पिछले हफ्ते भी था, सुन सुनो सुनिए। तो चलिए अब एक बहुत ही बेहतरीन नगमे के लिए चलते हैं नांगिया जी के पास।
1: जी सरिता जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गीत को मैं लेकर आया हूँ, इस गीत को गाया है सचिन देव बर्मन ने। सचिन देव बर्मन एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार हुए हैं, लेकिन उनको गाने का भी शौक था और उनकी आवाज इतनी डिफरेंट और इतनी मार्मिक आवाज थी उनकी कि उसे कॉपी करना तो भाई बहुत मुश्किल है। अब गीत मैं लेकर आया हूँ तो फिर भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना कामयाब हो पाऊंगा। फिल्म है सुजाता 1959। पर्दे पर हैं नूतन, सुनील दत्त, शशिकला, सुलोचना, ललिता पवार, तरुण बोस, असित सेन व अन्य कलाकार। सचिन देव बर्मन का ही संगीत है, सचिन देव बर्मन की ही अपनी आवाज में ये गीत है और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।
0: क्या बात है।
1: सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे,

0: सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे।
1: बहुत खूब,
2: बहुत ही कठिन गीत, बहुत ही मार्मिक गीत और अलग से लीक से हटकर वो गीत गाते थे और बहुत ही उनके सारे ही गीत गाए हुए कामयाब हुए हैं। और नंगे साहब, आपने इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उनके सुर में सुर मिलाया है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: जी। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही डिफिकल्ट ये सॉन्ग, सुन मेरे बंधु रे। आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर, और जल्दी से लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। और भी बहुत सारे गानों का सफर आज तय करेंगे हम इसी टॉपिक के साथ। सुन सुनो सुनिए। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, फील गुड।

0: इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। और आज का टॉपिक है सुन सुनो सुनिए। बहुत ही प्यारे गाने हैं दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए। अब जो अगला गाना है वो हम लेने वाले हैं फिल्म सावन बाधो से। तो इस फिल्म की जानकारी और गाने की जानकारी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास।
1: जी, सावन भादो फिल्म है 1970 की और नवीन निश्चल और रेखा दोनों का ही डेब्यू हुआ था इस फिल्म से। आशा और रफी का गाया हुआ डुएट सॉन्ग है। छेड़छाड़ भरा, नोकझोंक भरा, बहुत ही चुलबुला सा ये गीत है। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है और सोनिक ओमी का मधुर संगीत है। सोनिक और ओमी दो संगीतकार हुए हैं जिसमें चाचा और भतीजा की जोड़ी थी
0: जी।
1: और ये डुएट सॉन्ग है तो सरिता जी भी इसमें मेरा साथ देंगी।
2: सुन सुन सुन

0: इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और नांगे जी प्रदीप जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और आज जो टॉपिक है वो है सुन सुनो सुनिए। बहुत ही प्यारे गाने हैं, पिछले एपिसोड में भी सुनाए थे और आज भी इसी सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब जिस गाने की रिक्वेस्ट मुझे आई है वो मुझे मैसेज किया है नीतू जी ने NIT5 से और वो गाना सुनना चाहती हैं सुनो सजना पपीहे में। बहुत ही प्यारा गाना है, फिल्म आए दिन बहार के का टाइटल सॉन्ग है और जानकारी बाकी दे देते हैं हमें नांगे जी।
1: जी, फिल्म आए दिन बहार के, ये फिल्म आई 1966 में। पर्दे पर फिल्म में काम करने वाले कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, नाजिमा सुलोचना, बलराज साहनी व अन्य साथी कलाकार। आवाज़ बहुत ही मधुर हमारी सुर कोकिला लता मंगेशकर दीदी की है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मी प्यारे का मधुर संगीत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सरिता जी इस गीत की अपने मधुर स्वर में शुरुआत करें।
0: जी।

0: सजना।
1: बहुत ही मधुरता से आप दोनों ने गाया ये गीत।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: जी तो दोस्तों आए दिन बहार के बहुत ही प्यारा ये गाना सुनो सजना पपीहे ने, आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती और आज बहुत ही प्यारे गाने लेकर आए हैं टॉपिक सुन सुनो सुनिए के साथ। फील गुड
1: फील लाइफ।

0: जी तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना सुनो सजना पपी है ने एंजॉय किया अभी हमने ओरिजिनल ट्रैक पर, और लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम की जबन गए मोती में। सुनो, सुनिए, सुना, सुन, इस तरह का शब्द आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिनके मुखड़े में शब्द आए हैं रेट्रो गाने। बहुत ही प्यारे मधुर ये गाने हैं और हर तरीके के, हर मूड के गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं एक वैरायटी की जो आप सभी एंजॉय कर सकें। तो चलिए, आप एक और बहुत ही प्यारा गाना लेकर आए हैं हम, जिसके लिए हम चलते हैं प्रदीप जी के पास।
1: जी, फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, 1975 की फिल्म है
0: जी,
1: और

0: एक राजा होता है,
1: एक रानी होती है,
0: कभी दोनों मिलते हैं, कभी दोनों बिछड़ते हैं।
1: प्रेम कहानी में एक लड़का

0: प्रदीप जी, सरिता जी, बहुत अच्छे से आपने गीत को पेश किया।
1: थैंक यू
2: जी। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना, आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर और जल्दी से लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। और कुछ गानों का सफर आज तय करेंगे और रिक्वेस्ट भी आ गई है मेरे पास, उसे भी पूरा करेंगे, लेकिन इस गाने के बाद फिलहाल आप इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड।

0: और इसी बहुत मधुर गीत के बाद एक और बहुत ही मधुर गीत हम लेकर आए हैं श्रोताओं, सुनिएगा। फिल्म है आपकी कसम 1974, पर्दे पर एक बार फिर से राजेश खन्ना और मुमताज
1: जी।
0: अन्य कलाकार हैं रहमान, संजीव कुमार, एके हंगल, रंजीत, केष्टो मुखर्जी व अन्य कलाकार। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि हमारी पिछली फिल्म प्रेम कहानी में एक लव ट्रायंगल था, तो इसी तरह से इस फिल्म में भी हीरो राजेश खन्ना को अपने को एक्टर संजीव कुमार के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ डाउट हो गए थे, जिसके बाद ये फिल्म बनी आपकी कसम
1: जी।
0: सुना
1: कहो,
0: कहा
1: सुना,
0: कुछ हुआ क्या?
1: अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं।
0: चली
1: हवा,
0: झुकी
1: घटा,
0: कुछ हुआ क्या?
1: अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं।

0: हाँ सुना
1: कुछ हुआ क्या?
0: अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं।
1: अरे चली
0: हवा
1: झुकी
0: घटा,
1: कुछ हुआ क्या?
0: जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है।
2: बिल्कुल, जरा सा कुछ हुआ तो है। और ये जो हुआ है, ये श्रोताओं ने बहुत पसंद किया है आप दोनों की आवाज को। ऐसे ही आप लोग गीत गाते रहिए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी दोस्तों, कोशिश और स्टूडियो में बैठकर अपने कमेटी मेंबर्स के साथ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाना। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप भी हमारे रेडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप में कोई प्रतिभा है गाने की और कुछ लिखने की, पोएम, कविताएं, स्टोरी, आप कुछ भी आप में हुनर है, कला है, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आइए। रेडियो मानवश्रा के माध्यम से अपनी आवाज़ ज़रूर पूरे फरीदाबाद को सुनाइए, लिसनर्स को सुनाइए। और ये कार्यक्रम फ़िलहाल आपके लिए बहुत सालों से हम लेकर आ रहे हैं और इन गानों को गाते हुए इन्जॉय करते हैं हम। तो फिलहाल आप भी इन्जॉय कीजिए गाना ओरिजिनल ट्रैक पर और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड,
0: फील लाइव।

0: स्वागत है दोस्तों इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों बहुत ही प्यारे गाने आज हम सुन रहे हैं सुनिए टॉपिक के साथ। और आपको सुनते हुए गाने कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइए 8010781078 पर। तो चलिए अब एक बहुत ही बेहतरीन नगमे की रिक्वेस्ट आई है और धर्मेंद्र जी का और रेखा जी का ये गाना है और इस गाने की रिक्वेस्ट की है विभोर जी ने, वो ये गाना सुनना चाहते हैं फकीरा से सुन के तेरी पुकार। तो जानकारी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास।
1: जी ये फिल्म है फकीरा, 1976 की ये फिल्म है। शशि कपूर के साथ हैं सबाना आजमी और हेमलता और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये युगल गीत है। रविंद्र जैन का लिखा हुआ है और रविंद्र जैन का ही मधुर संगीत है। बहुत ही मोटिवेशनल गीत है।

0: तो दोस्तों इस बहुत ही बेहतर नगमे के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। और अब एक बहुत ही प्यारे गाने की रिक्वेस्ट आई है, मेरे पास मैसेज आया है मेरे पास कमलेश जी का, और कमलेश जी गाना सुनना चाहती है राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। तो दोस्तों सुनो सुनो से शुरू होता है गाना, तो इस गाने की जानकारी लेते हैं प्रदीप जी से और सुनते हैं नांगे जी से।
1: जी ये फिल्म है कहानी किस्मत की, 1973 की ये फिल्म है और इसमें कहानी किस्मत की तो ट्रिपल के है, तो ये अर्जुन हिंगोरानी साहब की फिल्म है। किशोर कुमार और रेखा ने इस गीत को गाया है। फिल्म अभिनेत्री रेखा और धर्मेंद्र पर ही पिक्चराइज है ये सॉन्ग, और इस गीत को गाएंगे नांगिया जी और सरिता जी।
0: जी
2: सुनो सुनो ओ भाइयों बहनों, ओ मगन भाई छगन भाई, राम लो रे दाम लो, ओ राघोबा ओ ढोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह ओ जर्नल सिंह, ओ तुसी भी सुनो पापे, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: मुझे प्यार सिखाया किसने, अरे इसने। मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने। इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है। दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है। बात भी है ये असली।
0: अरे पांडुबा, वो कुड़ी फंसली।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से। मैं भी इसे चोरी छिपे चाहता हूँ तब से। दिल में ये मेरे बस गई।
0: एक कुड़ी फंस गई।
3: आप दोनों ने बहुत ही चुलबुलेपन से ये गीत गाया, जैसे कि इस गीत का तकाजा है, और बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपने ये पेश किया।
4: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: तो दोस्तों, इस गाने को आप एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर, और लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। बस एक और अंतिम गाना आज आपको सुनाएंगे, फिर लेंगे आपसे विदा। लेकिन फिलहाल ये गाना आप एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड,
5: फील लाइव।
6: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों सदाबहार रंग में रेट्रो गाने जिनकी चमक कभी कम हो ही नहीं सकती। मैं हर बार ये कहती हूँ, हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ और बाकी

0: गाने बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही प्यारे गाने हैं। तो अब जाने का वक्त जो है होने ही वाला है, तो एक अंतिम गाना आपको सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गाना। एक बार फिर से रेखा हमारे साथ, इसमें अभी हमने गाना सुना धर्मेंद्र और रेखा जी के साथ, अब ये गाना भी रेखा जी के साथ। जानकारी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास।
1: जी, ये फिल्म है खूबसूरत, 1980 की ये फिल्म है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत रोल निभाया था रेखा ने, हास्य और कॉमिक भरा रोल था ये। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल हैं, आर डी बर्मन का मधुर संगीत है
0: जी।

बेचारी अंजू जरा पपा पास तो आ, मुंह पर दाग है चेचक के और पान चबाता है, पान चबाता है जब थोड़ी

सा होता है, डाके पड़ते हैं, आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन सुन सुन दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता।

0: पर्सन
1: जी। प्रदीप जी, सरिता जी, बहुत ही डिफिकल्ट गीत को आपने बहुत अच्छे से पेश किया
0: जी।
2: थैंक यू जी।
0: तो दोस्तों, सुन सुन सुन दीदी तेरे लिए, ये बहुत ही प्यारा सा गाना, आप इसे ओरिजिनल ट्रैक पर एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त जाने का हो ही गया है। तो अब जाने से पहले बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी नागिया जी, प्रदीप जी, आप दोनों का कि आप स्टूडियो में आए इतने बेहतरीन नगमे लेकर और हमारे श्रोताओं को सुनाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। श्रोताओं, हमें तो ये शो करने में, ये प्रोग्राम करने में बहुत ही मज़ा आया। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था और इस पर हमने दो एपिसोड आपके लिए हम लेकर आए। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले एक छोटी सी दो लाइनें, कोई नेकी ज़रूर की होगी हमने, तुम्हारा मिलना सबूत है इसका।
2: सुनो, थीम पर बहुत अच्छे गीत आए हैं, लेकिन एक गीत अभी भी रह गया। गीत तो खैर अभी बहुत रह गए हैं, लेकिन अचानक मेरे ये गीत याद आया। मेम साहब फिल्म का है, 1971 की फिल्म है, विनोद खन्ना और योगिता बाली पर पिक्चराइज्ड है। तो ये भी मैं अपने श्रोताओं को अवश्य ही सुनाना चाहूँगा। सुन

0: बात कहूं।
1: कहो जी पिया, मैं सुनती हूँ।
2: जी बहुत खूब प्रदीप जी, सरिता जी,
3: और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्रोताओं आपका और रेडियो मानव रचना की पूरी टीम का।
1: जी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे एक नया थीम, एक नया टॉपिक लेकर और बहुत ही बेहतरीन पुराने गाने रेट्रो नग में आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड,
2: फील लाइव।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ को बदला है बल्कि दूसरों के लाइफ के लिए भी मिसाल बन गए हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और आज का प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी की कहानी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले एक वर्ड याद आता है और वो वर्ड है टीचर। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ टीचर की ही बात नहीं करने वाले हैं बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो टीचर भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं और स्कॉलर भी रहे हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टीचर की जर्नी प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंच गई और उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों इसी जर्नी को हम आज के सक्सेस मंत्रा में थोड़ा और ज्यादा क्लोजली समझने वाले हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था लेकिन उनके अंदर नॉलेज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। पढ़ाई के प्रति उनकी डेडिकेशन ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिलोसफी को अपना स्पेशल एरिया बनाया और टीचिंग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो एजुकेशन को सिर्फ बुक्स और एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं समझा करते थे बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि इंसान की सोच को डेवलप करना, उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना और लाइफ को समझने के लिए रेडी करना। और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी आज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना या फिर किसी के लिए अपने पैशन को फॉलो करना। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि सक्सेस के साथ नॉलेज और कैरेक्टर भी जरूरी होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम उनकी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी हमें क्या क्या सिखाती है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या क्या सीख मिल पाती है उनकी जर्नी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम है जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी। तो सुनेंगे बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की हमारे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा में, जिनकी पूरी लाइफ ही नॉलेज और लर्निंग को जाना कि एक सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाले राधा कृष्ण जी कैसे अपनी पढ़ाई और नॉलेज के थ्रू एक अलग आइडेंटिटी बना पाए। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने या फिर एग्जाम पास करने का मीडियम नहीं था, बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करना और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना। सोचिए, आज जब हम एजुकेशन को अक्सर मार्क्स, डिग्री, जॉब या फिर करियर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये भी जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका कोई मीनिंग समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम एजुकेशन का रियल पर्पस मिस कर रहे हैं। राधा कृष्णन जी ने फिलॉसफी को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। फिलॉसफी सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। और इसी सब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि थिंकिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। उन्होंने टीचिंग को भी बहुत सीरियसली लिया। उनका मानना था कि एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम में लेसन एक्सप्लेन करने का ही नहीं होता है, बल्कि टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, उन्हें क्वेश्चंस को पूछना सिखाता है और उनके अंदर सोचने की एबिलिटी को डेवलप करता है। और दोस्तों, यही लेसन हमें आज अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और हम इसे कर सकते हैं। आज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पर एक क्लिक में थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स हमें मिल जाते हैं तुरंत में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं और उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। राधा कृष्णन जी हमें लाइफ में ये सिखाते हैं कि लर्निंग एक फिक्स्ड एज तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ या फिर जॉब मिल गई, इसका मतलब लर्निंग खत्म हो गई है ये नहीं होता है। एक्चुअली रियल लर्निंग तो उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सिंपल मंत्रा याद रखिएगा कि मार्क्स आपको एक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, नई स्किल को सीखिए, क्वेश्चंस पूछिए और अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी थिंकिंग को ओपन रखिए। क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सक्सेस ये भी है कि आप जो जानते हैं उससे अपनी और दूसरों की लाइफ को कितना बेटर बना पाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की एजुकेशन जर्नी से हमें आज का सक्सेस मंत्रा, पहला सक्सेस मंत्रा मिलता है कि लर्निंग को डेस्टिनेशन मत समझिए, उसे अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी बना लीजिए। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी सक्सेस फिलॉसफी की, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल करा है, साथ ही वो अपनी जर्नी से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और लर्निंग के बारे में जाना है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर उनकी सक्सेस का मंत्रा क्या था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर हम उनकी अचीवमेंट्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, कितने अवार्ड्स मिले, कौन सी पोजीशन मिली, कितना नाम कमाया। लेकिन असली सक्सेस को समझने के लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि उस इंसान की सोच क्या थी और उसने अपनी जर्नी को कैसे बिल्ड किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक थी कंटिन्यूस लर्निंग। वो नॉलेज को भी एक फिक्स्ड चीज़ नहीं मानते थे, उनकी थिंकिंग हमेशा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रही है। ये क्वालिटी आज के टाइम में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज की जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है तो और कंपटीशन भी है उसी के साथ। हर फील्ड में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं और स्किल्स भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम ये सोच लें कि मुझे सब आता है तो शायद हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें मैं और सीख सकता हूँ तो हमारी ग्रोथ का चांस हमेशा बना रहेगा। लेकिन उनकी लाइफ हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस भी समझाती है। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपके पास कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं करते तो पोटेंशियल का रिजल्ट नहीं मिलता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी सिंप्लिसिटी। इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने के बाद भी उनकी पर्सनैलिटी में सिंप्लिसिटी और डिग्निटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये हमें रिमाइंड देता है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि नॉलेज के साथ कैरेक्टर। जी हाँ, सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होता है, आप कितने नॉलेजेबल हैं उसके साथ ये भी मैटर करता है कि आप अपनी नॉलेज और पोजीशन का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर सक्सेस को मोस्टली ग्लैमरस वे में देखते हैं, जैसे कि बड़ी सैलरी होना, लग्जरी लाइफस्टाइल होना, अचीवमेंट्स होना, सब कुछ इंस्टेंटली विजिबल है। लेकिन किसी भी रियल सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी भी हमें ये बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, सक्सेस एक प्रोसेस है, लर्निंग का, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और कंटिन्यूसली बेटर बनने का। तो आज का सक्सेस मंत्र बहुत ही सिंपल है कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लर्निंग, डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज इस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जर्नी ये प्रूव करती है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि एक यंग स्टूडेंट जो नॉलेज और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता है और पढ़ाई भी करता है, फिर टीचिंग को अपना करियर चूज करता है और धीरे धीरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचता है कि एक दिन वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जर्नी किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रियल लाइफ जर्नी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से और फिलॉसफी के फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाकर की थी। उन्होंने डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में फिलॉसफी की पढ़ाई की और अपनी नॉलेज के थ्रू स्टूडेंट के बीच एक अलग रिस्पेक्ट अर्न किया। उनकी टीचिंग स्टाइल का फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर ही नहीं था बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए एनकरेज करना भी था। उनकी एकेडमिक रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हुई कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजियस और एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन स्कॉलर का ऑक्सफोर्ड में जाकर इंडियन फिलॉसफी और थॉट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उनकी जर्नी यही नहीं रुकी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। जी हाँ, वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने और 1952 से 1962 तक इस पोजीशन पर रहे। इसके बाद 1962 में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को भी संभाला। और अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात भी आती है कि एक टीचर और एक फिलोसोफर का देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में से एक तक पहुँचना हमें क्या बताता है। ये बताता है कि आप जिस फील्ड में सिंसियरली काम करते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आप फ्यूचर जनरेशन को शेप कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज आपकी लर्निंग कल की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं तो डेडिकेशन और नॉलेज के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी का एक और ब्यूटीफुल लेसन है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक डेस्टिनेशन से डिफाइन नहीं होने दिया बल्कि वो पहले टीचर थे, फिर फिलोसोफर थे, फिर उसके बाद स्कॉलर रहे, फिर डिप्लोमेट रहे और फिर प्रेसिडेंट बने। लेकिन हर स्टेज पर उनकी कोर स्ट्रेंथ नॉलेज और लर्निंग ही रही है। दोस्तों, हम भी लाइफ में कई बार अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टार्टिंग स्ट्रांग नहीं है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। लेकिन राधाकृष्णन जी की जर्नी हमें एक रिमाइंडर देती है कि स्टार्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन और डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक और सक्सेस मंत्रा कि अपनी करंट पोजीशन को अपनी फाइनल आइडेंटिटी मत समझिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी पॉसिबिलिटीज पर बिलीव रखिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा. और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी पर हम चल रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ, उनकी लाइफ और उनकी इंस्पायरिंग थिंकिंग के साथ. अब तक हमने उनकी एजुकेशन, सक्सेस फिलोसफी और टीचर से प्रेसिडेंट तक की जर्नी के बारे में जाना. लेकिन दोस्तों, राधाकृष्णन जी को सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से ही याद करना उनकी पर्सनैलिटी को बहुत छोटा कर देना होगा. उनकी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक थी फिलोसोफर की. अब फिलोसोफर वर्ड सुनते ही आपको शायद लगता होगा कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस या फिर डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे ना तो फिलोसफी का मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और सोसाइटी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचना. जैसे कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है. डॉक्टर राधाकृष्णन जी की थिंकिंग में एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. उनके लिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सक्सेसफुल करियर बनाना नहीं था, बल्कि ये एजुकेशन का रोल एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना था. और दोस्तों, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये थॉट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी ने नॉलेज तक पहुंचना बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और विजडम एक ही चीज़ नहीं होती. आपके फ़ोन में थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को समझना, उनका सही यूज़ करना और राइट डिसीजन लेना, ये विजडम का पार्ट होता है. इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. हर वायरल पोस्ट को सच मान लेना और हर ओपिनियन को फॉलो कर लेना या फिर सिर्फ किसी ट्रेंड का पार्ट बन जाना, क्योंकि सब कर रहे हैं, ये हेल्दी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है. राधा कृष्णन जी की फिलोसफिकल अप्रोच हमें एनकरेज करती है कि हम क्वेश्चंस को पूछें, समझें और अपनी थिंकिंग को डेवलप करें. एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, वो है कैरेक्टर. आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, स्किल्स हैं, लेकिन अगर वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस इनकम्प्लीट रह जाती है. और अगर आज हम करियर गोल को सेट करते हैं, अच्छी जॉब मिलना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, बिजनेस, पॉपुलैरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पूछना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ. ये क्वेश्चन शायद हमारी जर्नी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है. तो दोस्तों, राधा कृष्णन जी की थिंकिंग का एक और सक्सेस मंत्र कि नॉलेज आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, लेकिन राइट थिंकिंग और वैल्यूज आपको वाइज बना सकती है. और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ अरजीत सिंह आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और फिलोसफी, सक्सेस जर्नी और उनके थॉट को बहुत अच्छे से समझा, जान चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अब आते हैं उनकी लाइफ से जुड़े एक ऐसे दिन पर जिसे हम हर साल बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5th of September यानी कि टीचर्स डे की। दोस्तों, हम सब ने स्कूल या फिर कॉलेजेस में टीचर्स डे जरूर सेलिब्रेट किया होगा। कहीं स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए कार्ड बनाते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस भी होती है, तो कहीं टीचर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में 5th of September को ही ये टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका कनेक्शन है डायरेक्टली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से ही। जी हाँ, उनका जन्म 5th of September 1888 को ही हुआ था। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अपनी विश को एक्सप्रेस किया, लेकिन राधाकृष्णन जी ने अपने बर्थडे को पर्सनली सेलिब्रेट करने के बजाय सजेस्ट किया कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों, ये ही बात उनकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। जिस दिन को कोई भी इंसान अपने नाम और बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन राधाकृष्णन जी ने उस दिन को टीचर्स डे के ऑनर से सेलिब्रेट करने के लिए कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक ब्यूटीफुल थॉट भी है कि एजुकेशन और टीचर्स की इंपॉर्टेंस को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। टीचर्स हमारी लाइफ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी एक टीचर का एक सिंपल सा सेंटेंस, एक एडवाइस या फिर एक छोटा सा एनकरेजमेंट हमारी पूरी डेडिकेशन को चेंज कर सकता है। स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो टीचर ही हमें पेशेंटली उसे समझाता है। जब मार्क्स कम आते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तब एक अच्छा टीचर हमें ये याद दिलाता है कि रिजल्ट आपकी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आज के टाइम में भी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और AI ने लर्निंग को ईजी जरूर बना दिया है, लेकिन एक टीचर को स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ कर उसे गाइड करता है। उस ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू ही अलग होती है। आज स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स डे एक रिमाइंडर है कि अपने टीचर को सिर्फ एक दिन विश करना इनफ नहीं है, उनकी मेहनत को, उनकी गाइडेंस को और उनके टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टीचर रहा है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया हो और आपको बेटर बनने में हेल्प की हो, तो उन्हें एक बार जरूर याद कीजिएगा और उन्हें एक बार जरूर विश कीजिएगा और उन्हें एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। और आज का एक और सक्सेस मंत्र कि एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि वो किसी की लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में और अब वक्त है आज के एपिसोड को एक इंस्पायरिंग नोट के साथ रैप अप करने का। और आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जर्नी को बहुत अच्छे से जाना, एक टीचर को, एक फिलोसोफर को और एक स्कॉलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक के सफर को जाना। लेकिन दोस्तों, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उनकी पोजिशन ही नहीं थी बल्कि उनकी सोच, उनके वैल्यूज और उनकी लर्निंग के प्रति डेडिकेशन थी। तो चलिए उनके पांच कुछ ऐसे सिंपल से सक्सेस मंत्र है जिन्हें मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया है, पर हम दोबारा से उसे जान लेते हैं। सबसे पहला था कीप लर्निंग। लर्निंग कभी आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी लाइफ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो इसलिए क्यूरियस रहिए और नए स्किल को सीखते रहिए। दूसरा है थिंक इंडिपेंडेंटली। हर चीज को सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछिए, इन्फॉर्मेशन को समझिए और अपने ओपिनियन को खुद बनाइए। तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता लेकिन डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने में हेल्प करता है। छोटी छोटी हैबिट्स हमें फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और चौथा है कैरेक्टर और अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है जितना कि नॉलेज के साथ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। पांचवा है नेवर लिमिट योरसेल्फ। राधा कृष्णन जी की जर्नी हमें सिखाती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और लर्निंग आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे कि आपकी लाइफ का वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंट लेसन दिया हो? अगर वो आज आपके सामने होते तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें जरूर मैसेज करिएगा और उन्हें कॉल करके याद जरूर दिलाइएगा कि आपका ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो इसी थॉट के साथ आज के सक्सेस मंत्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा थॉट कि सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है बल्कि जर्नी में सीखते हुए एक बेटर इंसान बनना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और मैं ले रही हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इंस्पायर्ड और मुझे दीजिए इजाजत। और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब बहुत ही चर्चित गीत था, फिल्म थी बुलेट, चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।

0: उधर है,
1: ऊपर है,
0: नीचे है,
1: कहाँ है,
0: यहाँ है,
1: अरे यहाँ तो कोई भी
0: नहीं है,
1: कोई नहीं भाई।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये फिल्म थी 1976 बुलेट, किशोर कुमार, आशा भोसले, बाकमाल आवाज, आनंद बख्शी, आर डी बर्मन का संगीत, और देवानंद साहब क्या लग रहे थे, अब बड़े सारे देवानंद थे इस गाने में, यानी दो तीन तो आप पकड़ ही सकते हैं जब ये गाना चलेगा तो। बहरहाल गाना जो चलेगा वो चलेगा, लेकिन हाँ, आप लोगों ने कहा कि भाई आप बड़ी सारी बातें करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, बड़े सारे लेख लेके आते हैं, तो इस बार क्या है, अब इस बार तो हमारी शोले तो चलेगी, क्योंकि आप लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये शोले जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा होता जा रहा है और किताब भी बड़ी दिलचस्प है। ये जो किताब है अनुपमा चोपड़ा जी की, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, हम यहां से लाते हैं अंश, और इस बार का हमारा अध्याय होगा ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। और ये वाला जो अध्याय था ये बड़ा ही जो है गजब का था, और फिर हम बात करेंगे फिल्मी गीतों से, क्यों दूर रहे बशीर बद्र, और फिर ये जो है इंस्पायरिंग नोट मिला है हमको सेरेना विलियम्स का, जो कहती हैं कि जब लोग कहें कि आप नहीं कर सकते तब खुद पर भरोसा ज़्यादा मजबूत करें। अब ये जो बात है, हम क्या मजबूत करें और क्या ना करें, अब मुझे लग रहा है कि हम एक बात करते हैं, और आप लोगों की भी बड़ी फरमाइश रही है बड़े दिनों से जो है, वो आप लोग जो है ये कहते आए हैं कि भाई किसी एक शख्सियत के गाने जो हैं वो आप सुनाया करें। जीनत अमान के ऊपर फिल्माए गए बड़े सारे गाने थे 70s के, 80s के, मेरे दिल के बेहद करीब, भीगी भीगी रातों में, किशोर कुमार का गीत था, अजनबी थी फिल्म 1974, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आवाज बा कमाल, सुनते हैं लौटते हैं, ये जो है मैंने आपका बिल्कुल ठीक से नहीं गाया था, भीगी भीगी रातों में, गाना सुनते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ सेठ के साथ। देखिए ना, आप लोगों ने कहा कि भाई आपने बड़ी सारी चीजें शुरू करी जीनत अमान के लिए, थैंक यू वेरी मच। एंड बड़ी अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वो अपनी रिक्वेस्ट तुरंत भेज देते हैं। हमारा नंबर है 8010781078, रेडियो मारा रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और हम हैं आपके कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ। और भाई ये जो प्रोग्राम है ये सालों साल अब तो चल रहा है। मुझे तो याद आ रहा है जब मैंने ये स्टार्ट किया था, छोड़िए क्या स्टार्ट किया था, ये जो आठवां अध्याय स्टार्ट किया, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। अमजद खान की आवाज़ अजीब थी, तब तक बड़ा नहीं था, परिधि बाद में आई, लेकिन वह एक बड़े आदमी की शक्ल में था। यानी कहना का मतलब है कि अगर हम उनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं तो इसे रखते हैं परे, भाई बड़ा शक्ल का हो छोटे शक्ल का हो, कि हाँ वो बड़े नहीं हुए थे, यानी कि अभी वो उनका कैरेक्टर जो है वो अमजद खान का जो है वो आया नहीं था, और गब्बर जो है उसका उदय नहीं हुआ था, फिल्म तो अभी बन रही थी और वो भी जो है अभी मशहूर भी नहीं हुए थे, लेकिन वो बड़ी एक बड़ी शक्ल के आदमी थे। इस तरीके का जो है विवरण है, वो शायद ही कभी किसी का ध्यान नहीं जाने वाले कमरे में चले गए। ये क्या हुआ था आपको बताते हैं, लेकिन उनकी आवाज उनकी हल्की फुल्की उपस्थिति से मेल नहीं खाती थी। वो पतले तो नहीं थे, लेकिन ये खतरे से भरा समृद्ध बैरिटोन नहीं था जो दिन के खलनायक या विभिन्न टाइप के जो खलनायक होते हैं उस तरीके के लगते हों। अब अमजद की आवाज कर्कश और गायन गीत दोनों थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने अपने कुछ पुराने प्रोग्राम्स में अमजद खान का जो गाया हुआ गीत था वो भी आपको सुनाया था। जी हाँ, शतरंज के खिलाड़ी में अमजद खान साहब ने गीत भी गाया है और हमारे एक प्रोग्राम में हमने इसे सुनाया भी है। और अब हम क्या सुनाने जा रहे हैं, हम सुनाने जा रहे हैं बड़ा ही बेहतरीन गीत था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आर डी बर्मन, आशा भोसले, यादों की बारात, बड़ा ही बेहतरीन गीत था। ये नहीं बात करेंगे कि भाई किससे इंस्पायर्ड था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो तो आपने चुरा ही लिया है। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई हम बात कर रहे थे कि भाई अमजद खान जो थे उनकी आवाज़ जो थी तब तक जो है वो आई नहीं थी ना, वो इतने पॉपुलर हुए थे, तो जब वो आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये कर भी पाएंगे कि नहीं, पर रमेश को ये पसंद आया, उनकी आवाज़ जो थी वो पसंद आई। इसने गब्बर को खतरनाक जो है विंड में जो है वो तब्दील कर दिया, यानी कि भाई वो आवाज़ आदमी की तरह अप्रत्याशित था। अब ये एक खासियत थी जिसने उसे अलग कर दिया, यानी कि अमजद खान की जो आवाज़ थी अगर आप देखें, जो कर्कश और थोड़ी सी गायन गीत टाइप से मिली हुई जो आवाज़ थी वो एक यूनिक आवाज़ थी, और वो उसको जो है वो डायलॉग डिलीवरी में वो उनको अलग रखती थी। लेकिन सलीम जावेद इतने पक्के नहीं थे, एक छोटी आवाज़ वाला एक शक्तिशाली खलनायक फिल्म को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने रमेश को अमजद की आवाज़ डब करने की सलाह दी। इस सुझाव ने जो है वो भाई एक गोल कर दिया, और लगभग तुरंत कई अन्य लोगों एक ही बात कहने लग गए, बड़ी ढीली आवाज़ है, आवाज़ में कोई पंच नहीं है, वो फुसफुसाने लगे। यानी कि भाई ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं बात भी करते हैं और थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है तो भाई जो आपके आसपास वाले होते हैं वो भी बोलते हैं दम नहीं है, कर नहीं सकता है, तो ये सब बातें शुरू हो गई। जया और जिम जैसे कुछ लोगों ने अमजद के पक्ष में ज़ोरदार आवाज़ उठाई। तुम बिल्कुल गलत हो, जिम ने रमेश से कहा, तुम जो चाहे करो, ये तुम्हारी फिल्म है, लेकिन तुम उसकी आवाज़ बदलने के लिए के बाद जो है ना वो पागल हो जाओगे। रमेश ने दोनों पक्षों की बात सुनी और रहस्यमय ढंग से चुप रहे। अमजद बिखर गया था, ये उनकी मेक और ब्रेक फिल्म थी। वह सितारों की भीड़ में जो है वो बड़ा ही मायूस और अपने आप को बड़ा ही कमज़ोर महसूस करने लगा। इस तरह के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट में अपनी आवाज़ को डब करना उनके करियर को बर्बाद कर देगा। इससे पहले कि ये वास्तव में उनका करियर बंद हो जाए वो सोचने लग गए। पहले सलीम जावेद ने उन्हें फिल्म में रिप्लेस करने का सुझाव दिया था, और अब ये यानी कि पहले ही बात हो रही थी कि भाई उनको ये फिल्म में रिप्लेस कर दिया जाए, और अब ये कि भाई इनकी आवाज़ तो बड़ी जो है वो भाई बिल्कुल नहीं है, जच रही है, तो भाई इसकी जगह पे जो है वो डबिंग कर दी जाए। अमजद ने अपनी शुरुआती घबराहट को दूर करने के लिए बहुत मेहनत की थी, और कोई भी उनके प्रदर्शन को दोष नहीं दे सकता था, तो फिर भी उन्हें एक दायित्व के रूप में क्यों माना जा रहा था कि भाई ही इज़ ए लायबिलिटी। अब उनकी आवाज़ के गब्बर के लिए अनुपयुक्त होने के बारे में बड़बड़ाहट उसे इस तथ्य का एक और सबूत लग रही थी कि अब सब में कुछ भाई पर्सनल है, यानी कि समबडी इज़ बिहाइंड मी, ये बात होती भी है। ये बहुत सारी भाई आप जब काम करते हैं कहीं, आप अपने अपने प्रोफाइल में रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती भी हैं, और आपको ये शक होने लग जाता है कि भाई कोई कुछ है जो वो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन हम गड़बड़ नहीं करेंगे, हम जाएंगे, फिल्म थी, फिल्म तो मुझे याद आ रहा है शायद अजनबी थी, एक अजनबी हसीना से बड़ा ही जो है रोमांटिक सा गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ थी, फिल्माया गया था राजेश खन्ना जी पर, और 1974 की फिल्म थी। इसे सुनते हैं और फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या कर रहे थे अमजद खान साहब, और लौटते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, बड़ी सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। शोले की बात तो हो ही रही थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि फिल्मी गीतों से क्यों दूर रहे बशीर बद्र। अब हिस्से के किस्से, किस्से के हिस्से में थैंक यू वेरी मच रूमी जाफरी साहब। बीती 28 मई को ईद वाले दिन ही खबर आई कि मशहूर शायर बशीर बद्र साहब नहीं रहे। ये सुनकर दिल को गहरा धक्का लगा। ये सच है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, मगर कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके जाने पर लगता है कि इन्हें अभी नहीं जाना चाहिए था। आपको भी लगता होगा। अब मेरा ये जो लेख है, यानी कि ये जो कॉलम है, अक्सर फिल्मों से जुड़े लोगों के बारे में होता है, इसलिए आज मैं बताऊंगा कि बशीर बद्र साहब का फिल्म इंडस्ट्री में और मुझसे क्या कनेक्शन था। और ये लिख रहे हैं रूमी जाफरी साहब मेरे हिस्से किस्से, किस्से के हिस्से के लिए, थैंक यू वेरी मच। 1987 के मेरठ दंगों में जल गई थी डायरी, में शायर की लिखी कई गज़लें जल गई थी, और बशीर बद्र साहब की और जो है ये जो रूबरू हुए थे उनसे हम, इसके बारे में भी कुछ अंश जो है वो हम प्रसारित करेंगे। लेकिन हाँ, बहरहाल मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम जो है वो जाए और जो मिनाका संगीत माला और हमारे जो गुरु रहे हैं उनके जो है वो प्रोग्राम के कुछ अंश लेके आए और कुछ इंटरव्यूज लेके आए। तब तक मैं खंगालता हूँ कि कौन सा गीत सुनाऊँ, क्या गाऊँ। भाई ये तो बड़ी शायराना टाइप की बात हो गई। ये अंश सुनते हैं और लौटते हैं।
1: तो आइए आइए बहनों भाइयों, शुरू करें 1980 की सालाना गीतमाला की संगीत सीढ़ी के दूसरे हिस्से का हाल। और साल नंबर 14 पर उभर आया था म्यूजिकल हिट फिल्म सुहाग का ये गीत, जो आजकल तो न जाने कितने लाखों बेघर लोग गाते होंगे, मगर उस गीत में आशा भोसले के साथ बोलती हुई आवाज थी फिल्मी दुनिया के लाडले प्यारे हीरो शशि कपूर की।
2: कहाँ ले जाऊँ, कहाँ जाना है, अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है।

0: भाई वहां तो शशि कपूर सिर्फ गीत में बोले थे घर के बारे में, मगर अब उनकी आवाज मेरे एक पुराने इंटरव्यू से बोलेगी उनके अपने असली बचपन के बारे में, यानी उनके पृथ्वी थिएटर्स या फिल्मों के जमाने से भी बहुत पहले का हाल।
1: एक साल की उम्र में बंबई आ गया, यहाँ पढ़ा डॉन बॉस्को हाई स्कूल में, किंग सर्कल में रहते थे, मटुंगा रहते थे, खालसा कॉलेज के पास, बड़ा मजा आता था, खूब मैदान थे, क्रिकेट खूब खेलते थे। और 6 साल की उम्र में सबसे पहली पिक्चर मैंने देखी, उस पिक्चर का नाम था सिकंदर। तो ये खुशकिस्मती थी मेरी कि पहली पिक्चर जो मैंने देखी बहुत अच्छी लगी। स्कूल डेज में मुझे याद है लास्ट बेंच पे बिठाया जाता था मुझे, क्योंकि काफी डफर था मैं, पढ़ाई में ज्यादा शौक नहीं था, स्पोर्ट्स में ज्यादा शौक था, ड्रामेटिक्स में ज्यादा शौक था। लास्ट क्लास संस्कृत की होती थी जो कि फारूक इंजीनियर और शशि कपूर बंक करके जाते थे। फारूक इंजीनियर ब्रेबन स्टेडियम चला जाता था अपनी ट्रेनिंग के लिए और मैं अरोरा सिनेमा में जाके मैटिनी देखा करता था अपनी ट्रेनिंग के लिए।
0: और फिर तो भाई फारूक इंजीनियर ने क्रिकेट की दुनिया में

0: झंडे गाड़े और शशि कपूर ने स्टेज और फिल्मों में।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और ये जो आपने अंश सुना बिना का संगीत माला के जो अंश थे वो, और जो वो इंटरव्यूज थे लाजवाब थे, उसमें हम आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो वहीं रुक गए हैं। बड़े ही दिलकश और बड़े ही जो है वो आमीन सायनी साहब की आवाज़ और वैसे ही जानदार इंटरव्यूज, और ऐसे अंश हम और लाते रहेंगे। आप लोगों की फरमाइश भी रही थी, लेकिन ये जो इंस्पायरिंग नोट था ये कहता है, सरीना विलियम्स कहती हैं कि कई बार हम उस चीज़ से दूर जा रहे होते हैं जिसे हम दिल से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी यात्रा खत्म हो रही है। मैं रिटायरमेंट शब्द को कभी पसंद नहीं कर पाई। मुझे लगता है ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, हम बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। और इसी बात पर मुझे याद आ रहा है, बड़े हम क्या करते हैं अपनी तो जैसे तैसे, किशोर कुमार लावारिस, बड़ा ही बेहतरीन गीत था अमिताभ बच्चन साहब का डपली वाला सॉन्ग। और जो जिस तरीके से उन्होंने ये जो डिस्को टाइप आइटम जो है वो पेश किया था, अब बहुत ही बढ़िया था। इसे सुनते हैं, लौटते हैं, 80s का ज़माना था और रेट्रो नॉट आउट है तो क्या बात है। सुनते हैं और लौटते हैं, अपनी तो जैसे तैसे।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई आप लोगों ने कहा कि शोले शोले, हाँ जी बिल्कुल शोले की बात तो हम करेंगे ही, क्योंकि वहाँ तो अमजद खान साहब निराश हो गए थे। वो ये कह रहे थे कि भाई मेरी आवाज़ जो है वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, ऐसा कहा जा रहा है, डबिंग की बात हो रही है। पहले तो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात हो रही थी, बड़ी मुश्किलों से जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो इस क्षेत्र में उतारा था। अब लोग ये कहने लग गए हैं कि भाई ये बात होने लगी कि आवाज़ में दम नहीं है। अब वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि कुछ लोग उनके करियर को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भाई, इस तरह के विचार तो आते ही हैं। अंतिम निर्णय जाहिर है रमेश का होना था। अब वह अपनी जो है वो अंदर की भावना के साथ जो है वो उलझे हुए थे। अब अमजद खुद गब्बर के लिए डब करते थे, लेकिन शोले की रिलीज के दिन तक संदेह करने वालों ने अपनी आपत्ति जताना जो है वो जारी रखा था। अब ये देखिए ना किस तरीके से लड़ रहे थे अमजद खान साहब। सो अंतिम विडम्बना यह थी कि रिलीज के बाद जिस आवाज़ ने लगभग इसे स्क्रीन पर नहीं बनाया, उसने हजारों रिकॉर्ड बेचे। यानी कि आपको अगर याद होगा तो शोले के जो डायलॉग्स के रिकॉर्ड्स थे, पॉलीग्राम ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद पॉलीग्राम ही थी, पॉलीग्राम के इतने रिकॉर्ड जो है वो बिके थे सिर्फ डायलॉग्स, और गब्बर सिंह के डायलॉग्स थे उसमें। अब जो है वो इस तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई लोग विश्वास नहीं करते हैं आपको, जो लगता है कि शायद अब तो भाई मेरा करियर ख़त्म, और लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है, और ऐसा भी हुआ था। रमेश का अपने अभिनेताओं के साथ अंतरंग संबंध था, वे उनके मनोविज्ञान को समझते थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य थी, और ये होनी भी चाहिए, हम सबकी भी होनी चाहिए। मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ दैट वी शुड ऑल हैव। वो अडिग थे, वो शायद ही कभी घबराए या अपना आपा खोया उन्होंने। उनके शांत रवैया ने उन्हें सेट पर और बाहर दोनों जगह अपने अभिनेताओं से अनुकरणीय काम निकलवाने में मदद की, और उनका धैर्य सिर्फ सितारों के लिए आरक्षित नहीं था, यहाँ तक कि एक लाइन के अभिनेताओं के साथ भी जो है वो कलाकारों जैसा व्यवहार किया जाता था। यानी कि जो बी लाइन और सी लाइन होती है, से कलाकार भी होते हैं, तो भाई डबिंग करते वक्त विजू खोटे को एक लाइन सही नहीं मिली, आधी मुट्ठी ज्वार की जगह वो आधी मुट्ठी जवाहर कहता रहा। अब रमेश ने उसे ब्रेक लेने के लिए कहा। विजू कुछ मिनट के लिए डबिंग थिएटर से बाहर निकले, एक कप चाय पी, और आखिरकार 20वां टेक जो है वो ठीक हो गया। यानी कि आपको थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, और ये हर फील्ड में होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म मेकिंग का ही एक जो है वो ट्रेड है, यानी कि आपको इस तरीके से जो है वो अपने धैर्य को रख के और व्यवहार को रखना पड़ेगा, लेकिन ये हर तरीके के उसमें होता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं शोले की, और शोले से ज़्यादा हम जो बात कर रहे थे, हम और चीज़ों की भी बात कर रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान। बड़ी ही दिलचस्प फिल्म थी, अब मैं ना भूलूंगा, बड़ा ही बेहतरीन गीत था, जो हैप्पी नंबर था इसका, मुकेश साहब की आवाज़ में और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में था, रोटी कपड़ा और मकान। मैं ना भूलूंगा, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा कि भाई वो बशीर बद्र साहब का जो लेख था उसका क्या हुआ, तो उसका ये हुआ कि बात 60 के दशक की है जब बशीर साहब पूरे देश में इतने मशहूर नहीं हुए थे। उस दौर की ख्यात अभिनेत्री मीना कुमारी जी को शायरी का बहुत शौक था और वो स्वयं भी एक अच्छी शायरा थी। किसी ने उन्हें बशीर साहब का एक शेर सुनाया जो उन्हें बहुत पसंद आया, मगर सुनने वाले ने शायर का नाम नहीं बताया। अब मीना कुमारी जी की आदत थी कि उन्हें जो भी शेर अच्छा लगता उसे वे अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। जब उन्होंने एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया तो उसमें छपी अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने वही शेर लिख दिया, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब मीना जी के जरिए यह शेर पूरे देश में मशहूर हो गया और तब बशीर साहब पहली बार दुनिया की नज़रों में आए। और हमें जो याद आ रहा है कि भाई नज़रों में आना है और नज़रों में नहीं भी आना है तो और बड़ा ही जो है वो जो है दिल को सुकून देने वाला बैक टू बैक हो गया ये, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान हाय हाय ये मजबूरी। आज सुनते हैं, लौटते हैं लता मंगेशकर, बड़ा ही दिलकश गीत था, अपने टाइम की ट्रेंड सेटिंग मूवी थी, 1970 से 75 के बीच में थी। आप लोग मुझे ज़रूर लिखें कि ये कौन सा साल था, मनोज कुमार साहब ने बनाई थी, मनोज साहब कृत, शशि कपूर, जीना तमान, ढेर सारे कलाकार थे इसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और भाई जो संगीत था वो तो लाजवाब था ही। इसे सुनते हैं हाय हाय ये मजबूरी और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठ और आप मुझे सुन रहे हैं मानव रचना रेडियो 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ। अब क्या करें, बड़े सारे लेख खोल दिए हमने, बड़ी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। और ख़त्म क्यों हो, अब ये जो इंस्पायरिंग नोट था इस पर भी चलते हैं, इस पर बढ़ते हैं। तो भाई सेरेना विलियम्स कहती हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी टेनिस के इर्द गिर्द घूमती रही। मेरे पिता कहते हैं कि मैंने 3 साल की उम्र में पहली बार रैकेट पकड़ा था, लेकिन मुझे लगता है मेरा रिश्ता टेनिस से इससे भी पहले शुरू हो गया था। बचपन से ही मेरे अंदर एक बात बहुत गहरी थी जो मैं भी करती थी, उसे सबसे बेहतर करना चाहती थी। मुझे याद है कि मैं स्कूल जाने से पहले वर्णमाला लिखना सीख

रही थी। एक दिन मैं अंग्रेजी का ए बिल्कुल सही नहीं लिख पाई। मैं इतनी परेशान हो गई कि रात भर रोती रही, बार बार उसे मिटाती फिर लिखती। मेरी बहनें सो गई थीं, लेकिन मैं जाग रही थी। मुझे तब तक चैन नहीं मिला जब तक मैंने उसे सही नहीं कर दिया। अब शायद वहीं से मेरे भीतर उत्कृष्टता की तलाश शुरू हुई। अब ये कहती हैं कि कई बार मुझे बताया गया कि मेरी सीमाएं क्या हैं, लेकिन मैंने एक बात सीखी कि दूसरों के संदेह को अपनी ताकत में बदलना है। भाई बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन और ये बात भी दूसरी भी सही है कि घड़ी बिल्कुल साथ नहीं दे रही। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर यही है कि भाई अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। और जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। बड़ा ही दिलकश गीत था, फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा, फूलों का तारों का सबका कहना है, किशोर कुमार की आवाज़ में था। बड़ा ही स्वीट साउंडिंग सा ये गीत था। इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं, आपका इंतज़ार करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। और भाई एक 5 तरीके होते हैं जो कि ईमेल पर कम समय खर्च करने के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि ईमेल को घंटे में एक बार ही चेक करें, एक बार पढ़कर इनबॉक्स से हटाएं, फोल्डर्स की जगह सर्च का उपयोग करें, 2 फोल्डर रखें, शॉर्टकट का उपयोग करें, अनावश्यक ईमेल की जगह अलग से जो है वो उसको प्रोसेस ना करें। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप क्या करें, आप हमारा इंतज़ार करें। जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, हम कहते हैं स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए, अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नए संस्करण के साथ फिर आएंगे। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है इस गीत के साथ, फूलों का तारों का सबका कहना है। करोड़ों हजारों में हमारे लिसनर्स हैं और इसे सुनते हैं और लौटते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा चाहता है आपका ये होस्ट और दोस्त अनिल सेठ। धन्यवाद।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good evening, namaskar, sat shri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum doston, main hu RJ Sagar, aaj ka hu lekar ke show Satyamev Jayate, Jai Hind, Jai Bharat. ये शो रेडियो मानव रचना का एक स्पेशल वर्टिकल आप इसको बोल सकते हैं. हमारा मोटिव होता है कि हर बार यहाँ पर अपने एपिसोड में एक हम टॉपिक लेकर के आते हैं, उसको डिस्कस इस तरीके से किया जाता है कि आपको पता लगे एग्जैक्टली कि हमारे भारत में कानून और संविधान आपको क्या क्या अधिकार जो है वो प्रोवाइड करते हैं. आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वुमेन्स राइट्स इन इंडिया, और उसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर शहरयार प्रोफेसर हैं एट स्कूल ऑफ लॉ मानव रचना यूनिवर्सिटी. बहुत सारी बातें हम सर के साथ करने वाले हैं, बट एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर शहरयार. हाय सर, वेलकम टू आवर शो.
2: थैंक यू सो मच, इट इज गुड टू बी ऑन द शो.
1: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर. मैं सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा अपने शो को. आई वुड लाइक टू नो अबाउट द वुमेन्स राइट्स इन इंडिया. व्हाट एग्जैक्टली डज द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी अ वुमेन?
2: We have a separate provisions for various provisions in the Constitution of India, which gives special rights to the women. Though we have the right of equality, Article 14 specifically says that we have the freedom of equality. But within that, a reasonable classification can be done for the women and as well as the children. So that is allowed even in Article 14 also, and it is even allowed in Article 15, 16. And there are various other provisions jahan par women ke rights ko enforce karne ke liye mechanism, legal mechanism exists karta hai. So Constitution is very clear about giving special status to women, not just treating them equally because they have been deprived of their rights for a long period of a time. So when Constitution came into picture, it created right of equality with special privileges to the women also.
1: All right, so amazing. भारत में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं तो फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से कानून हैं, और मैं मेजर लीगल प्रोटेक्शंस की बात यहां पर करना चाहूंगा.
2: देखिए, हम अगर सबसे पहले कोई भी समाज होता है वो घर से शुरू होता है.
1: बिल्कुल.
2: अगर हम घर की बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो कानून है वो वुमेन की सेफ्टी के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, 2005 में बनाया गया था. एंड व्हेन आई से वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सिर्फ वाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, वाइफ्स अगेंस्ट द हस्बैंड और वाइफ्स अगेंस्ट द मदर इन लॉ और एनीबडी एल्स. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हैज़ लार्जर इम्प्लीकेशन. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द वाइफ्स, इट्स अबाउट एनी वुमेन हु इज़ लिविंग इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप. It includes sisters also, it includes daughters also, it includes mothers also. हाँ, वो एक अलग बात है कि इतना exercise नहीं कर पाते हैं, but अगर father अपनी बेटी के साथ में अगर violence कर रहा है, जो कि definition है domestic violence act में, या भाई अपनी बहन के साथ में violence कर रहा है, चाहे वो property को लेकर के हो, चाहे वो किसी और तरीके की बात हो, तो the woman can go to the court of law under domestic violence act. ये घर के अंदर की चीज़ है. घर के बाहर में अगर आप देखें तो जितने भी सारे जो laws हैं, चाहे वो criminal law हो, चाहे वो और जो provisions हैं वो भी लगते हैं. प्लस वी डू हैव स्पेसिफिक प्रोविजन विच आर जस्ट फॉर द वुमेन. फॉर एग्जाम्पल, क्रुएल्टी जो आपका BNS में भी है, पहले IPC में हुआ करता था. क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस विच इज अगेंस्ट मैन ओनली. दिस इज अ राइट विच इज जस्ट फॉर द वुमेन. वी ऑल्सो हैव डाउरी प्रोहिबिशन लॉज टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी एज वेल एज इन द फैमिली. तो वी हैव टू मैनी लॉज एज फार एज प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन इज कंसर्न. क्रिमिनल लॉ खासतौर पर, सिविल लॉज अगेंस्ट, देर आर वेरियस प्रोविजन्स इन हिंदू मैरिज एक्ट ऑल्सो, हिंदू सक्सेशन लॉ ऑल्सो. देर आर मैनी लॉज जहाँ पे वुमेन को सिविल सोसाइटी में रिकोगनाइज करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बने हुए हैं. सो वी हैव एम्पल लॉज एज फार एज लॉज आर कंसर्न, द लॉज आर देयर.
1: ओके, आपने ये वर्ड यूज़ करा है डोमेस्टिक वायलेंस. इसको बहुत बार समझा जाता है सिर्फ फिजिकली मारपीट करना, सिर्फ उसी को डोमेस्टिक वायलेंस समझा जाता है. लेकिन कानून की क्या डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस?
2: डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक अगेन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब भी हम वायलेंस सुनते हैं तो हमारे जहन में हमेशा फिजिकल वायलेंस ही आ रहा होता है. लेकिन वो वायलेंस जो कि बिसाइड्स फिजिकल वायलेंस है, दैट हैज़ ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने 5 तरीके के वायलेंस को वायलेंस बोला है, जिसमें एक है फिजिकल वायलेंस. उसके अलावा मेंटल टॉर्चर भी होता है, इकोनॉमिक वायलेंस है, वर्बल वायलेंस है, है, इमोशनल वायलेंस है, ये चार पांच तरीके के वायलेंस हैं जो कि कवर्ड हैं। तो अगर कोई इंसान किसी को इकोनॉमिकली भी डिप्राइव कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वायलेंस। अगर वो किसी को टॉर्चर कर रहा है फिजिकली या मेंटली, वो भी वायलेंस है। वर्बल एब्यूज़ कर रहा है, वो भी वायलेंस है। तो देर आर टू मैनी कैटेगरीज ऑफ द वायलेंस विच कवर्स एक्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ एज फार एज वुमेन आर कंसर्न। तो वो तकरीबन इफ़ द वुमेन इज फीलिंग अनसेफ और इनसिक्योर्ड because of any reason whatsoever, of course it should be a potent reason, then the laws are there to protect that.
1: All right, one more important question is ki there is a misconception ki violence ki jab hum baat kar rahe hain yahan par, so अमूमन ये होता है कि आपके ससुराल में एक महिला के वहाँ पर समझा जाता है, बट ये तो आपके मैटरनल हाउस में भी हो सकता है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो आपके अपने घर से शुरू हो सकता है। अगर आप अपनी मदर के साथ में वायलेंस कर रहे हैं तो, आप अपनी बहन के साथ में वायलेंस कर रहे हैं तो, एंड अपनी बेटी के साथ वायलेंस कर रहे हैं तो, तीनों ही सिचुएशंस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ वाइफ्स के लिए आया है, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर यूज़ वाइफ्स कर रही होती हैं, बट जस्ट बिकॉज द थिंग इज़ नॉट यूज्ड इट डज़ नॉट मीन इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। लॉ एग्जिस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टर्स, मदर्स एज वेल एज द डॉटर्स ऑल्सो।
1: ओके, अगर एक लड़की को एक उसके मैट्रिमोनियल हाउस से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, क्या लीगल प्रोटेक्शन है उसके लिए कुछ?
2: यस, बिल्कुल। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट खुद अपने आप में ही कहता है कि अगर लड़की, अगर शादीशुदा लड़की है, अगर वो अपने घर में रह रही होती है तो वो कोर्ट में जा करके रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ला सकती है, वो आपके रेसिडेंस ऑर्डर्स भी ला सकती है, जिसमें इनफैक्ट अगर यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर जो राइट लॉ में दिया गया वो ये है कि अगर लड़की चाहे तो वो अपने ससुराल वालों के घर में रह सकती है, और ये रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट से कि ससुराल वाले उस घर को छोड़ के चले जाएं। तो ये तक भी लॉ है, एग्जिस्ट करता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजंस है, रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरे पति को बोलिए कि वो यहाँ से निकल जाए, मैं इस घर में रहूँगी जो मेरा मैट्रिमोनियल होम है। वही बात है कि हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पता नहीं होता लॉ का जो हमारा अवेयरनेस है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, एंड दैट्स वाई व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ लॉट ऑफ मिसट्रीटमेंट टू द वुमेन ऑल्सो। तो मैं तो इस लॉ के इस मंच के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपने मैटरनल होम में या पैटर्नल होम में ही आपको जगह मिलेगी, आपको अपने मैट्रिमोनियल होम में भी जगह मिल सकती है। आप ये भी कह सकती हैं कि मेरे मैट्रिमोनियल होम में, फॉर एग्जांपल, किसी का दो तीन फ्लोर्स के फ्लैट्स हैं, आप ये तक कह सकती हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहूँगा, सेकेंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर कोई और रहेगा, मेरे फ्लोर पर कोई ना आए। या फिर आप ये भी कह सकती हैं, पोर्शन ऑफ द हाउस बिलोंग्स टू मी, नोबडी शुड बी कमिंग इन माई पोर्शन, और टू अ लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट यू कैन आस्क that everybody should be removed from that particular place, I should be allowed to live in this. तो ये rights हैं, provided वो depend करता है कि किस level पे cruelty हुई, जज को आपको present करना पड़ेगा अपना case, and if the court find fits कि हाँ the husband should be asked to leave, the vacate the premises, then of course the order can be passed.
1: All right, so amazing. उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर जितनी हमने बात करी डॉक्टर शहरयार से अभी तक, बेसिक ओवरव्यू हमने यहाँ पर टच अप करने की कोशिश करी है, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आई चार चीज़ें। अच्छा लगना सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये मैं ये बोलूंगा कि महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है तो ये बात महिलाओं को पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस शो। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद विल कंटिन्यू द शो। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, मैं हूं आरजे सागर, शो सत्यमेव।

0: अगेन वेलकम बैक। मैं हूं सागर। शो चल रहा है सत्य में विजयते और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन्स राइट्स की, भारत में क्या राइट्स हैं महिलाओं के, और उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट यहां पर हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार। और अभी तक हमने एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करी है, बेसिक चीज़ें क्या हैं इसमें। सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि मानकर चलिए एक महिला है जिसकी शादी हो गई है, अब उनके साथ अब्यूजिव बिहेवियर जो है उनके इन-लॉज का या हस्बैंड का हो रहा है, लेकिन वो कुछ अर्न नहीं करती हैं, उनकी कोई आमदनी नहीं है और उन लोगों ने खर्चा देना बंद कर दिया है, इस केस में क्या होगा, कानून कैसे नेविगेट करेगा?
1: वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। अगेन वी हैव द लॉज ऑफ मेंटेनेंस, वी हैव द लॉज जिसमें कहा गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी ये चीज़ है, अदरवाइज सेपरेट जो लॉज हैं हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी है, एंड पहले CRPC जो अब BNSS है उसमें भी प्रोविजंस हैं जिसमें वाइफ के मेंटेनेंस के राइट्स बहुत कैटेगोरिकली लिखे हुए हैं। एंड क्षमता ऑफ कोर्स मैटर्स ऑफ द हस्बैंड टू पे बैक, इफ द हस्बैंड इज अर्निंग तो इट बिकम्स द राइट ऑफ द वाइफ दैट ही शुड बी पार्टिंग अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सैलरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। तो वो देना बंद कर दे रहे हैं, ये उनकी मर्जी है, वो पैसे कहते हैं हम नहीं देंगे तो मेंटेन करें, ये उनका उत्पीड़न करने का तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर लड़की सक्षम है, उसको अपने लॉस के बारे में पता है, अपने राइट्स के बारे में पता है और उस राइट्स का वो इस्तेमाल भी करना चाहती है, अपने अधिकार को इन्फोर्स भी करना चाहती है, शी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर BNSS ऑल्सो, थ्रू BNSS ऑल्सो वो उसमें जा करके वो कह सकती हैं कि माई हस्बैंड इज अर्निंग एंड इज नॉट गिविंग मी मेंटेनेंस, कोड ऑन बींग सेटिस्फाइड दैट यस यू कैन नॉट मेंटेन योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग एंड द हस्बैंड कैन मेंटेन यू बिकॉज ही इज वर्किंग। सो जो भी मेंटेनेंस का जो प्रोविजंस होता है डिपेंडिंग अपॉन, वो कैलकुलेशन कोर्ट खुद करता है, कोई सेट रूल नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में कहीं कहीं पर अलग अलग होता है, लेकिन अभी कोई सेटल प्रिंसिपल नहीं है कि हाँ इतना पैसा मिलेगा 100%। लेकिन पैसा मिलेगा, मेंटेनेंस होता है वो मंथली भी हो सकता है, वो कभी CRPC BNSS में मंथली दिया जाता है, अदरवाइज अगर कभी क्या कहते हैं डिवोर्स की बात पहुंचती है तो आपको लमसम अमाउंट भी मिल सकता है एलिमनी। बट हम डिवोर्स की बात ना करके रिश्ते में रहते रहते भी अगर वो उसको मेंटेन नहीं कर रहा है तो भी वाइफ कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस। नॉर्मली वुमेन डू नॉट आस्क फॉर द मेंटेनेंस, दे ऑलवेज वेट फॉर द लास्ट डे टू कम व्हेन दे थिंक ऑफ आस्किंग फॉर डिवोर्स, तब वो फिर कहती हैं कि हमें मेंटेनेंस चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक बीवी रहते हुए अगर वो मेंटेनेंस मांगना चाह रही है अपने पति से जो उसको मना किया जा रहा है और कोर्ट के पास जाती है, द कोर्ट ऑफ कोर्स विल पास द ऑर्डर। और अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो वी हैव अ सेपरेट प्रोविजन जो कहते हैं मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, यानी कि जब तक लिटिगेशन चल रहा है तब तक भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वाइल शी इज अ वाइफ, वाइल द केस इज पेंडिंग एंड आफ्टर द केस इज डिसाइडेड, इन ऑल द थ्री सिचुएशंस इफ द हस्बैंड इज कॉम्पिटेंट टू मेंटेन एंड इज चूजिंग नॉट टू मेंटेन, द वाइफ कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड गेट द ऑर्डर पास्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हरसेल्फ।
0: ओके, मेरे पास एक रियल लाइफ केस है जो अभी हाल फिलहाल जिसको मैंने देखा था। आई नो समवन, देयर इज अ फीमेल, हर एज इज 50, उनके हस्बैंड हैं वो एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, पेंशन मिलती है पति को, वाइफ एक होममेकर रही हैं, उनके बच्चे हैं 3-4, वो बाहर रहते हैं अर्न करते हैं, लेकिन अब हस्बैंड ने पेंशन में से हिस्सा देना बंद कर दिया अपनी वाइफ को फॉर नो रीजन। इस केस में क्या हो सकता है?
1: देखिए लॉ वही सिंपल है, लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वुमेन ऑफ 25 और 50, लॉ इज सेम फॉर एवरीबॉडी। लॉ में जब हम लॉ बना रहे होते हैं तो हम ये नहीं कह रहे होते हैं कि 18 से 25 साल की लड़की के इतने राइट्स हैं, 25 से 40 से कितने हैं, 40 के बाद बूढ़ी औरत है तो उसके कम राइट्स होंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एल्डरली वुमेन के साथ में और स्पेसिफिक प्रिविलेजेस और ऐड हो जाती हैं। लेकिन आप क्योंकि स्पेशल केस की बात कर रहे हैं तो यही वाली बात है कि मेरा सजेशन ये है कि लॉ है, अब क्या वो उस लॉ को इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा करके कोर्ट में एक कंप्लेंट डालना, एक पिटीशन डालना, क्या वो करना चाह रही हैं? अगर करना चाह रही हैं तो लॉ इज़ गोइंग टू सपोर्ट हर इन दैट केस ऑल्सो। प्रॉब्लम आई एम श्योर यही आ जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इंसान उस चीज़ को इन्फोर्स नहीं कराना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम अपने पति के अगेंस्ट पे जा रहे हैं सब कुछ है तो कहीं ऐसा ना हो कि समाज में हम लुक डाउन अपॉन हो जाएं, तो इसलिए कभी कभी बर्दाश्त भी किया जा रहा होता है। बट अगर गलत है तो उसको बर्दाश्त करना भी उतना ही गलत है। तो ये ड्यूटी है हस्बैंड की अपने वाइफ को मेंटेन करना, रिगार्डलेस ऑफ आप कॉम्पिटेंट। वैसे तो मेरा पर्सनल मानना गया कि आपकी कॉम्पिटेंस मैटर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर द हस्बैंड, यू शुड ऑलवेज बी मेंटेनिंग योर वाइफ। अगर आप कॉम्पिटेंट होकर के भी मेंटेन नहीं करो, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग विच यू कैन डू, दैट इज लाइक अ डिसग्रेस टू द रिलेशनशिप पर से ऑल्सो, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट थिंग। एंड इफ द वाइफ chooses to go to the court of law, the law is there to protect her, to make it very sure ki there's a इन केसेस में जब सैलरी किसी एक पर्टिकुलर जगह से आ रही होती है, इफ़ यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, तो उसमें क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे आपके पास पैसा आता है एंड ऑल. बट व्हेन यू आर जैसे एग्जांपल विच यू हैव गिवन वेयर द सैलरी इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर पेंशन और यू आर वर्किंग एट सम प्लेस एंड समबडी इज गेटिंग, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन ये तक है कि वो कोर्ट उसके एम्प्लॉयर को डायरेक्टली ऑर्डर पास कर देगा, वो कहेगा कि आप इसकी पेंशन में से या आप इनकी सैलरी में से इतना हिस्सा डायरेक्टली इसके अकाउंट में डालिए, आप वाइफ को हस्बैंड से मांगने की जरूरत ही नहीं है. तो अगर वो ये करना चाहें तो पेंशन में से ही पैसा कट के पहले उनके पास पहुंच सकता है एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट.
0: ओके, दैट कैन बी डन. इसका सिंपलेस्ट पॉसिबल प्रोसेस क्या हो सकता है?
1: सिंपल एक आपको देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर से बात करनी है, अपनी जो DIR होती है डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको हम FIR नहीं कहते हैं, उसको DIR कहते हैं, आप वो DIR फाइल कीजिए. एंड उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर सारे काम अपने आप ही करता है, आपको सिर्फ कैरी अलॉन्ग करना पड़ेगा. प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो हर पॉसिबल सजेशन जो उस वुमेन को चाहिए टू मेक इट वेरी श्योर दैट शी इज़ एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो हर सजेशन हर गाइडेंस प्रोटेक्शन ऑफिसर को देना होता है. तो इट इज जस्ट अबाउट द विलिंगनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन वेदर और नॉट शी वॉन्ट टू प्रोसीड विद दिस और नॉट. इफ शी वॉन्ट्स टू प्रोसीड द सिस्टम इज देयर टू प्रोटेक्ट एज पर लॉ, शी इज देयर.
0: ऑलराइट.
1: इस केस में कभी कभी ये हो जाता है कि हाँ कि अगर पेंशन

0: केस आप जानते हैं तो आप सेशन दे भी सकते हैं, मतलब आई एम श्योर इट विल हेल्प।
1: हाँ, और ये मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर गांवों की तरफ अगर हम जाएंगे तो अमूमन ये केसेस ऐसे बहुत सारे दिखाई देते हैं जहाँ पर महिलाओं को सप्रेशन की इतनी आदत डाल दी गई है अनफॉर्चुनेटली कि वो बोलना भी नहीं चाहती हैं। बट यू शुड ऑलवेज रेज योर वॉइस, क्योंकि आपका अधिकार है। भारत का कानून की खूबसूरती ये है कि आपको ये सारे अधिकार मिलते हैं। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: आपके पास कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है मेरे लिए हो सकता है, डॉक्टर शहरयार के लिए हो सकता है, तो 8010781078 बहुत ही आसान सा हमारा नंबर है, इस पर अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा दीजिए लिखकर। फिलहाल अपने शो को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते। महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, भारतीय कानून क्या बोलता है, और ये कोई सब्जेक्टिव टर्म नहीं हो सकती है क्योंकि ये सबके लिए बराबर है। हालांकि उसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं वो वेरी कर सकते हैं बिल्कुल, बट कानून क्योंकि सबको, हर महिला को, जैसा डॉक्टर शहरयार ने कहा कि वो 22 नहीं हो सकता है कि 18 से 25 साल के लिए है, सबके लिए कानून बराबर है। अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि भारतीय कानून में सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा क्या है।
1: देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हमारा लॉ है, BNS है, उस पर भी दे रखा है, जिस किसी भी तरीके से अगर आपके एक्शंस के थ्रू अगर लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, चाहे वो आपके जेस्चर के थ्रू हो, चाहे वो आपके वर्ड्स के थ्रू हो, चाहे वो एक्ट्स के थ्रू हो, वो आपका विद इन द स्टार्टिंग डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट आ जाता है। और वो धीरे धीरे वही चीज़ आपका बढ़ के वो आपके रेप की डेफिनेशन, अटेम्प्ट टू रेप की डेफिनेशन तक पहुँच जाती है। इट स्टार्ट्स विद द जेस्चर्स, इट कैन बी एनीथिंग, लुक्स ऑल्सो, इट कैन बी मैसेजेस ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन तो बहुत वाइड है, एंड इट कवर्स any act with which a woman will find herself in an uncomfortable position, even to an extent that if you stare a woman for a long period of time, for a long particular point, for a minute or after a few particular seconds, that also is covered within the definition of sexual harassment. It's not exactly mentioned, but yes, the expressions, the judiciary have been saying that if you are ogling upon a woman for a long period of time, if you're looking, staring for a woman, that can also be covered in sexual harassment. So as simple as a miniature act as looking to, of course, the highest of, when you go to an extent that you break all the bonds of morality and you commit rape on a girl. So all these things are covered within the definition of, within the social concept of sexual harassment. So of course, baki jo specific laws hain, molestation ke, aap voyeurism ke, ya aap stalking ke, wo sab ke alag alag provisions bhi hain, but it covers everything.
0: All right, what's your take on child marriage?
1: Child marriage is a very very pressing concern which needs to be taken care of. Child marriage पहले से भी हो रही थी, अब तो बहुत हद तक हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज को कर्ब कर दिया है। वी हैव बीन मेकिंग लॉ सिंस 1978 में भी हमने लॉ बनाया था, 2006 में भी हमने फाइनली प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बनाया था, जिसमें हमने सज़ा को काफ़ी बढ़ाया था। उससे पहले सज़ा बहुत कम थी, सज़ा सिर्फ 15 दिन की जेल या 1000 रुपये जुर्माना ऐसा हुआ करता था। लेकिन देन वी थॉट दैट कि लेट्स हैव सम स्ट्रिक्टर प्रोविजन्स फॉर चाइल्ड मैरिज, टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। तो वी ड्राफ्टेड प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसमें हमने एज वही रखी है, 18 और 21 साल रखी है, लेकिन हमने ये कह दिया कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज कर रहेगा तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है, जो भी चाइल्ड मैरिज करता है उसको दो साल रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, 1,00,000 रुपीज़ फाइन है, जो करवाता है उसकी पनिशमेंट है। अगर कोई मेजर शादी करता है किसी माइनर के साथ में तो उसकी अलग पनिशमेंट हो जाती है। तो प्रोविजन्स आर देयर फॉर चाइल्ड मैरिज। हाउएवर वन थिंग विच बॉदर्स मी एज एन अकेडमिशियन और एज ए लॉ स्टूडेंट इज दैट हम चाइल्ड मैरिज पे हम कोई स्ट्रिक्ट टेक नहीं ले पा रहे हैं। हम चाइल्ड मैरिज को मैक्सिमम वॉइडेबल कहते हैं, वॉइड इन वेरी फ्यू इंस्टेंसेस कहा जाता है, जब ज़बरदस्ती करवाई जा रही होती है या उसको आप इंटाइस करके लेके जाते हैं या उसको ट्रैफिकिंग के चक्कर में आप उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं, उन केसेस में फोर्सफुली मैरिजेस में कुछ अब 2006 में बोला गया था कि वो वॉइड होती है। बट अगर अदरवाइज देखा जाता है तो चाइल्ड मैरिज इज़ वॉइडेबल, जो प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो उसको वॉइडेबल कहता है। वॉइडेबल के साथ में एक थोड़ा सा मसला है, वो है कि मैरिज वॉइड नहीं, मतलब प्राइमा फेसी वॉइड नहीं होती है, मैरिज वैलिड मानी जाती है। हाँ, अगर जो माइनर है वो चाहे तो वो शादी को ख़त्म करवा सकता है, बट अगेन उसके साथ में एक मसला ये आता है कि माइनर अपने आप डायरेक्टली कोर्ट जा नहीं सकता है, माइनर कोर्ट में डायरेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है। तो अगर ड्यूरिंग द माइनॉरिटी इफ़ दिस चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू गेट द मैरिज वॉइड, डिक्लेयर्ड एज वॉइड, देन शी विल रिक्वायर अ गार्डियन। नाउ द गार्डियंस आर द वंस जिन्होंने शादी कराई है, तो टेक्निकली गोइंग अगेंस्ट द हेड ऑफ द फैमिली, फॉर एग्जाम्पल अगर फादर ने शादी कराई है तो अब चाचा अगर लेके जाएंगे तो फिर टेक्निकली स्पीकिंग चाचा अपने भाई के, बड़े भाई के अगेंस्ट में जा रहे हैं, विच इज़ वेरी रेयर टू हैपन। अगर हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन देन अगेन गार्डियन ही अगर शादी करा रहे हैं और गार्डियन को ही बोला गया नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन जा सकता है कोर्ट में, तो थोड़ा सा वो फ्लॉ आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चलो ठीक है माइनॉरिटी में नहीं गई, लेकिन अब बच्ची थी उसकी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी, अब वो 18 साल की हो गई है, अब वो चाहती है शादी ख़त्म करवाए, लॉ कहता है उसके पास में मैक्सिमम 2 साल का टाइम है, 2 साल में कोर्ट में जाए वो कह दे कि उसकी शादी माइनॉरिटी में करवाई गई थी, वो शादी को ख़त्म करवाई जा सकती है। बट 2 साल इन अ सेटअप, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत हद तक पॉपुलेशन हमारी गाँवों में रह रही होती है, मैं गाँव में तो छोड़ो, मैं आपको शहर का बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये पता भी नहीं होगा। प्रोविजंस क्या हैं वो तो बहुत बात की बात होती है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी कमी है एज एकेडमिशियंस ऑल्सो लॉ स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि हम इसको उतनी तरीके से हम आगे तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, हर जगह पे हर घर तक वो बात पहुंचनी चाहिए। आई होप कि इस माध्यम से पहुंच जाए हर उस कान तक जिसको ये सुनना चाहिए इस बात को, कि लॉ ये कहता है कि आपके पास 2 साल तक का टाइम है, आप 2 साल के अंदर अंदर आके करवा लें। अब अगर 18 साल की लड़की की शादी मैक्सिमम मेजॉरिटी क्योंकि 18 साल में आ जाती है, तो उसके पास सिर्फ 2 साल और रह गए, यानी कि 20 साल तक वे कोर्ट में आ जाए। नाउ इन अ सेटअप विच वी हैव, सोशल सेटअप वी हैव इन इंडिया, 19-20 साल की लड़की जिसकी शादी हो रखी है, वो अपने पति के अगेंस्ट में आ रही है, अपने घर वालों के अगेंस्ट में कोर्ट में आ रही है कहने के लिए कि मेरी शादी खारिज करवाओ। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक लीगल सिस्टम जो उसके पूरे सपोर्ट के ऊपर आ जाए उसके बाद भी, क्या बिकॉज शादी खारिज करवाने के बाद का जो सपोर्ट चाहिए होगा वो बहुत मैटर कर रहा होता है। वो उसके घर वालों से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, सोसाइटी उसको लुक डाउन अपॉन ना करे यार ये तो शादीशुदा है, क्योंकि शादी लॉ तो नहीं मान रहा है, समाज तो मान रहा है। अब जब समाज शादी मान रहा है तो उसकी जो अपनी खुद की जो एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कहीं वो हावी ना होने लग जाएं, उसकी अपनी खुद की आगे के शादी के प्रॉस्पेक्ट्स वो ख़राब ना हो जाएं, ये सोसाइटी में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये चेंज नहीं आ पाएगा तब तक अगर कोई हिम्मत उठा भी पाता है तो वो ऐसा एग्जाम्पल सेटअप नहीं कर पाता है कि दूसरे लोग उससे प्रभावित हो पाएँ। तो वो प्रभाव जो कहते हैं ना, वो हो पाना, इंस्पायर कर पाना, वो बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग या तो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, या फिर अगर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद का जो उनका जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतामय हो जाता है। तो इसके चलते हुए वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता है। वी शुड हैव सर्टेन प्रोविजंस जहाँ पर हम उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में एंड एवरीथिंग, क्योंकि अगर कट ऑफ, सोशल कट ऑफ हो जाता है तो फिर उस केस में हमें सपोर्ट मैकेनिज्म देना बहुत ज़रूरी होता है। वो थोड़ा सा हम वर्क अपॉन कर रहे हैं, बट यस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज अब चाइल्ड मैरिज थोड़ी लुक डाउन अपॉन की जाने लग गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज को कोई ऐसा खास बुरा नहीं माना जाता है। हमें चाहिए कि लॉ वहां तक भी पहुंचे और मेक श्योर करे कि चाइल्ड मैरिज अगर हो रही है तो वो होने से पहले ही रोक दी जाए।
0: ऑलराइट, इस टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको अपने कानून के बारे में, राइट्स के बारे में पता है, मैंने कहीं पर देखा है इनजस्टिस हो रहा है, एक बच्चे की शादी की जा रही है, एक माइनर की शादी की जा रही है, क्या मी बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कोई स्टेप उठा सकता हूँ?
1: yes,
0: उस पूरे सेटअप में कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं है, बस मुझे पता है कि वहां पर गलत हो रहा है।
1: जी, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। वो आपका ड्यू एक्शन जो पुलिस है उनको लेना पड़ता है कि हाँ चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आपको बताना पड़ता है एंड ऑल दैट थिंग। ऑफकोर्स अगर ऐसा कुछ कोई कर सकता है तो द डोर्स आर ओपन फॉर दैट थिंग, बिकॉज हर शादी जो हो रही है उसके बारे में खबर सबको नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके बता रहे होते हैं कि हाँ हम अपनी बेटी की शादी करवाने वाले हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट शुड बी नोइंग कि हाँ इस फला गांव में, इस फला कस्बे के अंदर में, इस फला घर में शादी हो रही है और वो माइनर है या नहीं है, ये पता कर पाना इस थोड़ा सा टीडियस टास्क। बट यस, हाँ अगर कोई एक राइट स्प्राइटेड सिटीजन है जिसको लगता है ये चीज़ गलत है तो उसको अगर वो रोक सकता है अपने लेवल पे भी, तो जिस लेवल पे भी वो रोक सकता है, मैं तब और इसमें बहुत एक अच्छा एक ऐड था सरकार की तरफ से चलाया गया था जिसमें बच्ची की शादी करवाने के लिए लोग गए थे, तब दैट वाज एन ऐड, ऑफ कोर्स नॉट अ ट्रू स्टोरी, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के भी स्टेप्स होते हैं इस डायरेक्शन में भी। वो ये था कि बच्चे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए दर्जी के पास गए थे कपड़े सिलवाने के लिए, तो दर्जी ने कहा था आपकी बेटी की तो छोटी बच्ची था उसकी शादी ऐसे जोड़ा क्यों बनवाने का, हम उसकी शादी कर रहे हैं, तो उसने कहा ये कपड़ा तो मैं नहीं सिल सकता हूँ। तो वो दर्जी है, उसने अपनी तरफ का जो काम करना था उसने वो कर दिया कि भाई ठीक है ये चीज़ का मैं भागीदार नहीं बन सकता हूँ। उसी तरीके से हर इंसान का अपने अपने लेवल पे एक भागीदार, एक योगदान हो सकता है। लॉयर का अपना योगदान हो सकता है, NGOs का अपना योगदान हो सकता है, समाज का अपना योगदान हो सकता है, जो जैसे आपने कहा कि आप एक राइट कॉन्शियस इंसान है, आपका अपना योगदान हो सकता है, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, वो रोकी जा सकती है। बट यही है कि वो चेतना जगना बहुत ज़रूरी है।
0: All right, so amazing. Sir, I'm done with my questions. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया तो please feel free.
1: अरे नहीं, this is a very important session because मेरा personal अपना मानना ये है कि as a law student also, faculty तो हम लोग हैं by profession, लेकिन हम सब लोग law पढ़ रहे हैं at the end of the day. As a law student, as a law professor, मेरा मानना ये है कि law का होना सिर्फ पूरा नहीं काम करता है. लॉ बहुत हैं हमारे पास में, हज़ारों के हिसाब से लॉ हैं. लॉ का जानना और लॉ के जानने के बाद की जो सपोर्ट चाहिए होती है वो काम बहुत ज़रूरी है. जब दोहरा तरीके से जब सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ मुझे पता है कि क्या लॉ है, ये मुझे हिम्मत नहीं दे सकता है कि मैं लॉ का इस्तेमाल भी करूं. मुझे वो हिम्मत भी चाहिए कि हाँ, अगर मैं लॉ इस्तेमाल करूंगा, इफ़ समथिंग बैड हैपेंस, देर इज़ अ एंटायर मशीनरी विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी. और वो काम स्टेट का होता है. जैसे कि अगर हम घर पे हम कहते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, हमें कुछ पता है कि हाँ हमने ये काम किया है, और अगर हम कहते हैं कि हम इसको गो अहेड करेंगे, तो हमें पता है कि हमारे घर पे हमारे माँ बाप हैं जो हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. कुछ भी हो जाएगा वो तो सपोर्ट करेंगे. तो ये जो फॉल बैक सेफ्टी नेट जो होता है, ये हमको बहुत हिम्मत देता है कि हम आगे काम कर सकें. हम एक मेहनत कर, चलो ठीक है, हम दो साल बैठ के पढ़ाई करेंगे. क्यों? क्योंकि पापा हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास फॉल बैक है. लेकिन अगर हमारे पास फॉल बैक नहीं होता है, हमारे पास एक मशीनरी सपोर्ट करने के लिए, ये काम स्टेट का बहुत मैटर करता है कि वो चीज़ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे सोसाइटी में जहाँ पर लगे कि हाँ, अगर आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे. नॉट जस्ट टू मेक इट वेरी श्योर कि आपका राइट इन्फोर्स हो, बट उसके बाद की ज़िंदगी के लिए भी. वी आर नॉट जस्ट कि जैसे रॉबिन हुड है कि हम अमीर से पैसे लेके गरीब को दे देंगे, सिर्फ ये नहीं है, हम आपके लिए वो तरीका भी तैयार करेंगे जहाँ से आप अपने आप खुद भी अपने आप पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. वो सपोर्ट मैकेनिज्म भी देना बहुत ज़रूरी है.
0: बहुत उम्दा. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमेशा मैं आपके विचारों को सराहता हूँ कि जब आप आते हैं तो कुछ मुझे नया जानने को मिलता है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा. सो इट्स ऑलवेज अमेजिंग, इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू होस्ट यू हियर सर. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच. इट्स ऑनर टू बी हियर अगेन. लुकिंग फॉरवर्ड अगेन कि जल्दी मिलते हैं फिर से.
0: श्योर सर. अरे दोस्तों, अगर आपके पास कोई पॉइंट है, कोई आपको सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो सिंपल इतना करिएगा कि अपने आसपास जिसको आपको लग रहा है कि नीडी है, उसको ये बात जरूर बताइएगा कि आपके लिए कुछ कानून में प्रावधान है. सिर्फ इतनी लाइन भी अगर आप बोल देंगे तो भी शायद किसी की हेल्प बहुत हो सकती है आगे उनकी अपनी यात्रा है. अब इसके साथ चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.
2: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए.

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। आप सभी को पता है कि ये मेरे दिल के कितना करीब है और महिला सशक्तिकरण का ये खास कार्यक्रम लंबे समय से मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इस कड़ी में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ, उनके जीवन के पन्नों को पलटते हैं, उनकी कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से आप जीवन के बहुत सारे मोटिवेशंस डिराइव करते हैं और यही कारण है कि विमेन एम्पावरमेंट फैलाने की ये छोटी सी मेरी मुहिम आगे बढ़ती है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट है और मेरे दिल में एजुकेशनिस्ट के लिए खास रिस्पेक्ट इसलिए होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके हाथों में आने वाली पीढ़ी है जिसको बदलना और जिसको मोल्ड करना इनके लिए बहुत ही आसान होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं निवेदिता राणा जी से, जो कि फाउंडर प्रिंसिपल है KDB स्कूल गाजियाबाद। फाउंडर हैं ये इस खूबसूरत से स्कूल की, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये उज्जवल भविष्य बना रही हैं। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। हेलो मैम।
4: हेलो भावना।
3: मैम, कार्यक्रम का नाम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट और आप एक सशक्त महिला, लेकिन हर महिला के लिए महिला सशक्तिकरण की जो डेफिनेशन होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। शायद किसी के लिए सशक्तिकरण पैसा, तो किसी के लिए सशक्तिकरण शायद थोड़ी सी फ्रीडम, किसी के लिए सशक्तिकरण थोड़ी सी पावर, तो किसी के लिए सशक्तिकरण कंट्रोल। आप मुझे बताइए, आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, किसे आप सशक्त महिला कहेंगी?
4: जी बिल्कुल, सवाल बड़ा अहम है और इसका जवाब मैं जो मैं समझती हूँ मैं उन्हीं शब्दों में देना चाहूँगी। मैं मानती हूँ महिला सशक्तिकरण एक ताकत है, एक टूल है जो महिलाओं को हर तरह से, आपने कहा, फ्रीडम देती है, इंडिपेंडेंस देती है, शक्तिशाली बनाती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज को पा सके, उन अधिकारों के बारे में जानकारी पा सके और अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजंस, निर्णय ले सकें। एक और बात है इसके साथ ही, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्त हों इसलिए ताकि वो पेट्रियार्कल आउटलुक को चैलेंज कर पाए, वो लोग आउटलुक जहाँ पे महिलाओं को छोटा या कमतर माना जाता है, और उनमें इस तरह का आत्मविश्वास पैदा हो ताकि वो हर तरह से, चाहे जैसे आप भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के स्तर पर अपने आप को ताकतवर महसूस कर पाए।
3: वाकई सशक्तिकरण मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए ना एक ओवरऑल कवच के रूप में है। मतलब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, सशक्तिकरण आपको शायद वो सिक्योरिटी दिलाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के हर आयाम में जीने के लिए, खुश रहने के लिए सशक्तिकरण की बहुत ही जरूरत है। तो मैं तो चाहूंगी कि ये पूरा जो विश्व है इसमें जितनी भी महिलाएं हैं ये सशक्त बने, बट उसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।
5: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
6: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट की खूबसूरत से कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं डायनेमिक निवेदिता राणा जी से, जो कि फाउंडर हैं KDB स्कूल गाजियाबाद। निवेदिता जी, हर सदी में, हर युग में, हर साल अगर हम देखें तो बदलते हुए चैलेंजेस है महिलाओं के लिए। मतलब कभी जीने का चैलेंज था, तो कभी कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी परेशानी थी। फिर धीरे धीरे हमारे कुछ चैलेंजेस निकले, एजुकेशन मिली, फ्रीडम मिला, अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर हम आज के जमाने की बात करें, क्या लगता है, क्या चैलेंज है हमारे लिए?
1: चैलेंज तो बहुत बड़ा है। जब UN तक ये बात कहता है कि 130 साल लगेंगे जब दुनिया में महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके, ताकि वो हर उस पोजीशन पे पहुंच सके जहां पर आज पुरुष हैं। ये विडंबना है कि जिस देश में हम नारी को पूजते हैं, वहां पर केवल 27% महिलाओं ने आज तक संसद का द्वार देखा है। नौकरियों में एक तरह से भेदभाव, वायलेंस जो पहले भी था और अभी हम सोचते थे शायद समाज में लड़के लड़कियां पढ़ जाएं तो वायलेंस कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, देयर वाज अ स्पर्ट इन द नंबर ऑफ डेथ्स, डावरी डेथ्स, अचानक से उनमें बढ़ोतरी हुई है। मुझे मालूम नहीं इसका कारण क्या है, क्या हम अपने लड़कों को कुछ सिखा नहीं पाए या हमने अपनी लड़कियों को कमजोर ही रखा। ये मुझे लगता है ये एक बहुत अहम चीज है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि जो हमारा लीगल फ्रेगमेंट है उसके बारे में ज्ञान का अभाव। बच्चियों को मालूम ही नहीं उनके लीगल राइट्स क्या हैं। क्या वो अपने राइट्स को गार्ड करने की क्षमता रखती हैं? क्या वो अपने आप को बचाने, अपनी आवाज उठाने की क्षमता रखती हैं? मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं जो चैलेंज के रूप में आज की महिलाएं फेस कर रही हैं, और शायद हम समाज के हिस्सेदार होते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे।
0: भाई वाकई सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं हम अपने अधिकारों को आज तक नहीं जान पाए हैं, और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हमारे घरों में इन अधिकारों का डिस्कशन नहीं है। कहीं भी कोई माता पिता एक बेटी को ये बताते ही नहीं है कि आज आप बड़े हो रहे हो, 18 साल की उम्र के बाद आपकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने आप के लिए, और किस प्रकार के आपके अधिकार हैं। तो आपके साथ कोई किसी प्रकार की बदतमीजी ना करे, आपके साथ कहीं कोई अन्याय ना हो, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इस पर चर्चा ही नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी जीवन की जर्नी है ना, ये इतनी खूबसूरत रहने वाली है कि कोई अप्रिय घटना घटेगी ही नहीं। और ये सोचकर हम कभी भी न बेटियों को न बेटों को किसी भी डिजास्टर के लिए, किसी अनहोनी के लिए एम्पावर ही नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत ही खूबसूरती से इस चैलेंज को बताया है निवेदिता जी ने। बस जुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, वापस आएंगे, करेंगे और भी ढेर सारी बात। टिल देन फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है हमारे समाज के लिए। इमेजिन करिए ना, हर घर में हर महिला अगर सशक्त है सो कितना बदलाव आ सकता है हमारे समाज में। चलिए अब बात करते हैं निवेदिता जी की। निवेदिता जी, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक स्कूल की आप फाउंडर हैं, सो महिलाओं को, बच्चियों को आप एजुकेशन के थ्रू एम्पावर कर रही हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। और इनफैक्ट जब आपने ये कहा ना कि ये विडंबना है कि आज भी हमारी बच्चियों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हर प्रिंसिपल या हर फाउंडर स्कूल की ये सोच ले कि शायद पूरे साल में सिर्फ 5 क्लास होंगी लेकिन इन अधिकारों के बारे में होंगी। किसी भी उम्र से क्यों ना शुरू किया जाए, बट ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि शायद किसी स्तर पर ही सही हम उन्हें कुछ सिखा पाए। So, मुझे बताइए कि आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी कैसी रही और आप दरअसल बच्चियों को किस तरीके से एम्पावर कर रही हैं।
1: देखिए, एक तरह से मैं मानती हूँ स्कूल में रहने का सबसे बड़ा हमारा ये, मैं कहती हूँ, एक खुशनसीबी है कि हम उस आयु में बच्चों की को शिक्षा से जोड़ते हैं जो उनकी एज बड़ी इम्प्रेशनेबल होती है। जैसे एक कच्ची मिट्टी में जैसा ढाल दो बच्चे वैसे ढल जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा ही वो जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और अन्याय के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस सिखा सकते हैं। शिक्षा आई थिंक एक माध्यम है जो कि इट्स अ पावर टू ट्रांसफॉर्म। हम अपने बच्चियों को लाइफ स्किल, लीडरशिप, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सब के बारे में जागरूक करते हैं। और मैं ये आपको कहना, एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक होता है पैसिव इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चों को इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ इंडियन वुमेन जो कि जिन्होंने समाज में कोई इम्पैक्ट डाला बाय ब्रेकिंग बैरियर्स, ये हम बच्चों को बताते हैं। डिबेट्स, नाटक, परिचर्चाएं, बहुत सारी चीजें जो स्कूलों में होती हैं और जिसके माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि क्यों जरूरी है तुम्हें अपने आप को एम्पावर करना। देखिए, बदलाव हर जगह जरूरी है, बदलाव बच्चों में आना जरूरी। तो जब वो असली महिलाओं को देखती हैं चैलेंज लेते हुए कहानियों के द्वारा, वार्ताओं के द्वारा, तो वो उनके उनको ये समझ में आता है कि एक सहानुभूति डेवलप हो जाती है और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने व पूर्व निर्धारित रोल को रीसेट करना उनको, उनके लिए संभव हो जाता है। देखिए,

0: युक्ति से निवेदिता जी आपने बताया कि चाहे कहानी के रूप में, चाहे डायरेक्ट सिखाने के रूप में, चाहे एक सीख के रूप में, बट जरूरी ये है कि हम उन्हें बताएं कि उनके अंदर ये क्षमता है, औरों में भी थी और उनमें भी है, और ये क्षमता से वो अपने जीवन को और बहुत लोगों के जीवन को, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि जब एक औरत कोई रिफॉर्म करती है या जब कहीं कोई बदलाव आता है समाज में, वो सिर्फ औरतों के लिए आता है, वो औरतों के लिए भी आता है, पुरुषों के लिए भी आता है, बच्चों के लिए भी आता है, आने वाले भविष्य और पूरे समाज को ठीक करता है। सो जरूरी ये है कि अगर महिलाएं न सिर्फ शिक्षा का हाथ पकड़ ले, और हर महिला को शिक्षा तब तक मिले जब तक कि वो शिक्षा लेना चाहती है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, हायर एजुकेशन है, डिपेंड ये करता है कि वो किस स्तर तक शिक्षा चाहती है। जब तक उसे शिक्षा मिलेगी ना, आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे समाज में एक बदलाव आता जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना, फील गुड फील लाइफ।
1: सिमारो विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं निवेदिता राणा जी से। निवेदिता राणा जी फाउंडर हैं KDB स्कूल गाजियाबाद की, और अब बात करते हैं एजुकेशन की यानी शिक्षा की। निवेदिता जी, ये तो हम सब जानते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, पर खास तौर पर मैं महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगी। अक्सर हमने ये देखा है कि जो ड्रॉपआउट्स होती हैं ना, वो अक्सर बच्चियां होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल से लेकर पब्लिक स्कूल्स तक की मैं बात करूं, और या फिर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं, आज भी मैं ये देख रही हूँ। एक तरफ हम ये कहते हैं बायोलॉजिकल साइकिल, लेकिन दूसरी तरफ उस क्लॉक को ही तोड़ते हुए बहुत सारी बच्चियों की आज भी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, और वहां पर शिक्षा उनसे छिन जाती है। सो कितनी इम्पोर्टेंट है शिक्षा, और ये उनके भविष्य को कैसे बनाती है?
1: देखिए, स्कूल वो सेफ स्पेसेस हैं जहाँ पर हम बच्चियों को सिखाते हैं कि वो निर्भीक होकर अपने चैलेंजेस, अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स शेयर कर पाएं और कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। क्योंकि व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल, यू एम्पावर अ नेशन। जैसा आपने कहा, यू लिटरली एम्पावर द होल सोसाइटी। शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण का एक रिपल इफेक्ट होता है, जो एक स्वस्थ परिवार, शक्तिशाली इकोनॉमी और एक अधिक इंक्लूसिव समाज की नींव बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटियों को ये बहुत जरूरी है समझना कि उनमें वो ताकत है, वो काबिलियत है, जिसको पहचानना उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, और इस शक्ति के माध्यम से ही समाज में बदलाव आना संभव है। और मैं ऐसे ही इसी प्रकार से अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को सिखाती हूँ कि शिक्षा कितनी अहम है उनके जीवन में। अगर वो शिक्षित होंगी तभी वो समाज को समझने, उसकी जो जटिलता है उसको पहचानने, और उसमें जो कुरूपता है उससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर पाएंगी। तो मैं तो यही मानती हूँ कि शिक्षा ही माध्यम है, शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ संभव हो सकता है।
0: देखिए ना, किसी भी स्तर पे अगर आप चले जाएं, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि शिक्षित महिलाएं हैं, वहाँ समाज भी बेटर है, वहाँ परिवार भी खुशहाल है, और वहाँ पर जो सोच है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुली हुई सोच है। यानी आज भी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है उन परिवारों में जहाँ महिलाएं शिक्षित हैं, और जहाँ महिलाएं शिक्षित नहीं हैं वहाँ वो आज भी किसी न किसी स्तर पर सफ़र कर रही हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, पुरुष या महिला, शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। छुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ले रही हूँ छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज हम बात कर रहे हैं निवेदिता राणा जी से प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट में। निवेदिता राणा जी फाउंडर हैं KDB स्कूल गाजियाबाद से। और निवेदिता जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, महिलाएं ना बहुत जगह पहुंच गई हैं, पायलट्स हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रही हैं, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की CEO भी हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखो सो ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये आज भी है। ये जो जेंडर में इक्वालिटी या इक्विटी हम जैसे कहते हैं, ये आज भी मुझे लगता है कि बहुत एपरेंट है और बड़ी क्लियरली नजर आती है। बट मुझे बताइए कि इसके बारे में बात तो सब करते हैं पर सॉल्यूशन कोई भी नहीं देता है, आपको क्या लगता है इससे कैसे कोप किया जा सकता है?
1: देखिए भावना, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, लेकिन वास्तविकता को एक्सेप्ट करना और वास्तविकता को समझना दूसरा मुद्दा है। ये बिल्कुल सच है कि महिलाएं बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रही हैं और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें केवल एक महिला का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें पूरे समुदाय और पूरे समाज का इन्वॉल्वमेंट है। और मैं मानती हूँ महिलाओं को हर तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। इंडिविजुअल स्तर पर हम महिलाओं को उनके अधिकारों, उन कानून पॉलिसी जो कि जेंडर इक्वालिटी में को बढ़ावा देते हैं, उसका ज्ञान कराना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ भी डेवलप करना पड़ेगा। सब कुछ करके भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझती हैं, ये बहुत कॉमनली हमने देखा है परिवारों में। तो उनको जरूरी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपनी ओपिनियन को प्रकट करने की हिम्मत और क्षमता, और साथ ही साथ बाउंड्री सेट करने की काबिलियत, बड़ा क्लियर और एजर्टिवली उनको बाउंड्रीज अपनी सेट करनी है, ताकि वो कभी भी किसी के दबाव में ना सकें और कभी भी किसी से झुक ना पड़े उन्हें जीवन में। मेरा ये भी कहना है कि जो बदलाव की नींव है ना, वो घरों में रखी जानी चाहिए। लड़कों को शिक्षित करना चाहिए, इंक्लूसिवनेस के बारे में बताना चाहिए कि वे बराबर हैं लड़कियों के, लड़कियां उनसे कम नहीं हैं, ना वो उनसे सुपीरियर हैं। आई थिंक जब तक समाज में संकीर्ण विचारधारा को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तक समाज में बदलाव संभव ही नहीं है। देयर हैज टू बी अ सोशल डायलॉग कि कहां कमी रह गई और क्यों समाज में नारी व पुरुष का दर्जा एक समान नहीं है। आई थिंक यही चीजें हैं जो मिलकर एक कहते हैं कंप्लीट सोसाइटी को फॉर्म करती हैं। एक पोएट है अल्फ्रेड टेनिसन, उन्होंने कहा है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी कि जब तक पुराना ऑर्डर बदलेगा नहीं, नए ऑर्डर को रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक कहीं कोई परिवर्तन संभव नहीं है। और मैं मानती हूँ कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और हम सबको बदलाव को एडॉप्ट और अडेप्ट करना चाहिए।
0: सो ट्रू। तो मुझे लगता है शुरुआत अपने घर से करके देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने ये पूछा है अपने घर की महिला से, वो चाहे माँ है, वो चाहे दादी है, चाहे नानी है, चाहे बहन है, कि when was the last time you did anything for yourselves? शायद कभी नहीं। मतलब क्योंकि हम अपनी जिंदगियों में इतने व्यस्त हैं कि कुछ दिन हैं जो जरूर सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, मदर्स डे, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अप्रिसिएशन, अटेंशन और केयर, ये तो कहीं है ही नहीं। ये सब उनको देने की चीजें हैं, यानी एक महिला पूरे परिवार को ये सारी अटेंशन देगी, सारी केयर देगी, वो ध्यान रखेगी पूरे परिवार का, लेकिन उसे इन रिटर्न क्या मिल रहा है ये कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि अगर हम घरेलू काम की बात करें, डोमेस्टिक चोर्स, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ये डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में महिला पर है। बच्चे की परवरिश और प्रजनन तो ऑफकोर्स प्रभु ने महिलाओं को दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है, जब तक इन चीजों में भी साझेदारी नहीं आएगी, तब तक एक महिला अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ महसूस करेगी। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी महिलाएं बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद भी इनइक्वालिटी का सामना करती हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजों के कारण, समाज की सोच के कारण, वो उतना एम्पावर्ड हो ही नहीं पा रही हैं जितना दरअसल होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम सब की है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं निवेदिता राणा जी से। बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही और आज हमने इनसे जाना कि सही मायने में सशक्तिकरण को प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है। तहे दिल से धन्यवाद निवेदिता जी। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, जैसा मैं मानती हूँ कि एक साथ मिलकर एक सोच का निर्माण करना ताकि हम महिला पुरुष एक दूसरे का साथ दे सकें और एक ऐसा समाज हो जो बराबरी में विश्वास करता हो, ये कल्पना नहीं ये हकीकत में बदलना चाहिए। और जहां महिलाएं खुलकर जिएं, खुलकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें और अपनी काबिलियत से नए आयाम बनाएं। We don't want a world where, जैसे आपने कहा कि केयर, अफेक्शन, अटेंशन, ये तीनों चीजों का अभाव है परिवारों में, तो मैं चाहती हूँ हर महिला को का ये राइट हो कि उन्हें ये सब मिले, वो इतना कुछ करती हैं। इसके अलावा एक ऐसा संसार हो जहाँ पे सभी समाज के पुरुष जो हैं वो सेंसिबल होने के साथ साथ सेंसिटिव भी हों, उनकी नीड्स, महिलाओं की नीड्स को लेकर, यानी समझदारी के साथ संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। और बदलाव तो आएगा जब आप और हम जैसे लोग मिलकर ऐसी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है ये बात घरों तक पहुंचेगी और घरों से ही बदलाव की शुरुआत होगी। तो भावना, वंडरफुल इट वॉज टू टॉक टू यू एंड दिस इज माई मैसेज टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू रेडियो।
0: वाओ, हमारे सभी लिसनर्स की ओर से भी निवेदिता जी तहे दिल से धन्यवाद। ना सिर्फ आज आपने अपना इतना कीमती समय निकाला लेकिन हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाने से पहले एक बार फिर से आपका धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का और जब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ तो मैं वादा जरूर करती हूँ। सो चलिए भाई, वादा रहा, प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट में मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते ठीक इसी टाइम इसी दिन यानी शनिवार को 5 से 6 बजे। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील नाइस।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। हमारे सभी श्रोताओं को पता है कि हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं तलाशने की नई सोच के साथ नई दिशाएं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश की न्याय व्यवस्था को लेकर के, जो एक्ट में चेंजेज आए, जो हमारी एक इंडियन पिनल कोड जो करीब 100 वर्षों से भी पुराना एक कानून का जो एक महत्वपूर्ण अंग था उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता और इस प्रकार के जो बदलाव आए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईपीसी से बीएनएस तक क्या बदला, क्यों बदला और आम आदमी को क्या मिला। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आपके साथ कोई अपराध हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो न्याय पाने की आपकी पहली सीढ़ी क्या होगी? पुलिस स्टेशन, FIR, इन्वेस्टिगेशन, देन एविडेंस, देन कोर्ट और फिर जजमेंट। लेकिन अगर इन पूरी प्रक्रियाओं के नियम ही बदल जाएं तो भारत में 1 जुलाई 2024 से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली, यानी बीएनएस। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली, यानी बीएनएसएस। और हमारे देश में एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, यानी बीएसए, जो लागू हुए। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि धाराएं बदल गई, सवाल ये है क्या न्याय का तरीका भी बदला, क्या आम नागरिक की परेशानी कम हुई, क्या पुलिस और प्रशासन ज्यादा जवाबदेह हुए और क्या ये बदलाव वास्तव में समय की जरूरत थे। आज इस प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सवालों पर बात करेंगे नई सोच नई दिशाएं में। तो दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और हम हाजिर होते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आईपीसी से बीएनएस तक क्या बदला, क्यों बदला और आम आदमी को क्या मिला। हमने आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 को भारत के जो देश की जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, लेकिन अब मुद्दा यह है कि आखिर कानून बदलने की जरूरत पड़ी क्यों। सबसे पहले समझते हैं कि पुराने कानून आखिर इतने पुराने क्यों माने गए, यानी हम आईपीसी की बात कर रहे हैं या सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, उनको हमने पुराना क्यों माना। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आईपीसी वर्ष 1860 का था, यानी तकरीबन 150 साल पुराना या शायद उससे भी ज्यादा, एविडेंस एक्ट 1872 का, और मेन जो सीआरपीसी था वो सन 1898 का था, जिसे बाद में 1973 में एक नया रूप दे दिया गया था। यानी हमारी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था की जो बुनियाद थी वो ऐसे समय की थी जब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन थे, ना सोशल मीडिया, ना कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन और ना ही कोई साइबर क्राइम, जो आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे जीवन में। आज अपराध भी बदल गए हैं और उन अपराधों के मिलने वाले सबूत भी। आज किसी अपराध का सबूत किसी चश्मदीद गवाह के पास नहीं, बल्कि मोबाइल फोन, सीसीटीवी, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, सर्वर या लोकेशन डाटा में हो सकता है। इसीलिए एक जरूरत आन पड़ी कि कानून का आधुनिक तकनीक और आज के सामाजिक अपराधों के साथ चलना जरूरी था। अब सरकार का तर्क यही था कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को जो कॉलोनियलिज्म का एक दौर था उसकी सोच से निकाल करके नागरिक केंद्रित और आधुनिक व्यवस्था बनाया जाए, यानी जिस प्रकार से एक अंग्रेजी शासन के दौरान के सारे नियम कानून थे, तो उस दौर से निकल के हम आज के हालात और आज की जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसकी उसको केंद्रित करते हुए एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए इस एक्ट के जरिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि कानून का नाम बदलना अपने आप में सुधार नहीं है। प्रयास किए गए कि सुधार आए, लेकिन केवल नियम बदलने से या कानून का नाम बदलने से सुधार नहीं आता। असल सुधार तब होता है जब आम आदमी को न्याय जल्दी, निष्पक्ष और आसानी से मिल जाए। तो एक मूल भावना जो है वो किसी भी न्यायिक व्यवस्था की इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की आपराधिक जो न्याय व्यवस्था है उसमें आए हुए बदलाव को लेकर के, यानी आज से लगभग 2 साल पहले जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश की इस न्यायिक व्यवस्था में आया उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने बात की आखिर कानून को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, और अब एक बात हमारे आम नागरिकों से जुड़ी हुई, जो देश के नागरिक हैं आखिर उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है इस व्यवस्था को बदलने में। मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आपके साथ कोई गंभीर अपराध हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उस समय आप अपने ही क्षेत्र में हो, तो पहले ज्यूरिसडिक्शन यानी मामला किस थाने का है, जैसी समस्याएं सामने आ सकती थी। पहले होता था कि आप जिस क्षेत्र में आपके साथ अपराध घटित हुआ है वो उस अपराध की जो सूचना है वो केवल उसी क्षेत्र के थाने में ही दी जा सकती है, लेकिन अब जीरो FIR की व्यवस्था के कारण व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है। यानी एक नई व्यवस्था जो लागू हुई है नई भारतीय न्याय संहिता में वो ये कि आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुआ हो। यानी यदि आपके साथ जो दुर्घटना है, जो भी अपराध है, वो किसी भी जगह पे क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप उसकी सूचना अपने नियरेस्ट अपने सुविधाजनक पुलिस थाने में दे सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अपराध की सूचना देने की व्यवस्था भी लाई गई है। यानी कानून का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि पहले नागरिक की शिकायत सुनी जाए, ज्यूरिसडिक्शन बाद में देखा जाए। यानी सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे एक आम नागरिक के जीवन में आया है कि आपकी जो कंप्लेंट है, जो आपकी शिकायत है, उसको तवज्जो दी जाएगी, ना कि आपके न्यायिक या ज्यूरिसडिक्शन को देखा जाएगा। और आपको आमतौर पर बड़ी शिकायतें आती थी कि आप किसी क्षेत्रीय थाने में कहीं जाते हैं तो वो आप पढ़ करके कंप्लेंट को बोलते हैं कि ये मामला यहाँ का नहीं है, वहाँ जाओ ये जाओ, तो वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई व्यवस्था एक जीरो FIR वाली पॉलिसी को ला करके। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव कि शिकायतकर्ता को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की गई। यानी आपको अपनी कंप्लेंट के ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है उसकी भी जानकारी देने की व्यवस्था इस नई न्याय व्यवस्था है उसके अंदर की गई है। BNSS में पुलिस को 90 डेज के अंदर कंप्लेनेंट या विक्टिम को इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस बताने का प्रावधान है। यानी आप समझ सकते हैं जो भारतीय न्याय संहिता है, BNSS जो एक नाम बदला गया CRPC का, और उस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अब नाम से जानी जाती है, उसमें एक व्यवस्था है कि 90 दिन के अंदर जो भी शिकायत करने वाला व्यक्ति है या जिसके साथ भी ये दुर्घटना या अपराध हुआ है उसको इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको 90 डेज के अंदर देनी पड़ेगी। तो इससे नागरिक को ये पता चल सकेगा कि उसकी शिकायत केवल FIR की फाइल बनकर रह गई है या वास्तव में उस पर कोई कार्रवाई भी हो रही है। यानी कानून की भाषा में एक बड़ा बदलाव है पुलिस स्टेशन से सिटीजन सर्विस तक। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, नई सोच नई दिशाएं में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की आपराधिक व्यवस्था में आए हुए बड़े बदलाव, यानी जो एक्ट के चेंजेज आए उसको लेकर के। अभी हमने चर्चा की कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हमारे आम नागरिक के लिए क्या इसमें बड़ा बदलाव है, जिसमें हमने बताया कि जीरो FIR की जो व्यवस्था अब आई है उससे एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है कि उसमें कंप्लेंट को तवज्जो दी गई है, ना कि जुरिस्डिक्शन को। अब दूसरा मुद्दा हम बात करते हैं, हम आते हैं उस बदलाव पर जो आज के डिजिटल युग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जिस प्रकार का लाइफस्टाइल और जो लाइफ हमारी हो गई है, जैसा वातावरण हमारा है, तो उसमें हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा मोबाइल में है। किसी व्यक्ति की लोकेशन, CCTV फुटेज, ईमेल, डिजिटल पेमेंट, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, फोन या कंप्यूटर का डाटा, ये सब अपराध की जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इन सब चीज़ों में कवर होता है। और किसी भी अपराध की जानकारी के लिए या उसकी जाँच के समय पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी में भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है BSA, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को एविडेंस के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, यानी जो भी ये जो मैंने अभी आपसे नाम लिए, लोकेशन, CCTV फुटेज, डिजिटल पेमेंट, ये सभी पूरी तरह से एविडेंस के रूप में एक्सेप्टेबल हैं नए कानून के तहत, यानी

उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की भूमिका बढ़ाई गई है। अब लेकिन जो ये चीजें हुई, आखिर इससे फायदा क्या होगा? अब दोस्तों, अगर जांच वैज्ञानिक और डिजिटल एविडेंस पर आधारित होगी तो केवल किसने क्या कहा पर निर्भरता कम हो सकती है। यहाँ एक चुनौती भी है कि डिजिटल एविडेंस जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है, यानी डाटा की जो ऑथेंटिसिटी है, जो चेन ऑफ कस्टडी है और प्राइवेसी है, अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो टेक्नोलॉजी न्याय का साधन बनने की जगह विवाद का कारण भी बन सकती है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जितना इस चीज का लाभ मिलने वाला है, डिजिटल जो एविडेंस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने उसकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का विवाद का रूप भी ले सकता है, यानी उसमें कंट्रोवर्सी होने के चांसेस भी हैं। तो जितना सुविधाजनक ये हमारे लिए एक साधन हुआ है, उतना ही हमें इसमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि जिस प्रकार से हमने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात की, या जो हमने कहा कि मोबाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको यदि हम टेस्टिंग करते हैं, एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उससे एक बेहतर और निष्पक्ष न्याय की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं आज के आधुनिक युग में। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशा।

वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और जो हम आपराधिक न्याय व्यवस्था के बदलाव की आज हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, उसी में एक अगला विषय आता है कि यदि हम

अपने समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, अपने अगर हम बात करें महिलाओं की और बच्चों की, तो आखिर उनके लिए क्या इस व्यवस्था में बदलाव आया है? दोस्तों, हम जानते हैं किसी भी न्याय व्यवस्था की जो असली परीक्षा है वो इस बात से होती है कि वो अपने सबसे जो वल्नरेबल नागरिक हैं, जो उनकी रक्षा कितनी मजबूती से करती है। यानी हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं महिलाओं की और बच्चों की। अब BNS में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को एक अलग प्रमुख चैप्टर में स्थान दिया गया है। यानी उनके लिए बिल्कुल एक अलग से व्यवस्था की गई है जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कई अपराधों में सख्त दंड का प्रावधान है। जो व्यवस्था पहले इतनी सख्ती से लागू नहीं हो रही थी, लेकिन इन बदलाव में BNS में उन अपराधों के प्रति जो महिलाओं और बच्चों के साथ हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया उसमें अपनाया गया है और सख्त दंड का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ इसमें झूठे प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन या आइडेंटिटी कंसीलमेंट के माध्यम से जो एक तरह के सेक्सुअल अब्यूज और ये जो अपराध होते हैं उसको लेकर भी नया प्रावधान जोड़ा गया है। यानी कि जिसमें आमतौर पर हमने सुनी, अभी आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे रेप केसेस की जो चर्चाएं आती हैं, तो उसमें स्पेशली जो अगर कोई भी माइनर के साथ गैंगरेप होता है तो उस अपराध के लिए एकदम बेहद कठोर दंड का प्रावधान है नई BNS में। यानी हम भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक संतुलित बात है जो हमें समझनी होगी। केवल सजा बढ़ा देने से अपराध खत्म नहीं होते। यानी अपराध की यदि आपने कोई सजा में बदलाव भी कर दिया, उसको हमने सख्त भी कर दिया, बढ़ा भी दी, तो वो कोई मात्र कारण नहीं बनता हमारे समाज के अंदर अपराध कम होने का। जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए ज़रूरी है बेहतर पुलिसिंग, तेज इन्वेस्टिगेशन, बेहतरीन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम सपोर्ट, विटनेस प्रोटेक्शन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निश्चित और निष्पक्ष न्याय। यानी कि एक जो न्याय की निश्चितता है और जो निष्पक्षता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस बात में जो हमारे अपराधियों को सजा दे पाएँ। और साथ ही साथ यदि सही अपराधी को सही सजा मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा कारण समाज में बनता है उन अपराधों पर नियंत्रण करने का। क्योंकि अपराधी को एक भय मन में होना चाहिए कि वो कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना पैदा कर ले, चाहे वो दबाव की, चाहे लालच की या किसी प्रकार के प्रभाव की, लेकिन उसको ये भय मन में होना चाहिए कि वो बच नहीं सकता। और ये सब जो कारण हैं वो बहुत बड़ा एक बनते हैं, साधन बनते हैं इस बात का जो हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर अपराध की दरों में कमी लाने का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं देश की नई आपराधिक न्याय व्यवस्था को लेकर के, जो कानून बदले, जो नियम बदले, उसके पीछे का कारण क्या था, हमारे वर्तमान आधुनिक परिवेश में हमें इन कानूनों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और साथ ही हमने जाना कि हमारे देश के नागरिकों को उसमें क्या मिला और विशेष रूप से हमारे जो समाज की महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार के नए प्रावधान इस BNS में दिए गए। अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि इस बदलाव से क्या वास्तव में जो न्याय की जो गति है, जो स्पीड है, वो तेज होगी, यानी न्याय जल्दी मिल पाएगा। अब इन नए कानूनों से न्याय जल्दी मिलेगा, एक प्रश्न कमोबेश सभी के मन में होता है। लेकिन BNSS में इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसको भी अधिक टाइम बाउंड बनाने की कोशिश की गई है, यानी इस नई व्यवस्था में जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी प्रकार के जो सेक्सुअल ऑफेंसेज की बात करते हैं तो उस मामलों में इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई, यानी 60 डेज में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कई प्रक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसमें, और साथ ही साथ उसकी जो टाइम बाउंडेशन है उसके इस्तेमाल को बढ़ाया गया है। पहली बार कम्युनिटी सर्विस को भी पनिशमेंट के रूप में शामिल किया गया है और उसके पीछे का भाव ये है कि अपराधी को भी एक बार सुधरने का मौका दे करके जो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें लाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं या अंडर ट्रायल्स हैं उनके बारे में भी कुछ काफ़ी रिलीफ देने वाले प्रोविजंस किए गए हैं, यानी यदि आप किसी गलत मामले में फंस भी गए हैं किसी वजह से और आप अंडर ट्रायल हैं, बरी भी नहीं हुए हैं, तो उस दौरान आपके साथ थोड़ी एक लीनियंसी बरती जाए और आपको एक तरह का रिलीफ उस दिन दिया जाए। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि हर अपराध का जवाब केवल जेल नहीं होना चाहिए, छोटे अपराधों में समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने वाली सजा भी एक रास्ता हो सकती है, जिसे हमारे सामने एक नई व्यवस्था दी गई है कम्युनिटी सर्विस के रूप में। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो लॉ की स्पीड है, जो अगर हम न्याय की बात करते हैं, वो जमीन पर जब ही दिखाई देगी जब पुलिस, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक लैब्स और कोर्ट्स चारों की क्षमता भी उसी गति से बढ़े। यानी आपने व्यवस्था तो कर दी कि इतने समय में इन्वेस्टिगेशन करो, इतने समय में इसका ट्रायल कर लो, लेकिन साथ ही साथ जो इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक लैब्स हैं और कोर्ट्स हैं, उनको भी अपनी क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी आप किसी भी आपराधिक मामले की यदि जांच होती है या उसकी सुनवाई होती है तो उसके लिए एडिक्वेट अथॉरिटी नंबर्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ केस बढ़ गए लेकिन कोर्ट की क्षमताएं नहीं बढ़ी, तो किसी भी एक पर्टिकुलर जो न्यायाधीश हमारे न्यायालय में होते हैं उनकी भी एक समय सीमा होती है, कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड जा करके वो भी उस स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे। यानी वो व्यवस्था का जो थॉट है वो तभी पूरी तरह से मैच्योर होगा जब हम सारी चीज़ों को पैरेलली लेकर के चलें, क्योंकि कागज पर टाइमलाइन होना और ग्राउंड पर समय पर न्याय मिलना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और हमें इन सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। सारे जो परिवर्तन हैं, जो चेंजेस हैं, वो भी पूरी व्यवस्था में लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा पर हम और जानकारी देंगे आपको इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में आए हुए बड़े बदलाव को लेकर, जो नियम बदले या नियमों में सुधार आया और जिस प्रकार की एक नई व्यवस्था हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए दी गई। अब आखिर इस सब में चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि हमने सारी बातें की, क्या क्या चीज़ अच्छी हुई, कैसे बेहतर होने की बात हुई, लेकिन अब थोड़ा आलोचनात्मक जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आलोचनात्मक जो नज़रिया है वो बेहतरी के लिए सदैव बहुत अच्छा होता है। और किसी भी नए कानून को सिर्फ इसलिए सही नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो नया है। यानी हम आमतौर पर बात करते हैं कि एक लेटेस्ट जो वर्जन किसी चीज़ का होता है तो वो बेहतर है, लेकिन उसको केवल इसलिए बेहतर मान लेना क्योंकि वो लेटेस्ट है, ये भी कोई सही कारण नहीं है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ट्रांजिशन। यानी हजारों जो पुलिसकर्मी, वकील, जुडिशियल ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वर्षों से पुराने कानूनों के साथ काम करते आए हैं। यानी आप समझिए कि जिन्होंने पूरे समय तक अपने देश को आज़ाद होने के बाद से लेकर के आज तक जो भी व्यवस्था थी वो पुराने नियम कानून के नियमों को पढ़ करके की, उनका जो भी अनुभव रहा उसी के आधार पर रहा। उन्हें जो बहुत ज़्यादा समय तक इसमें रहे, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे हमारे वकील या न्यायाधीशों की बात करें, तो उनको विभिन्न धाराएं और उनके प्रावधान एक तरह से रटे हुए होते थे। लेकिन नई धाराएं, नई टर्मिनोलॉजी और नया डिजिटल प्रोसीजर, इन सब के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यानी एक नई व्यवस्था आपने दे तो दी इस पूरे प्रणाली को, लेकिन उसके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है पॉलिसी पावर्स और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन। यानी आपने पॉलिसी के हिसाब से शक्तियां प्रदान की, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हमारे राइट्स हैं, जो हमारे नागरिकों के जो अधिकार हैं, उसके बीच का जो एक बैलेंस है वो बना के रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है इस बदलती नई न्यायिक व्यवस्था में। अब कानून पुलिस को प्रभावी इन्वेस्टिगेशन के पर्याप्त अधिकार दे, लेकिन साथ ही नागरिक की लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी सुरक्षित रहें। यानी आप जल्दबाजी की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे नागरिकों के अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही तीसरी चुनौती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। यदि किसी छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक फैसिलिटी या ट्रेंड मैन पावर पर्याप्त नहीं है तो कानून की अच्छी भावना भी जमीन पर कमजोर पड़ सकती है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन चीज़ों को लेकर के, कि एक बहुत ज़्यादा आधुनिक शहर भी है लेकिन साथ ही साथ कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर अभी आधुनिकता बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो वहाँ पर यदि ये सब सुविधाएं नहीं है जिनका उल्लेख हमारी BNSS में और BNS में किया गया है, तो उनका प्रभाव किस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि जो कानून है वो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होता है, ना कि किसी क्षेत्र की जो सुविधाएँ हैं या क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इस चीज़ को लेकर के भी है। अब वहाँ पर यदि ट्रेंड मैन पावर भी नहीं है तो वो उन सब सुविधाओं का या उन तरीकों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिनको बहुत मुख्य रूप से स्थान दिया गया है नई आपराधिक न्याय व्यवस्था में। तो यानी सीधी सी बात है कि जो कानून की अच्छी भावना है, एक अच्छा न्याय दिलाना, जल्दी दिलाना, तो वो भी कमज़ोर पड़ जाती है यदि ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं। और चौथी सबसे बड़ी चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन। कानून किताब में कितना भी अच्छा हो, अगर FIR दर्ज करने में परेशानी हो, इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट देर से आए और साथ ही प्रोसिक्यूशन भी कमज़ोर हो, या कोर्ट में वर्षों तक मामला चलता रहे, तो आम आदमी के लिए कानून का अनुभव नहीं बदलेगा। ये बात आप रेलिवेंट कर सकते हैं। इसका जो रेलिवेंस है वो सीधा सीधा ये है कि जब हमने बात की कि हमने एक व्यवस्था के बारे में जिक्र कर दिया, नियम बना दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन, जुडिशियल ऑफिसर्स, इन सब की जो एक व्यवस्था है, जिनका नंबर्स है, वो भी उसी तरीके से बढ़ना चाहिए ताकि इसकी जो गति है, जो अपेक्षित गति है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक व्यवस्था बेहतर होगी, न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा, तो वो केवल तभी होगा जब बाकी और चीज़ें भी उसी गति से आगे बढ़ें। एक आम नागरिक के लिए जो अनुभव है वो बदलेगा जब धरातल पर सब चीज़ें उस प्रकार से दिखाई देंगी जैसा कि किताबों में लिखा गया है। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। दोस्तों अभी हमने चर्चा की कि हमारे देश की जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है वो बदली। 1 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आईपीसी सीआरपीसी जो एविडेंस एक्ट है उन सबको बदल करके नए नियम बना दिए गए, नए नाम दे दिए गए। उसमें हमने जाना कि बहुत सारी सुविधाएं हमारे नागरिकों को ही, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो होने वाले अपराध हैं उनके बारे में भी एक बहुत ज़्यादा सख्ती का रवैया उसमें दिखाई दिया गया। और एक जो भावना रही उसमें ये कि लोगों को न्याय मिले, शीघ्रता से मिले और सही न्याय मिले। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी हमारे मन में आता है कि क्या वास्तव में ये सब होना, क्या ये बदलाव वास्तव में लॉजिकल था? यानी हम इस जो बदलती हुई व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो कितना तर्कसंगत था? यदि हम इसका जवाब दें तो ना वो हाँ में होगा ना वो ना में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमने अभी पूरे इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की। क्योंकि कानून को आधुनिक बनाना तर्कसंगत था और आवश्यक था, क्योंकि वो जैसे हमने चर्चाएं की आपसे कि 100-150 साल पुराने कानून थे, उस समय की परिस्थितियां और थी, लेकिन आज बदल गई हैं क्योंकि अपराध बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और समाज बदल चुका है। लेकिन कानून का बदलना पहला कदम है, आखिरी मंजिल नहीं है। यानी हम अगर बात करें तो ये एक केवल पहला कदम है, पहला स्टेप है उस दिशा की तरफ बढ़ने का जो हमारे समाज में सुधार के लिए, अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है। न्याय व्यवस्था का जो असली लक्ष्य है, जो उसका मोटिव है, वो होना चाहिए पीड़ित को न्याय, निर्दोष को सुरक्षा और अपराधी को उचित एवं कड़ा दंड, पुलिस को स्पष्ट प्रक्रिया और नागरिक को सम्मान। तो ये वो कसौटियां हैं जिन पर एक समाज की जो कानून व्यवस्था है वो खरी उतरती है तो वो एक बेहतरीन व्यवस्था मानी जाती है। और शायद इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी कसौटी भी यही है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आईपीसी की धारा 302 अब बीएनएस की कौन सी धारा हो गई है। दरअसल हमें पूछना चाहिए क्या उस हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को पहले से जल्दी और बेहतर न्याय मिला। और साथ ही हमें यह भी नहीं पूछना चाहिए कि एफआईआर की धारा बदल गई या नहीं। हमें पूछना चाहिए क्या आम नागरिक की एफआईआर अब आसानी से दर्ज होती है। और हमें यह भी नहीं पूछना चाहिए कि कानून कितना कठोर है, बल्कि पूछना चाहिए क्या कानून निष्पक्ष है और क्या उसका पालन निश्चित है। तो दोस्तों बस इसी बात में फर्क है कि कानून बदलने और न्याय व्यवस्था बदलने में। जो हमने बात की अभी आपसे कि हमने क्या थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए और क्या नहीं, तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि यही एक बहुत बड़ा फर्क होता है कानून बदलने और न्याय व्यवस्था बदलने में। तो दोस्तों आईपीसी से बीएनएस, सीआरपीसी से बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट से बीएसए तक का सफर सिर्फ धाराओं और नंबरों का बदलाव नहीं, ये कोशिश है एक पुराने क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क को आज के भारत की जरूरतों के अनुरूप ढालने का। इसमें उम्मीदें बहुत हैं, संभावनाएं भी बहुत हैं और चुनौतियां भी कोई कम नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र में कानून की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब आम नागरिक पुलिस स्टेशन जाते हुए डरे नहीं, जब पीड़ित को लगे कि उसकी आवाज सुनी जाएगी और जब किसी निर्दोष को भरोसा हो कि उसके अधिकार सुरक्षित हैं, और साथ ही जब अपराधी को पता हो कि कानून से बचना अब आसान नहीं है, क्योंकि अंततः कानून की ताकत उसकी धाराओं में नहीं बल्कि उसके निष्पक्ष इस्तेमाल में होती है। तो दोस्तों इसी सोच के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
1: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से एक कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने यह सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदाबख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था।

0: और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीक तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सबकी सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई, चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा,
1: मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए।
0: वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया,
1: तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाली फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है।
0: ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया,
1: नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ।
0: चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ।
1: चलिए।
0: सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा,
1: मेरा नाम शंकर है।
0: सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया, चुनांचे उसने शंकर से कहा,
1: फरमाइए।
0: ये सुनकर वो लेट गया।
1: मैं क्या फरमाऊं?
0: तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं?
1: शंकर ने जवाब दिया,
0: यही जो तुम करती हो।
1: क्या?
0: तुम क्या करती हो?
1: मैं कुछ नहीं करती।
0: तो मैं भी कुछ नहीं करता।
1: सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना।
0: शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया,
1: तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी।
0: झक मारती हूं।
1: तो मैं भी झक मारता हूं।
0: तो आओ झक मारे।
1: मैं हाजिर हूं मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता।
0: होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं।
1: तो मैं भी वॉलंटियर नहीं।
0: सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं?
1: जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे?
0: इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं।
1: सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो।
0: शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा,
1: मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ।
0: शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा,
1: तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे?
0: पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं।
1: कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो

0: करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो, आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा।
1: खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा,
0: तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है, सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ।
1: मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं।
0: कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
1: अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा,
0: चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा,
2: तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो, और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता।
0: नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया।
2: तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
0: कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा,
2: क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
0: निकाह और शादी कैसी?
2: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
0: बोलो, क्या बात करूं?
2: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
0: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
2: जो दूसरे चाहते हैं।
0: शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
2: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
0: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा,
2: मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है?
0: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
2: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि
1: कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी

हैरान के कबूल करती रही हो, लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है, जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिससे मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पढ़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पढ़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पढ़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूंगी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे, तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे, तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे, वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है, आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम, तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे, वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा, अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है, देखो ये आदमी सबूत है। अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी, भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया, भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है, उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी।
भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो, तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या। यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी।

गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच। इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहे? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है यह आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होकर बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े। जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंततम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है। इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी। फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाए तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए वो मुसलमान था हिंदू था ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है।
उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते हैं, छोटा बच्चा कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो, जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं। संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं। संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें। संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें। संत का अर्थ है रंगरेज। संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे, और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है।
संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है? वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है? पिंजड़ा है, पक्षी तो नहीं। तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते। तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा। ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे। तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए। और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है।
अकेला बेजोड़ उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन

क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए। आप अभी तक कपड़े पहने हुए, ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त, अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ज क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई कामवासना नहीं है। अरब देश लड़ा के देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही, अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे ही नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में कि अभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो ही सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो, 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह

0: में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर एक इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती। बड़ी उम्र का तो कहने ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोस, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 363 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूँ बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहाँ घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनलहक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्वज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाएगा, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है, लड़खड़ा तो सकता है। और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफा बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, तू थक गए आप तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए, तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बनती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिसमें मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है। कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंक जाती, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं, इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग ना खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग ना खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो।
1: झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.7 लवाट पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका

0: स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी। और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी, जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए। हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रू ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है, और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र हैं, उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रू और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नालियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकिन कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है, मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था, उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है, जिस समय माता ने श्राप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था, वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदया का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी डरावने विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं और इस शाप से शूद्र प्रापी जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्व सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का शर्त यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्प राज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। मिला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्ववाद जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है, कि केवल वायु की कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे, आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती, तपस्या का फल तो हमारे पास भी है किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं, हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है, वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है, तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं, यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरतकारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है, हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरतकारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरतकारी से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरतकारी ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों को अपराधी पुत्र जरतकारी हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरतकारी ने कहा मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया, अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरतकारी अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरतकारी सोचने लगे मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरतकारी की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरतकारी ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरतकारी ऋषि अपनी पत्नी जरतकारी के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है जरतकारी ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरतकारी जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा सर्पिनी तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धन का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी। जरतकारी ऋषि ने कहा एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर लो। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, सब सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
0: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी कहानी आप पूरी कीजिए।
1: जी तो ऋषि पत्नी जो थी उसकी पत्नी जो थी जरतकारी की जो पत्नी थी उसका नाम भी जरतकारी था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरतकारी ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरतकारी ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ, उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। समस्या बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय उनके पुत्र है, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक स्थल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समय करे। मंत्रियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी बस्तियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, पितृकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
0: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मेजी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण।
0: जी, तो श्रोताओं इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ, और भी कार्यक्रम तो आप इंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर,